0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: अरे भाई सायोनारा का मतलब तो बाय बाय होता है, लेकिन तो हम यहाँ पे बाय नहीं हाय बोलने आए हैं।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। सुबह के 5:04 हुए हैं। वेदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं, कहाँ

0: है, क्या चल रहा है लाइफ में, जानने के लिए हम रेडी हो गए हैं और कुछ अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपको एंटरटेन करने के लिए भी हम रेडी हो गए हैं। तो चलिए, हमारा आप साथ रहेंगे और हम साथ रहेंगे 8 बजे तक। तो अगर आप मुझे इतने लंबे समय तक झेल पाओ, वो भी सुबह सुबह, तो ठीक है। चलो जी, इसी के साथ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: लड़का हो या लड़की हो, जिंदगी में हर एक चीज अपनी पसंद की ही होनी चाहिए। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारी गाड़ी हो, चाहे हमारी जिंदगी में कोई भी आए, तभी तो लाइफ खूबसूरत होती है ना।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए जी, यहाँ पर मैसेजेस आए हैं और रीना है पॉपुलर मूसेस से, गाना जाएगा उनके सिस्टर इन लॉ श्वेता मोहन के लिए जो रहती है पोतो पी मौ, आज उनका बर्थडे है। सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ब्लेसिंग्स और लव फ्रॉम हस्बैंड रितेश। आपके फादर इन लॉ है शिवा, आपकी मम इन लॉ है गीता, रीना, मनीषा एंड साथ में है मामा सीता, पापा राजन, विशाल, सुधीर, रितिशा, श्रेष्ठा, अहाना, योहान, सुहान, सबकी तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड साथ में यहाँ पर कहते हैं नाम रेडियो मस्ती ड्राइविंग राइट नाउ, अभी हम साज हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट गाना जयशन तेंबा, उमिरन दानू, जीबन अंगोथिया, आकाश, श्रवन, मेविन के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे यू टू। और साथ में यहां पर गाना होगा आपके लिए, ये आशा भुगों और आप साइलेश के लिए गाना मांग रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट गाना उनके नाम, वहीं पे सायरा बानू और अब्दुल भी हमारे साथ हैं, जितने भी लोग इस समय फिलिंग स्टेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए, स्पेशली उनके दोस्त नशरीन के नाम। तो चलिए यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए। राइट, थैंक यू सो मच। कहते आज ठंडी ठंडी हवाएं हैं मगर रेडियो मस्ती के सबके साथ सरोज राजन, मोनिका उमेश, पूनम वर्ष स्काटरबोन से साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मासूम। एंड चलो जी, हमने नोट कर लिया जी, थैंक यू सो मच। हाय विदिता, इट्स यू, ऑफ कोर्स साधना जी, मैं ही हूँ। चलिए मुकेश जी के लिए भी गाना होगा। एंड साथ में यहाँ पर टोनी है फ्रॉम कहाँ से, वोशबुआ, राइट। Good morning, thank you and welcome.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: मैं हूँ, मैं और मैं हूँ, आप भी हो. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेली हूँ और आप साथ दे रहे हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम. जी हाँ, यहाँ पर एक मैसेज आया है, एक नहीं कई सारे मैसेज आए हैं. रेडियो मस्ती टीम, ओके, कहते हैं कि विदिता जी क्या हुआ, सवेरे सवेरे आपको नींद नहीं आई, आप पहुँच गए यहाँ मॉर्निंग में. अरे वैदेही, मेरा मन था आपसे मिलने का, इसीलिए आ गई. आप खुश नहीं हो? चलो जी, तो यहाँ पर आपका हम वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. यहाँ पे हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे प्रीतम दक्की को, जो रहते हैं ब्रितानिया. उनके लिए मैसेज है उनके भाई मिथुन और साथ में अनुष्का, उनके लिए सानवी, आर्या और कियाना की तरफ से. वहीं पे दीपक ने हमें बहुत बड़ा स्माइल भेजा है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे. हैप्पी बर्थडे टू मामा आरती रामरतन, विशेज है उनकी बेटी अनुष्का, उनके अवनी और साथ में है उनके हस्बैंड हरीश, रामरतन हराक का फैमिली. गुड मॉर्निंग टू यू सोनम, कैसी हो आप? वैसे कहते हैं कि मैं सोनम भोला, आज ओके प्रिंस का, प्रिंस गर्वे का

बर्थडे हैं तो वीना वंदना जसप्रीत सिव्यावन और सभी फैमिली की तरफ से उनकी नानी और रामगुलाम फैमिली की ओर से उनको विश करिया वेरी हैप्पी बर्थडे। ज्योति है शादो बनारस से गाना आशनी रेखा सुरेखा मदर फैमिली के लिए और हमारे लिए भी क्या बात है, थैंक यू सो मच। और यहीं पे हम नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे आपके लिए, विशिंग माई फ्रेंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और ये हैं करुणा माता पिलत के लिए कविता की तरफ से, शुभ दिन आपको। एंड चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वेरी नाइस सिलेक्शन, मैं हूँ प्रेमिला फ्रॉम प्रेंदी पपाय, मेरे हस्बैंड रंजीत और पूरे फैमिली के लिए अभिजीता जी आपके लिए थैंक यू सो मच जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। चलिए साथ देते रहिए, थोड़ी देर में आ रहे हैं लेकर आपकी राशियाँ।

0: आगे आगे चले हम और अगर पीछे पीछे प्रीत चलिए तो यहाँ पर चलिए सुबह के 5:40 हुए हैं, समय हो गया है, जानते हैं क्या कह रही हैं आपकी राशियाँ।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: शुरुआत करते हैं एरीज मेष राशि के साथ। तो आज एनर्जी हाई रहेगी लेकिन इम्पेशेंस से बचना जरूरी है। जो काम पेंडिंग थे उन्हें फिनिश करने का स्ट्रॉन्ग चांस है। और भाई करियर में ये है कि आपके जो बॉस या सीनियर्स हैं आपके इनिशिएटिव को नोटिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन जल्दी में न लें। टॉरस ओवरऑल यानी वृषभ राशि, ओवरऑल स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग आज आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रहेगी और आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन याद रहे कि फाइनेंशियल वर्क रिलेटेड जो पेपर वर्क है उसको ध्यान से चेक करें। जेमिनी मिथुन राशि कम्युनिकेशन आज आपका सुपर पावर है। मीटिंग्स, नेटवर्किंग और कन्वर्सेशंस प्रोडक्टिव हो सकती हैं। अब काम में नए आइडिया प्रेजेंट करने का अच्छा समय है। मल्टीपल टास्क के चक्कर में फोकस लूज ना करें। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे कैंसर यानी कर्क राशि है, आज इमोशंस थोड़े स्ट्रांग रहेंगे, इसलिए डिसीजंस हार्ट और माइंड दोनों को बैलेंस करके लेना होगा। करियर में टीम मेंबर्स के साथ कोऑपरेशन से काम स्मूथली होगा। देखते हैं लियो सिंह राशि, स्पॉटलाइट नेचुरली आपकी तरफ आ सकती है, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, लीडरशिप दिखाने का चांस मिलेगा, क्रेडिट शेयर करना रिलेशनशिप में कलीग्स को बेटर करेगा। वर्गो कन्या राशि, डिटेल्स ओरिएंटेड अप्रोच आज आपको दूसरों से एक स्टेप अहेड रखेगी, यानी कि करियर में प्लानिंग एंड एनालिसिस और ऑर्गेनाइजिंग के लिए एक्सेलेंट डे हैं। छोटी मिस्टेक्स डबल चेक करें, होना नहीं चाहिए। लिब्रा तुला राशि, बैलेंस मेंटेन करना आज का मेन थीम है। दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में अपने नीड्स इग्नोर ना करें एंड करियर रिलेटेड नेगोशिएशन और टीम वर्क में आपको काफ़ी सारी एडवेंचर मिल सकते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, किसी सिचुएशन की हिडन डिटेल्स आप क्विकली पिक कर सकते हैं। करियर में कॉन्फिडेंशियल या स्ट्रैटेजिक वर्क में एडवांटेज मिलेगा। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से डिस्टेंस रखें। सजिटेरियस धनुराशि, एडवेंचर और फ्रेश पॉसिबिलिटीज की एनर्जी रहेगी, रूटीन से बाहर कुछ ट्राई करने का मन करेगा और करियर वाइज न्यू प्रोजेक्ट, लर्निंग अपॉर्चुनिटी या ट्रैवल रिलेटेड डेवलपमेंट आ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन आपको आज स्ट्रांग प्रोग्रेस दे सकती हैं। करियर वाइज लॉन्ग टर्म गोल्स पर सीरियस प्रोग्रेस होगी, सीनियर पर्सन से यूजफुल गाइडेंस मिल सकती है। एक्वेरियस कुंभ राशि, क्रिएटिव और अनकन्वेंशन थिंकिंग स्ट्रांग होगी, आपको इस किसी भी प्रॉब्लम का अनयूजुअल सॉल्यूशन मिल सकता है। करियर वाइज इनोवेशन का को अप्रिशिएट किया जा सकता है और टीम के फीडबैक को भी कंसिडर करें। फाइनली वी हैव द पाइसेस, मीन राशि, तो सेंसिटिव और इंस्टिट्यूटिव मूड रहेगा और क्रिएटिव एक्टिविटीज आपको स्पेशली इंस्पायर कर सकते हैं। करियर वाइज इमेजिनेशन और इंट्यूशन से अच्छे आइडियाज आ सकते हैं लेकिन डेडलाइंस को इग्नोर ना करें। तो ये थी आपकी आज की राशियां। वैसे हम यही कहेंगे कि राशियां जब हमें कुछ बताती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अगर सही समय पर सही काम किया तो फिर क्या कहें हम भाई, जिंदगी तो एक जुआ है, यहां पर किसी की जीत किसी की हार होती है, लेकिन आप पहले से अगर तैयारी रहे तो हार कहां होगी।
2: बॉलीवुड का है प्ले ऑल डे रेडियो।

0: जिंदगी एक जुआ है, यहाँ पर हर किसी को अपना खेल खेलना पड़ता है। तो चलिए हम भी खेलते हैं और खेलते खेलते आगे बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। और ये गाना हमें लेके जा रहा है 6 बजे के समाचारों की ओर।
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

0: म्यूजिक फील द मस्ती।
1: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बजे हैं। देश विदेश के समाचारों के साथ सुमेरा अकबर अली आ गई है संक्षिप्त समाचार के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सुमेरा।
2: नमस्कार वेदिता, सभी को मेरा नमस्कार आदाब। मॉरीशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्केरिंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरीशस में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। समुंदर की मौजों से साहिली इलाकों में बाढ़ के खतरे भी हैं। मॉरीशस की तरफ इतिहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत की जा रही हैं। काफ़ी वक्त से अबू धाबी की सरकार ने मॉरीशस में ये विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदे होंगे। मॉरीशस में जुलाई 2026 तक मेथाडोन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर इन्हें प्रदान किया जाता है। ड्रग नोशी के इलाज के तौर पर मेथाडोन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। इस प्रोग्राम की कारगरता के साथ साथ बहुत सी चुनौतियाँ उभरती हैं, साथ में पारिवारिक भूमिका बहुत ज़रूरी है। आज फौदा लावाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मॉरीशस पधारे जाक डेज़िरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सेंट क्रॉ जाएंगे। पेशे से डॉक्टर, 1841 में फौदा लावाल मॉरीशस पहुंचे थे। उन्होंने हमेशा तंगदस्तों के लिए काम किया। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें 1979 में आशीर्वाद दिया था। आज सेंट क्रॉ में खास मास सभा का आयोजन किया जाएगा। विदेश में दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है। पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे थे, जिससे हादसे की प्रारंभिक वजह समझी जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।
3: Your weather forecast on RM2.
0: Radio Musti.
2: मॉरीशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी आज सुबह 10 बजे से कल शाम 4 बजे तक जारी। इसके अलावा मस्केरिंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरीशस में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए मॉरीशस के मौसम का अनुमान है। आज सुबह घने बादल होंगे, दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होने लगेगी। कुछ जगहों में तेज़ वर्षा हो सकती है। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, जो कभी कभार ज़ोरदार होगी। हवा दक्षिण की तरफ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। और लगुनों के उस पार समुंदर बहुत ही ख़राब होने वाला है। 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसकी वजह से साहिली इलाकों में बाढ़ के उतरने का ख़तरा भी है। इसी वजह से सभी तरह की सावधानियां बरतने की मांग की जा रही हैं। मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से मांग की जाती है कि वे दूर समुंदर में न जाएं, और सड़कों पर भी लोगों से सावधान रहने की मांग की जा रही है, क्योंकि बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी। तापमान की बात करें तो तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, और न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों में 15 से 17, अधिकतम 19 से 22, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:13 पर और आज शाम को 6:02 पर सूरज ढल जाएगा।
3: Your weather forecast on RM2.
0: Radio Musti.
2: तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार आदाब, शुभ दिन आप सभी को।
3: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह के 6:11 हुए हैं, राइज तो आप कर चुके हैं, वर शाइन करने की बारी है, तो चलिए आप भी आ जाइए उन सूरज की किरणों की तरह जो यहाँ पर चमकते हैं हमारे मैसेजेस पे, हमारे व्हाट्सएप पे। तो 5491294 नंबर है हमारे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वेलकमिंग मी। क्या बात है भाई, हम स्वागत करने आए थे, स्वागत हमारा हो रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए जय श्री राम। ये है कौन जानते हैं, सुबह प्रिया ऑफ मौसन मौ कहते हैं। नेक्स्ट गाना उनके हबी ईश्वर के लिए जिन्हें वो बहुत प्यार करती हैं, कहती हैं विदिता जी हम आपके गाने गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करें। हाँ, ये नहीं बोला कि एक कप चाय लेकर यहाँ तक पहुँच जाओ, हमारे साथ बैठ के गाना सुनो, लेकिन कोई बात नहीं, एंजॉय कर रही हो, अच्छी बात है। चलो जी, ये ड्रामा क्वीन क्या बात है। सरिता जी गुडलैंड से हैं, साथ दे रही हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू पूनम टीनाग्नू फ्रॉम करिश्मा वर्षा एंड ऑल। ओके, जितने भी बच्चे हैं कहाँ के, ब्रह्मस्थान के, सभी उनको हैप्पी बर्थडे विश करें। चलिए, यहाँ पे किस्मावती पेचित ये ऐसे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आपका आशीर्वाद है बस किस्मावती जी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार से मैं मैसेज किया। एंड चलिए, यहाँ पर गर्मा गर्म चाय इलायची वाली, यार तुम लोग बड़ी वो कर रहे हो मुझसे अभी। हाँ, ये चाय की बात क्यों कर रही हूँ मॉर्निंग में, जब पता है कि मैं काम कर रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो एक कप मेरी तरफ से। रेडियो मस्ती सुन रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये है सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू हियर फ्रॉम यू। चलो जी, चांदनी फिल्म का गाना आपने सुना, बहुत मज़ा आया। ये है अमृता फ्रॉम पोएतो साबलर, वहीं भी हमारे साथ कौन है भाई, आप हैं हेमलता भजन फ्रॉम पोएतो पीमो। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू योर फैमिली। हैप्पी बर्थडे टू माई ब्रदर अनुपम, ये है कॉटेज से। ओके, एंड यहाँ पर रेखा हमारे साथ है, उनके बेटे अंश और पोपो जी में, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड आई हैव सो मेनी मैसेजेस। सुप्रभातम, आपको अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए हम डेडिकेट करेंगे। गुड मॉर्निंग पूजा ट्रियोलिस से। एंड वी हैव हेमा, परुषी, परिधि, प्रीतमी, प्रिया, निशिका, नितिन, विशाल, गणेश एंड रेडियो मस्ती के सभी हमारे लिसनर्स के लिए थैंक यू सो मच। भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, इतने सारे मैसेज हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ प्लीज, थोड़ा सा बेयर करो मेरे साथ।

भाई ये दोनों आपस में यही कह रहे हैं कि हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लेकिन आपके पास मौका है, कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर वही है, आपको बताएं, इट्स 5491294. चलिए जी, यहाँ पर हमारे साथ कौन है भैया? चोकलाल फैमिली है मेलविल से, और उन्होंने कहा कि भाई आपका जो गाना था अभी, आपने बप्पा का गाना चलाया, हमारे तो 1 सितंबर से

अब फास्टिंग भी शुरू हो गया है. सो थैंक यू फॉर प्लेइंग द सॉन्ग. तो थैंक यू आपको, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप और एंजॉय करें हमारे गाने. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. डोंट फॉरगेट यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस ऑन 549 and 1294.

चलिए जी, थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं 6:30 के समाचारों की ओर। अभी फिलहाल के लिए खूबसूरत कई गीतों का सिलेक्शन जारी है आपके लिए इस अगले गाने के साथ समाचारों की ओर। फिर उसके बाद 7 बजे फिर मिलते हैं आपके मॉर्निंग बीट के साथ।

0: नमस्कार और आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। मॉरीशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी। इसके अलावा मस्करिन्स के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरीशस में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। मॉरीशस की तरफ इतिहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत जारी। काफ़ी वक्त से अबू धाबी की सरकार ने मॉरीशस में ये विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। मॉरीशस में जुलाई 2026 तक मिथाइडन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर मिथाइडन प्रदान किया जाता है। ड्रगनोशी के इलाज के तौर पर मिथाइडन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। आज फौदालावाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मॉरीशस पधारे जाक दीजिएलावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सैंतकवा जाएंगे। और दिल्ली में एक 5 मंजिला इमारत के ढहने से 7 लोगों की मौत। नमस्कार रादाब, खुश आमदीद। इस बुलेटिन में मॉरीशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है और कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्करविंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरीशस में तेज़ हवाएँ चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। समुंदर की मौजों से साहिली इलाकों में बार के उतरने के खतरे भी हैं। ये उल्लेखनीय है कि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी आएगी। मॉरीशस की तरफ इतिहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत जारी है। काफ़ी वक्त से अबू धाबी की सरकार ने मॉरीशस में ये विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदे होंगे। पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी के अलावा देश की विजिबिलिटी बढ़ेगी। आशीबाचू विधिमासीपुरन।
1: फिलहाल ये अभी सिर्फ एक परियोजना है, लेकिन अबू धाबी सरकार की इस इच्छा में गहरी सच्चाई है कि इतिहाद एयरवेज मॉरीशस के लिए उड़ान भरे। ये संभावना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए मॉरीशस की अपनी विमानन प्रवेश नीति की समीक्षा करने की इच्छा का हिस्सा है। इतिहाद संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन है और आज अपने अबू धाबी हब के माध्यम से दुनिया भर में 120 से अधिक गंतव्यों के लिए उड़ान भरती है। ये अमीराती एयरलाइन यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और नए पर्यटन बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करेगी। इसकी शुरुआत से एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसे पहले से स्थापित विमानन कंपनियों के साथ मुकाबला भी तेज हो जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी किराए और बेहतर सेवा को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत इस शुरुआत से कुछ प्रमुख मार्गों पर मार्केट शेयर पर कब्जा करके एयरमॉरीशस के कमजोर होने का जोखिम भी पैदा हो सकता है। अधिकारियों के सामने मुख्य चुनौती विशेष रूप से भावी नेशनल एविएशन काउंसिल के माध्यम से राष्ट्रीय एयरलाइन को खतरे में डाले बिना इस सेक्टर को गति देना होगी। हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन ये परियोजना मॉरीशस को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानन मार्गों से बेहतर ढंग से जोड़ने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
0: काफ़ी वक्त से पेंशन सुधार का मुद्दा देश में सुर्खियों में बना हुआ है। याद रहे जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लेगा। सरकार ये सुधार क्यों अपना रही है? एक व्यक्ति को किस उम्र से बेसिक पेंशन प्राप्त होगा? ऐसे कई सवाल आज कर्मचारियों के बीच उठ रहे हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण के लिए कल टीवी स्टूडियो में आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल मौजूद थे। उन्होंने उल्लेख किया कि कैब दफ्तरों में मुर्शिदों को समझाने के लिए हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। मंत्री राम तोहल ने जोर दिया कि ये सुधार कितना ज़रूरी था, क्योंकि पुरानी पेंशन प्रणाली टिकाव नहीं थी। उन्हें सुनते हैं।
2: एगो नवा सिस्टम अनलीसा, ओकर नाम है SRP। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और सब मंत्री संगे हई सब हई सिस्टमवा काम कर ली है सा, और ये हर सिस्टमवा के चाहेला अच्छी तरह से समझे के जाने के कि कितना पेंशन मिलिएगो आदमी के और कौन

0: choaba kon laz par panchon leike. I serviswa akse a mili sap.gov.mu.org par. Ta hua jab jaiba, ta ego lekran mili. I lekran wa me, dotin go fakte ba. Ego fakte ba, admiwa kon lane me ne holba. Pehla l'exemple e wapsa, ego admi jo ne ba 1967 me, ta hiya sakab sa okar laz se likte kare, 1967, और यहाँ पर सकब सा ओकर महीना चुने उन महीना में नहीं होलबा बोला नवंबर में नहीं होलबा तो ई आदमी के श्वा मिली अपन पेंशन लेके लाज 60 पर जहाँ ओकरा मिली 13202 अगर ई लोग अपना अपन पेंशन ले 60 पर ओकरा श्वा बा की पेंशन वाले 61 पर जहाँ उकरा 14663 मिली सिनो ओ सकी पेंशन ले जब ओकर फुल एलिजिबिलिटी माने के मैच्योरिटी हो जाए पेंशन से त ई आदमी वा के आवेला ला 63 ans में फुल एलिजिबिलिटी पर ओकरा पेंशन मिली 17850 जोन चाहेला याद करे के कि ई पेंशन जब हाउ शिफवा देखब सर जब पेंशन मिले लगी त हिया नया रहते होइला ou augmenté hovela basant inflation par tahia hau site web wa me jab jaiba apan la select karba moi select karba chifwa de kitna pension mili ta sagba hia dekhe tableau wa me ki is chifwa kaise lane en lane kaise jasti hovela ta 17850 se shuru hoke 18000 20,121, 20,790, aise ou chifla évolué hovela. Kahe hai information la important ha, parce ki admi log bolle hawan sa ki is chifwa ek bar jab ego admi ke mile lagi ta kabo nahi sanze. Is chifwa grandi hoi. Auri ego auri baat ba jo kafi admi log hiya dalle bolle hawan sa admi log se ki is chifwa kamti hoi. Ta hiya clear ba ki is chifwa जस्ती बा जोन शिफ ओ लोग बोले ना लंसा इस शिफ्वा उससे जस्ती बा ये पहली बात बा और दूसरी बात कि इस शिफ्वा एक बार अपना पेंशन छुए लगेला ता इस शिफ्वा ग्रांजी होई फिक्स नहीं रही एगो दूसरा एग्जांपल है वापस हबी एगो कि कहन के जो ने होलबा जानवी 1970 में 1970 ने होलबा जानवी में ता ओ आदमी के जब पेंशन ले 60 ans par, il y a sélecté ce qu'il y a fait, et il y a eu un pension 13,298. Quand il y a full eligibility, il y a 65 ans par, ou décidé qu'il y a un pension 65 ans par, il y a eu un pension 22,563. Ça veut dire qu'il y a un choix de quand il y a un pension. Il y a 60 ans, mais il y a 61-62, quand il y a un full eligibility. Donc, on a fait ce service, on a fait ça, ताकि आदमी लोग के जानी कि कितना पेंशन मिली जब कौन लाज में लियन सा तो कितना पेंशन उन लोग के मिली हमने बनाले है सर एगो एप्लीकेशन जो कर नाम है कोरेक्ट हुआ पर सकबा जाए डाउनलोड करे ई इंफॉर्मेशन हुआ भी मिल जाए सकबा ब्यूरो से आबे भी जाए ब्यूरो से आबे में जहाँ कंप्यूटर बा हुआ के स्टाफ लोग वो सकन सा तुहार सहायता करे ताकि तू हाई एप्लीकेशन पर जाएगा अपन डिटाइल डलबा और शिफवा हुआ मिल जाए
1: कल मंत्री समाचार बुलेटिन में टीवी स्टूडियो के दौर में अदिति गनवा अवतार के जवाब के सवालों का जवाब दे रहे थे मॉरिशस में जुलाई 2026 तक मिथाइलिन लेने वाले लोगों की तादाद 8118 रही मुल्क भर में 70 जगहों पर मिथाइलिन दिया जाता है ड्रग नोशी के इलाज के तौर पर मिथाइलिन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है इस प्रोग्राम की कारगरता के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां उभरती हैं साथ में पारिवारिक भूमिका बहुत जरूरी है स्वास्थ्य मंत्रालय के होम रिडक्शन सेक्शन के जिम्मेदार अफसर डॉक्टर नीतीश राज सुकुल को सुनते हैं शैलिनी अबर ने उनसे बात की
2: Le programme de méthadone, à ce jour, il y a 8200 bénéficiaires qui
3: méthadone programme qui intègre abhi 8200 labhartis hain jinhein dainik taur par apni dawaiyan milti hain is programme ke antargat na keval méthadone uplabdh karaye jate hain balki medical follow up bhi hota hai मनोसामाजिक फॉलो अप भी एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की ओर से ये संभव है जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट है साइकोलॉजिस्ट है

0: क्षेत्र में अनुभवी डॉक्टर है, स्पेशलाइज्ड होम रिडक्शन नर्स, स्पेशलाइज्ड होम रिडक्शन HCAs हैं, साथ में NGOs की भी मदद मिलती है। पुनर्वास और अंततः समाज में इन्हें फिर से सम्मिलित किए जाने के योजना के अंतर्गत देखभाल संबंधी सेवा प्रदान करने के तहत ऐसा किया जा रहा है।
1: Qui a offert ce service par rapport à la prise en charge sur le plan réhabilitation et éventuellement réinsertion dans la société.
2: विवरण रजनी बेकर का रहा। आज फौजलावा के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मुर्शिद पधारे जाक देज़िरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सैंत ख्वा जाएंगे। पेशे से डॉक्टर, 1841 में फौजलावाल मुर्शिद पहुंचे थे। उन्होंने हमेशा तंगदस्तों के लिए काम किया। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें 1979 में आशीर्वाद दिया था। विधिमा से बुरन
3: फावर जाक देज़िरे लावाल मॉरिशस के इतिहास में एक अत्यंत सम्मानित और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक हस्ती हैं। उन्हें मॉरिशस के अपोस्टल ऑफ मॉरिशस के रूप में जाना जाता है। फावर लावाल का जन्म 18 सितंबर 1803 को फ्रांस में हुआ था। पादरी बनने से पहले वे एक डॉक्टर थे। बाद में उन्होंने अपना जीवन धर्म और मानवता की सेवा को समर्पित करने का निर्णय लिया। वे सितंबर 1841 में एक मिशनरी के रूप में मॉरिशस आए, जो उस समय दास प्रथा की समाप्ति के बाद का एक संवेदनशील दौर था। उन्होंने मुख्य रूप से हाल ही में मुक्त हुए गुलामों, गरीबों और वंचितों के बीच काम किया। अपनी चिकित्सीय पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए उन्होंने बीमारों का इलाज किया, शिक्षा का प्रसार किया और लोगों को उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया। 9 सितंबर 1864 को उनके निधन के बाद से हर साल 9 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि पर मॉरिशस के सेंट क्वा स्थित उनके मकबरे पर एक विशाल तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हर साल 8 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर विभिन्न पृष्ठभूमियों के हजारों मॉरिशस वासी रात भर पैदल यात्रा करते हैं। वे द्वीप के अलग अलग हिस्सों से पोटवी के पास सेंट क्वा में स्थित उनके मकबरे तक की यात्रा करते हैं।
2: फौजलावाल की बरसी के मौके पर हजारों की तादाद में आज देश में अलग चहल पहल होगी। नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। तीर्थयात्रियों की मदद करने के लिए जगह जगह पर पुलिस होंगे। स्वयंसेवी भी रास्ते में भोजन परोसेंगे। फौजलावाल की याद में आज रात 8 बजे सैन कौमी खास मास सभा का आयोजन भी किया जाएगा। सांताना पोस्ट नो रजनी बेकर।
0: सैखों में अभी के लिए सामान्य रूप से जीवन चल रहा है, लेकिन पेलावाल के मकबरे की ओर जाने वाली इस गली में ऐसे संकेत कि वो अहम दिन नजदीक ही है। फूल, मोमबत्तियां, मालाएं, टी शर्ट, विक्रेता अपने स्टॉल्स लगाने में व्यस्त। वे भी तीर्थयात्रियों का स्वागत करने की तैयारी में। मंगलवार से ये समा बदलने वाला है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही जो होगी, हर साल हजारों लोग यहाँ फौजलावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। फौजलावाल 1841 में मॉरिशस आए थे। वे गरीबों के मसीहा कहलाए जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे जरूरतमंदों और मॉरिशस के पुराने दासों की मदद करने में बिता रहे थे। उनके निधन के 160 वर्ष बाद आज भी वे बहुत से मॉरिशनों के दिल में बसे हुए हैं। इस बीच संबंधित तैयारियां की जा रही है। सोमवार 7 सितंबर को नेशनल टास्क फोर्स स्थल पर मौजूद और इंतजामों का जायजा लिया जा रहा था। सेंटर दे पेलरिनाज दे पेलावाल के मुताबिक दिन के दौरान 60,000 से 75,000 लोगों के आने की उम्मीद है और पूरे महीने के लिए करीब 2,00,000 लोग।
2: स्वामी शिवानंद सरस्वती महान आचार्य, चिकित्सक और डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक थे। उनका जन्म 8 सितंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। आध्यात्म, दर्शन और योग पर उन्होंने लगभग 300 पुस्तकों की रचना की। संसार भर में उनके शिष्य हैं, जिनमें सभी राष्ट्रों के निवासी तथा सभी धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। उनमें से एक मुर्शिद भी शामिल है। रुझिल की डिवाइन लाइफ सोसाइटी आज उनका 139वां जन्मदिन मना रही है। ज्यादा जानकारी रुझिल की डिवाइन लाइफ सोसाइटी के सदस्य नवीन लक्ष्मण दे रहे हैं।
4: आज दिव्य विभूति स्वामी शिवानंद जी का जन्मोत्सव है। भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतीय मूल के लोग बसते हैं और जहाँ डिवाइन लाइफ सोसाइटी के केंद्र है, वहाँ पूरा सितंबर महीना उनके जीवन और आध्यात्मिक योगदान के स्मरण में मनाया जाता है। स्वामी जी ने बच्चों, महिलाओं और छात्रों के लिए सरल भाषा में 300 से अधिक पुस्तकें लिखी। उन्होंने ज्ञान यज्ञ की ऐसी अलग

0: जगाई जिसने लोगों को उनके घर बैठे सुख और शांति प्रदान की। हमारे मॉरिशस के लिए तो उनका आशीर्वाद और भी गहरा है। उनके शिष्य शिरोमणि स्वामी वेंकट सानंद जी ने यहाँ आकर उनके विचारों एवं विचारों को घर घर पहुंचाया। आज इस पावन अवसर पर आइए हम स्वामी शिवानंद जी के संदेश सेवा प्रेम दान ध्यान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें।
1: दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है। पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे थे जिनसे हादसे की प्रारंभिक वजह समझी जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई है और 12 लोगों को मलबों के नीचे से निकाला गया। इमारत के मालिकों को गिरफ्तार किया गया, जांच की जा रही है। इमारत में एक हॉस्टल भी था। और अब करते हैं मौसम की बात। एक बार फिर से मॉरिशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्कर विंड्स के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरिशस में तेज़ हवाएँ चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, एक ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन भी हमारे इलाके में पाया जा रहा है। आज सुबह घने बादल होंगे, दिन के दौरान बादल घिराएंगे और रह रह कर बारिश होगी जो कभी कभी ज़ोरदार होगी। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और रह रह कर वर्षा होती रहेगी जो कभी कभी ज़ोरदार होगी। हवा दक्षिण की तरफ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके चंद इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। लगुनों के उस पार समुद्र बहुत ही ख़राब रहेगा। 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी और इनकी वजह से साहिल इलाकों में सैलाब के उतरने का भी ख़तरा है। इसी वजह से मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से मांग है कि वो दूर समुद्र में ना जाएं और सड़कों पर भी चालकों से सावधान रहने की मांग की जा रही है, क्योंकि बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 15 से 17, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नोट की जाएगी और आज शाम 6:02 पर सूरज ढल जाएगा।

0: मॉरिशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्करिन्स के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरिशस में तेज़ हवाएं और ठंड महसूस की जाएगी। मॉरिशस की तरफ इत्तेहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत जारी। काफ़ी वक्त से अबू धाबी की सरकार ने मॉरिशस में ये विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। मॉरिशस में जुलाई 2026 तक मेथाडोन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर इन्हें प्रदान किया जाता है। ड्रग नोशी के इलाज के तौर पर मेथाडोन देने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। आज फौदा लावाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मॉरिशस पधारे जैक डिज़िरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और दिल्ली में एक 5 मंजिला इमारत के ढहने से 7 लोगों की मौत हुई है। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथ ही अपर्णा बदलोगन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: आप यारों देखवानियों में 88 साल की 88 years old श्रीमती मुनबसिया

दारिमदो श्रीमती मुमदस्या दारिमदो जो धर्मावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज दो बजे इनके बेटे अजय रामुतो के घर आप्यारो देखवाइयों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कैथर कोको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रूद मोताबा में 69 साल की 69 years old श्रीमती तारामती सिचन पैदाइशी नाम मुलू जो शीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज सपहर तीन बजे इनके पति धर्म सिचन के घर रॉयल रूद मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बागेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव में 71 साल के 71 years old श्री लक्ष्मण मालू जो राजा राम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज दो बजे इनके घर बागेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीशानी रोजबेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बेकरी रोड से कॉन्स्टेंस सेंट पियर में 58 साल की 58 years old श्रीमती दंदरानी जगरूप पैदाइशी नाम त्रिभुवन जो संगीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज तीन बजे के बेटे विजय जगरूप के घर बेकरी रोड से कॉन्स्टेंस सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रूड बिलवेरिया में 34 साल के 34 years old जनाब एमान नंदलुल जो जापों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज साढ़े बारह बजे इनकी माँ चंद्रावती नंदलुल के घर रॉयल रूड बिलवेरिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदे मास की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। जानेट स्ट्रीट विलमैक और थेमिलिटिया में 83 साल की 83 years old श्रीमती सूर्या कीर्ति रामफल पैदाइशी नाम झकूरी की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज ग्यारह बजे इनके बेटे बिदत रामफल के घर जानेट स्ट्रीट विलमैक और थेमिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विलमैक की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सीबंधन रोड प्लेंटी पपाई में 77 साल की 77 years old श्रीमती सितलू पैदाइशी नाम सिरतन जो माला सितलू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे के पति सतदेव सितलू के घर सीबंधन रोड प्लेंटी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेंटी पपाई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिवालों रोड क्रेवक्यू में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बलदाओ जो कलावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल साढ़े तीन बजे इनके बेटे सुनील महादेव के घर रिवालों रोड क्रेवक्यू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रेवक्यू की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। रॉयल रोड मोचीदा में 65 साल के 65 years old श्री विनोद रामतोहल जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे इनके घर रॉयल रोड मोचीदा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदे मास की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 4:30 PM। लाबोडने रोड मेबर्ग में 89 साल की 89 years old श्रीमती माहित्री तिलक पैदाइशी नाम तिलवा जो दादी मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके घर लाबोडनी रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शिवाला रोड थ्रियोली में 70 साल की 70 years old श्रीमती अनीता जगलुल पैदाइशी नाम कांधाई जो हमारे सहयोगी सचिन जगलुल की माँ थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी
आज 10 बजे के घर शिवाला रोथ यूली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थे अमीन्यूस्त्री।

लेकी शमशान भूमि दी जाई जाएगी परमिशन टू डी 10 AM रॉयल रोड श्वाजी बेदू का अपनी 77 साल की 77 years old श्रीमती राजिका हरी पैदाइश नाम इसराम की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे इनके पति दयानंद हरी के घर रोड श्वाजी बेदू कैप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए

0: इसी चयन जो चूना के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 10 बजे इनके घर गौरवरोध घौनपुर बीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पौतुबीश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 10 AM। सीताराम लेन लावांचुआ में 70 साल के 70 years old श्री सुखदेव गुंडरारी, श्री सुखदेव गुंडरारी जो टैंपलिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े बारह बजे इनके घर सीताराम लेन लावांचुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Masti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: A very good morning. घड़ी बुलाते चलिए, सुबह के 7:01 हुआ है.
4: चावती ने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: A very good morning. सुबह के 7:07 हुए हैं, लेकिन आज है ट्यूजडे 8 सितंबर. यस, गुड मॉर्निंग. मैं विदिता आपका फिर से वेलकम करती हूँ. अब यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली राइज एंड शाइन करते हुए मॉर्निंग बीट की ओर बढ़ चुके हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ रहूँगी 8 बजे तक. सो गाइज, आर यू रेडी? येस, ऑफ कोर्स यू आर रेडी. मंडे निकल गया, मंडे ब्लूज चला गया, और अभी के लिए आप लोग यही काउंट कर रहे हो ना कि वीकेंड कब आएगा. मैं जानती हूँ, सब ऐसे ही सोचते हैं, सबका दिमाग ऐसे ही एक जैसा ही चलता है. तो अभी क्या होगा, अभी हमारे इस प्रोग्राम में इतने सारे मैसेजेस आए हैं, ओ माय गॉड, इतने सारे बर्थडे विशेस आए हैं, इतने सारे लोगों का आज बर्थडे है. बर्थडे ऑफ द डे होगा, लेकिन वो थोड़ी देर में होगा. और साथ में यहाँ पर आपके लिए स्पोर्ट्स न्यूज़ लेकर आए हैं, आपके लिए गेम्स लेकर आए हैं, एंड इन सब के साथ कुछ बहुत प्यारे खूबसूरत गाने. एंजॉय करें.
0: मॉर्निंग बीट, a good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: 92.
1: Radio Musti.
2: Fan Man United, Paris, Liverpool, Paris. Tout près d'où vibrer que tu as envie avec App Canal Plus inclus dans ton abonnement.
3: Vivez votre passion avec la Première Ligue et l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport.
2: And FA Cup, Carabao Cup and more on Super Sport Channels. Until the 13th of September, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 699 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. Terms and technical access conditions on canalplus.com.
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
5: Mon Dieu!
6: Me prépare un top manger pour toi là.
5: Mon Dieu!
6: Un bon panier macni.
5: Mon Dieu!

गोली क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है।

0: बेबी को बेस पसंद है लेकिन आपको क्या पसंद है ये तो हम जानते हैं। सुबह के 7:17 हुए हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। चलिए इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं। ये है आपका मॉर्निंग बीट,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो RM2
2: रेडियो मस्ती।
0: चलिए जी, यहाँ पर जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी को सरप्राइज़ करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं एंड उनका दिन जो है उनको स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू, आप मुझे उनका जो फ़ोन नंबर है आप मुझे भेज सकते हैं उनके नाम के साथ, और यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जो दिन है उनको हम स्पेशल बनाएं। चलिए तो यहाँ पर अभी हम आपके लिए गेम लेकर आए हैं। यस ऑफ कोर्स हम गेम लेकर आए हैं एंड जीतने वाले को मिलेगा टिकट्स फॉर सीएक्स ज़वाता। सो यहाँ पर होगा एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फील्ड विद मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली। सो ज़वाता बागातल में होता है और एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे को होता है। और मैं आपको बताऊं कि यहां पर मेरा जो सवाल है इसी के साथ कनेक्टेड है, तो आपको मुझे बताना है कि हाउ मेनी परफॉर्मेंसेस आर स्केड्यूल्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। हाउ मेनी परफॉर्मेंसेस आर स्केड्यूल्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज, आपको मुझे बताना है। इज इट वन और टू, इज इट वन और टू, सही जवाब भेजिए ऑन 549-1294 पर आपके नाम और पते के साथ, और क्या पता आपको ये दो टिकट्स मिल सकते हैं।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Les 5 kg de croquettes Bois Gokibble 10% gratuit à 572,95 € et le bol antidérapant de 14 cm à 119,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
4: On est tous
1: RM2
2: Radio Musty
1: Morning Beat.
5: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2 Radio Musty in the mix.

0: नाच मेरी जान नाच, लेकिन खुशी के मारे नाच।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: सवाल किया था आपसे कि हाउ मेनी परफॉर्मेंसेज आर स्केड्यूल्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज, वन और टू। द राइट आंसर इज टू। यस, हम बात कर रहे थे यहाँ पर सर्किस की, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी सारे इतने सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। सो यस, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट वन टिकट्स टू सियक जावाता। सो यहाँ पर आप जाकर जो एक्सपीरियंस आपका होने वाला है, इट्स गोना बी मैजिक, थ्रिल्स, लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली। यू कैन कैच सर्कस जावाता एट बागातेल, जो होता है एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे आज फ्रॉम 6 PM, सैटरडे एंड संडे होता है 2:30 PM एंड 5:30 PM। आपके बुकिंग्स के लिए या तो फिर इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल 5250-9413। सो सेक्स दवाता, डोंट मिस द मैजिकल बिग शो। आपको आना पड़ेगा MBC अपने आईडी कार्ड के साथ, अपना जो टिकट है उसको ले जाने के लिए। और विनर है पूर्णिमा मुसाई, जो कि है फ्रॉम कोमोदिल। कंग्रेचुलेशंस। हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है आपको कॉल करेंगी सारी डिटेल्स के लिए। अदरवाइज आपको पता ही, अगर आप सुनते हैं हमारा प्रोग्राम तो आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर मंडे से फ्राइडे सुबह 9 और दोपहर के 3 बजे के बीच आना होता है अपने आईडी कार्ड के साथ टू कलेक्ट योर टिकट्स।

0: सॉरी हमने आपकी गाड़ी रुकवा दी क्योंकि ये ड्राइव करते हुए बात नहीं कर सकते ना।
1: जी हाँ।
0: हाँ जी, तो मैंने सुना है कि आप कहीं पे आप हर जगह जाके आग लगाते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, आप आग लगाते हैं।
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: या गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम?
2: गुड मॉर्निंग, आई एम मिसेस जेरी।
0: यस मिसेस जेरी, वो आपके पति के बारे में कंप्लेन आई थी।
2: ओके
0: हाँ। कंप्लेन आई थी कि वो इधर की बात उधर करते हैं, आग लगाते हैं, झगड़ा लगाते हैं।
2: किसने कहा?
0: आप कंप्लेन आए हैं भाई, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको। बहुत सारे बहुत सारे कंप्लेन आए हैं। वो आग लगाते हैं कि आग लगाते हैं कि आग बुझाते हैं?
2: वो आग बुझाते हैं।
0: आग कैसे बुझाएंगे वो?
2: वो क्योंकि वो एक फायर फाइटर हैं।
0: अच्छा जी, तब तो मुझे उनसे तब तो मुझे उनको बोलना पड़ेगा।
2: जी हाँ, वो ड्राइव कर रहे हैं अभी, इसलिए आपसे बात नहीं करते।
0: चलो फोन को आप हैंड्स फ्री रखो।
2: ओके ओके।
0: चलिए दीपक जी, आप आग बुझाने का काम करते हैं, मैं जानती हूँ बहुत हिम्मत चाहिए इसे नौकरी के लिए। सो आपको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन पर, आपको बहुत सारा प्यार भेजा गया है एंड आपके लिए विशेस भेजे गए हैं आपके सन इन लॉ अनूप और आपकी नीस याशना की तरफ से। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है जो आपको आज नहीं तो कल कलेक्ट करना पड़ेगा आकर MBC अपने ID कार्ड के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंजॉय।
2: वो हमारे पास वो
0: हाँ जी मैं
2: वो आज नौकरी पर जाएंगे।
0: अच्छा ठीक है, वो कल भी आ सकती। हाँ जी आ सकते। हाँ जी,
2: अगर मेरी बेटी आ सकती है,
0: बिल्कुल आ सकती है, लेकिन पापा के आईडी कार्ड के साथ। थैंक यू सो मच।
2: पापा के अगर उसका
0: मैं बाद में
2: होगा व्हाट्सएप में,
0: मैं बाद में हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको कॉल करके सारी डिटेल्स दे देंगी। फिलहाल अभी के लिए आप अपना राइड एंजॉय करें एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।
2: ओके थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
3: मॉर्निंग बीट, a good beat for your morning show. James.
4: RM2 Radio Musty in the mix.
5: Jeez, everybody.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: Yes, समय हो गया है, चलिए हम भी पीछे पीछे भागते हैं अरविंद की, लेकिन अरविंद कहाँ गए? अरविंद, गुड मॉर्निंग, हेलो।

गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, एंड वेलकम चैंपियंस लीग। यूरोपियन चैंपियंस लीग इज बैक। आज से यूरोप की बेहतरीन टीमें यूरोप की टॉप ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार हैं। ला कूप ओ ग्रैंड ओरेल कहते हैं इसे। पेरिस सेंट जर्मेन हैट्रिक पूरा करना चाहेगा। फुटबॉल पंडितों के अनुसार आर्सेनल के साथ बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख फेवरेट हैं। अगले साल 5 जून को मैड्रिड में फाइनल होगा, पर इससे पहले लीग स्टेज के मैच आज से शुरू। एके एथेंस वर्सेस एलएएसके, क्लब ब्रूज अस्टन विला, बोरुशा डॉर्टमुंड विलारियल, लिल रियल बेटिस, पोर्टो मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड इंटर मिलान, ये आज के मैच हैं। कल बार्सिलोना फेयनूड, स्टुटगार्ट विकिंग, लिवरपूल अपने एनफील्ड रोड में होगा एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, नापोली आर्सेनल, पेरिस सेंट जर्मेन स्लोवान ब्रातिस्लावा, स्पोर्टिंग गलातासराय, और थर्सडे मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापसी, द कमबैक ऑफ द रेड डेविल्स इन चैंपियंस लीग, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सबा, मतलब प्रीमियर लीग की 5 टीमें चैंपियंस लीग में। कल के खेले गए मैचों के नतीजे, इंग्लैंड के लीग 1 में ब्रॉनले 0 विंबलडन 2, स्पेन के ला लीगा में रेताफे 1 सेल्टा विगो 1, एल्चे और रियल सोसिएदाद वाले मैच में रियल सोसिएदाद की जीत हुई 3-2 से। इटली के सेरी आ में कागलियारी 1 लेचे 0, उडिनीजे 1 लाजियो 2, स्पेन के ला लीगा में याद दिलाते हैं रेताफे 1 सेल्टा विगो 1। हाँ, आज इंग्लैंड के काराबाओ लीग कप में थर्ड राउंड के मैच खेले जाएंगे। बोर्नमुथ लिंकन सिटी, क्रिस्टल पैलेस मिडल्सब्रो, लेटन ओरियंट ब्रैडफोर्ड सिटी, सन्डरलैंड हल सिटी, मिलवॉल न्यूकासल यूनाइटेड। प्रीमियर लीग में इस वीकेंड, इस सैटरडे 12 सितंबर को जो मैच खेले जाएंगे, 6 बजे अस्टन विला नॉटिंघम फॉरेस्ट, बोर्नमुथ ब्रैडफोर्ड, चेल्सी हल सिटी, क्रिस्टल पैलेस इप्स्विच, लिवरपूल फुलहम, फिर 8:30 बजे टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन, और आर्सेनल के लिए लेट मैच होगा 11 बजे सन्डरलैंड के मैदान में। संडे मैच कोवेंट्री ब्राइटन और द मैनचेस्टर डर्बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपने पड़ोसी मैनचेस्टर सिटी का स्वागत करेगा। ये है 7:30 किक ऑफ, और मंडे को, सोमवार को लीड्स वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड। बालों दो के लिए आज शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी। हैरी केन फेवरेट हैं, पर बहुत फुटबॉल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अवार्ड केवल सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वालों के लिए नहीं, कुछ और होते हैं, कुछ और देखे जाते हैं, खासकर जिस साल में वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी आगे आते हैं, रोड्री को भी उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो केन या स्पेन का कोई शॉर्टलिस्ट आज ऐलान किया जाएगा। टेनिस, एलेना रिबाकीना यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची नाओमी ओसाका को हराकर। यहां पर उसका सामना जेंग क्विन वेन से होगा, जिसने इगा श्वातेक को एलिमिनेट किया। अगर रिबाकीना क्वार्टर फाइनल मैच जीतती है तो वो वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। अन्य मैचों में अलेक्जेंडर ब्लोक्स ने सेरुंडोलो को हराया। बेन शेल्टन, एमा नावारो, मीरा आंद्रीवा, पेगुला काचानोव, कोको गोव जीत पाए। क्वार्टर फाइनल में कोको गोव का मुकाबला मीरा आंद्रीवा से होगा। कारेन काचानोव, ब्लॉक्स अरीना सबालेंका, लिंडा मोस्कोवा, फ्रांसिस चियाफोए का मुकाबला अलेक्स मिकेलसन से। और क्रिकेट में विमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। पाकिस्तान ने हांगकांग को 72 रनों से हराया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। आज बांग्लादेश वर्सेस यूएई, जिसकी जीत होगी सेमीफाइनल में, भारतीय टीम तैयार है, इंतजार कर रही है। याद दिला दें, मॉरिशस में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का ग्रैंड फाइनल इस

0: इसी संडे को खेला जाएगा. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. चलते चलते फिर से बता दें, आज से चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के मैच शुरू होंगे. इन पर आपको जानकारियां देते रहेंगे. कीप ऑन लिसनिंग RM2, हमारा साथ देते रहिए. हैव अ गुड डे अहेड. बाय बाय.
1: थैंक यू अरविंद. हैव अ गुड डे यू टू.
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट.

0: to Radio Musty.
1: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrée directement chez toi grâce à Deliveroo et Odamanzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, mais commandez, nous amenez. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
2: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: TechMag, powered by
4: 365. Bien plus encore.
5: You may have seen posts claiming that WhatsApp's advanced chat privacy stops Meta from reading all your conversations. That's not what the setting does. WhatsApp messages are already protected by end-to-end encryption. This extra option helps keep content inside a particular chat by blocking chat exports, automatic media downloads, and the use of messages with AI features. Open the chat, tap its name, then select Advanced Chat Privacy. It's especially useful for sensitive family, health, or community groups. But remember, it cannot stop someone from taking a screenshot or copying information manually.
3: TechMag was powered by
4: 365. Bien plus encore.
0: RM2.
3: Radio Musty.
2: North, South, East or West. Tune into the very best. Radio Musty, your number one beloved station.
0: A good beat for your morning show.
3: Come on.
0: RM2.
3: Radio Musty.
6: चलिए अभी बात करते हैं क्रिकेट की. यस, अभी तो स्पोर्ट्स न्यूज आपने सुना, तो हमने सोचा कि चलो अब क्रिकेट है तो उसके चलते आपको हम सवाल करते हैं. आप इनाम अगर जीतना चाहते हैं तो मेरे सवाल का जवाब दे देना. और यहाँ पर हम बात करते हैं जब क्रिकेट की, तो आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 जो है, द ग्रैंड फिनाले इज ऑन संडे 30th of September. ये हो रहा है SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू में. मैच जो है वो शुरू होंगे दिन के 10 बजे एंड ऑर्गेनाइज बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP. चलिए जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो थ्रिलिंग सीजन है ये किक ऑफ हुआ था 1st of August को विद 6 पावर पैक्ड टीम्स, और वो थे कॉन्टिनेंटल, AMG, ABP, कैंपस अब्रॉड, वन हेल्थ एंड थॉमस कुक. तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेरे सवाल का जवाब देने पर, या यू कैन प्ले विद RM2 एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ 500 rupees गिफ्ट वाउचर कर्टेसी ऑफ इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट वेयर यू कैन सेवर द ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ इंडिया. तो चलिए आप मुझे ये बताइए, व्हाट डू वी कॉल द पर्सन हु मेक्स डिसीजंस ऑन द फील्ड. जो फील्ड में होता है क्रिकेट जब चलता है तो जो पर्सन होता है जो डिसीजंस लेता है ऑन द फील्ड, उसको क्या कहते हैं. आप मुझे सही जवाब दीजिए ऑन 5499 1294.
3: RM2
2: Radio Musty.
3: Feel the Musty.

0: You're listening to Radio Masti. मैं हूँ विदिता आपके मॉर्निंग बीट के साथ. कैसे हैं जी? हमारा सवाल था, हमने सवाल पूछा था और चलिए देखते हैं कि हमारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं उनमें से सबने तो सही जवाब दिया, लेकिन विनर कौन बना ये जानने के लिए सवाल फिर से दोहरा दें.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Masti.
0: हमने पूछा था, व्हाट डू वी कॉल द पर्सन हु मेक्स डिसीजंस ऑन द फील्ड एंड द राइट आंसर इज अंपायर. और यहाँ पर सभी ने सही जवाब दिया है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. और यहाँ पर लकी ड्रॉ के बाद विनर कौन है? ईशा लंगर फ्रॉम पेची काफ्री. कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और अभी आपको मौका मिल रहा है जीतने का. RM2 के साथ खेलने पर 500 रुपीज़ का वाउचर. एंड यस, ये है आपके लिए इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट की तरफ से वाउचर. एंड वहां पर जाकर

आप जो इंडियन स्वाद है उसका आनंद ले सकते हैं। सो मैं आपको बताऊं, ये आपको मिला था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन आइलैंड क्रिकेट एक्सट्रावेगेंजा सीजन 4 जो होने वाला है संडे 13th ऑफ सितंबर को एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू में। ये मैच 10 बजे शुरू होंगे और ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP। एंड मैं आपको बताऊं कि यहां पर जितने भी सिक्स पावर पैक टीम्स हैं उनके साथ किक ऑफ हुआ था, तो आप लोग जाकर वहां पर जो हाई एनर्जी है क्रिकेट फन

चलिए इसके साथ मेरे जाने का टाइम हो गया है, मेरे बाद आ रही है आपकी प्यारी सी पूनम आपका साथ देने के लिए। जी हाँ, पूनम आएगी और आपके साथ रहेगी खूबसूरत गानों के साथ। मैं आपसे मुलाकात करूंगी कल मॉर्निंग 7 बजे। बाय, टेक केयर।

नमस्ते और सलाम फजर के आठ बजलबा आवाज़ समाचार सुना जा मरीस में आज फजर 10 बजे से 4 से 6 मीटर लहरें उठे के चेतावनी बातें कल बीफे शाम 4 बजे ले ये हालत बरकरार रहेला एकर अलावा मस्केरिंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड के लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ेला जिकर कारण मुरीस में तेज हवा चलाता और ठंड महसूस करता समुंदर के मौज से साहिली इलाका में बाढ़ के उतरे के खतरा बाती मुरीस के तरफ इतिहाद एयरवेज के उड़ाने भरने खातिर बातचीत कर जात बाते काफ़ी वक्त से अबू धाबी के सरकार मुरीस में ई विमानन सेवा देवे के इरादा जाहिर कर जात

0: बातें इनावा हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क के बहुत फ़ायदा होल बा। पर्यटक के आमद में बढ़ोतरी के अलावा देश के विजिबिलिटी बढ़ाता। आज फौजलावाल के मकबरा ले तीर्थ यात्रा करल जाल बाते। गरीब के मसीहा के रूप में मुर्शिद पधारे जाग दिजगे लावाल के श्रद्धांजलि अर्पित करे खातिर देश के चार कोनों से लोग सैंखवा जाल बाते। पेशे से डॉक्टर 1841 में फौजलावाल मोरिस पहुँचे। उ हमेशा तंग दस्त खातिर काम करेला। पोप जॉन पॉल द्वितीय ओकर 1979 में आशीर्वाद देले बा। आज रात 8 बजे विशेष प्रार्थना सभा लगेला। विदेश में दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्य निकेतन इलाका में 5 मंजिला इमारत दह गल बाते। पुनर्निर्माण कार्य करल जात बाते। जेके हादसा के प्रारंभिक वजह समझी जाल बाते। 7 जना के मौत हो गल बाते। द ई रहर समाचार। नमस्ते और सलाम।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: North, South, East or West, tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.

0: good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
1: Radio Musty.
0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग, 8:08 हो चुके हैं। प्यारा सा दिन लग गया भैया, मंगलवार का, मंगलवार सितंबर 8 तारीख, क्या बात है। बाहर का जो मौसम है, इतनी ठंड कहाँ से आ गई। कैप, स्वेटर, जैकेट सब निकाल लीजिए, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बट अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं स्टूडियो के इनसाइड हूँ कि किधर कितनी हो रही है, इसलिए अपने प्रिकॉशन साथ साथ लेनी है। तो जिन्होंने भी अभी तक मिस कर दिया है कि हमारा आज पूरे दिन का मौसम कैसा रहेगा, सबसे पहले जानते हैं मौसम और उसके बाद सुनेंगे प्यारे प्यारे से गाने जो कि हमको देंगे गर्माहट, क्योंकि सुबह से वेदिता ने जिस तरीके से गाने चलाए हैं, मेरे को तो गर्माहट महसूस होगी, आपको भी होगी। पर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमको RM2 रेडियो मस्ती को, हम तो कहेंगे इस गानों के साथ में एंजॉय कीजिए अपने दिन को।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ऑन इट टू स्विनर्स।
4: और अब करते हैं मौसम की बात एक बार फिर से। मॉरीशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्करविंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरीशस में तेज़ हवाएँ चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी अगले 24 घंटों के लिए। पूर्वानुमान, एक जोरदार एंटी साइक्लोन भी हमारे इलाके में पाया जा रहा है। आज सुबह घने बादल होंगे, दिन के दौरान बादल घिराएंगे और रह रह कर बारिश होगी जो कभी कभी ज़ोरदार होगी। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और रह रह कर वर्षा होती रहेगी जो कभी कभी ज़ोरदार होगी। हवा दक्षिण की तरफ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके चंद इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। लगुनों के उस पार समुद्र बहुत ही ख़राब रहेगा, 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी और इनकी वजह से साहिल इलाकों में सैलाब के उतरने का भी ख़तरा है। इसी वजह से मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से मांग है कि वो दूर समुद्र में ना जाएं और सड़कों पर भी चालकों से सावधान रहने की मांग की जा रही है, क्योंकि बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी। तापमान, सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 15 से 17, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नोट की जाएगी और आज शाम 6:02 पर सूरज ढल जाएगा।
5: À tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Les 5 kg de croquettes Wago Kibble 10% gratuit à 572,95 € et le bol antidérapant de 14 cm à 119,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
6: On est tous Winners.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:21 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मॉर्निंग बीट के साथ। मुझे पता है कि रेगुलरली

0: आप मिलते हैं वेदिता से मॉर्निंग बीट के आवर में, पर आज मुझे ड्यूटी दी गई है और उनको बहुत जल्दी ड्यूटी दे दी गई थी। तो चलिए भाई, ये तो हमारी बात हो गई, पर आपकी बात क्या निराली है, क्योंकि देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्कूल या कॉलेज जाना है, वो तो मैं उनको मॉर्निंग में देख रही थी, क्या टिप टॉप होके जाते हैं, मतलब बिल्कुल फिट एंड फाइन होके, उनके अंदर इतनी मतलब ताकत होती है, इतनी एनर्जी होती है, एकदम आप कहीं पर भी स्टूडेंट्स को देखेंगे ना मॉर्निंग आवर में, वो बहुत ही क्लासी और बहुत ही सिंपल और क्यूट से लग रहे होते हैं। वहीं पर जो हमारे ऑफिस में जाने वाले होते हैं ना, वो थके हुए टेंशन में लग रहे होते हैं। क्यों लग रहे होते हैं भाई? बिल्कुल टेंशन मत लो, किस बात के लिए नहीं है, जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा चेयर अप करो, खुद को बोलो अरे मैं बिल्कुल फिट लग रहा हूँ, बिल्कुल फिट लग रही हूँ, और थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लो, थोड़ी सी स्माइल चेहरे पर ले आओ, और थोड़ा सा जल्दी निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है कि देर हो गई तो फिर लास्ट मोमेंट पर भगा नहीं गाड़ी क्यों, तो आराम आराम से गाड़ी चलाइए, इंजॉय कीजिए गानों को, और थोड़ा सा अपने आप को कूल कीजिए, चिल कीजिए, और जो होगा देखा जाएगा, इंजॉय कीजिए इस गाने को, बहुत ही प्यारा सा है सोनू निगम की आवाज में।
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2.
2: Radio Musti.

0: Skip.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.
5: किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है, जब खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे को इतनी

0: देर तक देखते रहते हैं कि जो नया दरवाज़ा हमारे लिए खुला है उसे देखना ही भूल जाते हैं। तो हमेशा अपने आसपास देखते रहिए, क्या चीज़ क्या आपके लिए खुल रही है और क्या चीज़ आपके लिए बंद हो रही है। हमेशा खुश रहें, इंजॉय करें इस प्यारी सी जिंदगी को।
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
1: Petite, on me disait ce que je devais faire, mais moi, je voulais juste faire du sport.
2: Milo, libère ta force.
1: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
2: Milo, libère ta force.
1: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:31 हो चुके हैं. जिन्होंने मिस कर दिया था स्पोर्ट्स, तो हम चाहते हैं कि उनको फिर से सुना दें, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं क्या चल रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में. तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड आपके लिए.
0: स्पोर्ट्स न्यूज़
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स एंड वेलकम चैंपियंस लीग, यूरोपियन चैंपियंस लीग इज बैक। आज से यूरोप की बेहतरीन टीमें यूरोप की टॉप ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार हैं। ला कूप ओ ग्रांड ओरेल कहते हैं इसे। पेरिस सेंट जर्मेन हैट्रिक पूरा करना चाहेगा। फुटबॉल पंडितों के अनुसार आर्सेनल के साथ बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख फेवरेट हैं। अगले साल 5 जून को मैड्रिड में फाइनल होगा, पर इससे पहले लीग स्टेज के मैच आज से शुरू। एके एथेंस वर्सेस एलएएसके, क्लब रूज एस्टन विला, बोरुशिया डॉर्टमुंड विलारियल, लिल रियल बेटिस, पोर्टो मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड इंटर मिलान, ये आज के मैच हैं। कल बार्सिलोना फेयेनूर्ड, स्टुटगार्ट विकिंग, लिवरपूल अपने एनफील्ड रोड में होगा एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, नापोली आर्सेनल, पेरिस सेंट जर्मेन स्लोवान ब्रातिस्लावा, स्पोर्टिंग गलातासराय। और थर्सडे मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापसी, द कमबैक ऑफ द रेड डेविल्स इन चैंपियंस लीग, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सबा, मतलब प्रीमियर लीग की 5 टीमें चैंपियंस लीग में। कल के खेले गए मैचों के नतीजे, इंग्लैंड के लीग 1 में ब्रॉनले 0 विंबलडन 2, स्पेन के ला लीगा में रेताफे 1 सेल्टा विगो 1, एल्चे और रियल सोसिएदाद वाले मैच में रियल सोसिएदाद की जीत हुई 3-2 से। इटली के सेरी आ में कागलियारी 1 लेचे 0, उडिनीजे 1 लाजियो 2, स्पेन के ला लीगा में याद दिलाने रेताफे 1 सेल्टा विगो 1। आज इंग्लैंड के काराबाओ लीग कप में थर्ड राउंड के मैच खेले जाएंगे। बोर्नमुथ लिंकन सिटी, ब्रिस्टल पैलेस मिडल्सब्रो, लेटन ओरियंट ब्रैडफोर्ड सिटी, सन्डरलैंड हल सिटी, मिलवॉल न्यूकासल यूनाइटेड। प्रीमियर लीग में इस वीकेंड, इस सैटरडे 12 सितंबर को जो मैच खेले जाएंगे, 6 बजे एस्टन विला नॉटिंघम फॉरेस्ट, बोर्नमुथ ब्रैडफोर्ड, चेल्सी हल सिटी, क्रिस्टल पैलेस इप्सविच, लिवरपूल फुलहम, फिर 8:30 बजे टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन, और आर्सेनल के लिए लेट मैच होगा 11 बजे सन्डरलैंड के मैदान में। संडे मैच कोवेंट्री ब्राइटन और दी मैनचेस्टर डर्बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपने पड़ोसी मैनचेस्टर सिटी का स्वागत करेगा। ये है 7:30 किक ऑफ, और मंडे को, सोमवार को लीड्स वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड। बालों दो के लिए आज शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी। हैरी केन फेवरेट हैं, पर बहुत फुटबॉल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अवार्ड केवल सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वालों के लिए नहीं, कुछ और होते हैं, कुछ और देखे जाते हैं, खासकर जिस साल में वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी आगे आते हैं, रोड्री को भी उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो केन या स्पेन का कोई शॉर्टलिस्ट आज ऐलान किया जाएगा। टेनिस, एलेना रिबाकीना यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची नाओमी ओसाका को हराकर। यहां पर उसका सामना जेंग क्विनवेन से होगा, जिसने इगा श्वातेक को एलिमिनेट किया। अगर रिबाकीना क्वार्टर फाइनल मैच जीतती है तो वो वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। अन्य मैचों में अलेक्जेंडर ब्लोक्स ने सेरुन डोलो को हराया। बेन शेल्टन, एमा नावारो, मीरा आंद्रीवा, पेगुला काचानोव, कोको गोफ जीत पाए। क्वार्टर फाइनल में कोको गोफ का मुकाबला मीरा आंद्रीवा से होगा। कारेन काचानोव, ब्लॉक्स, अरीना सबालेंका, लिंडा मोस्कोवा, फ्रांसिस चियाफोए का मुकाबला अलेक्स मिकेलसन से। और क्रिकेट में विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। पाकिस्तान ने हांगकांग को 72 रनों से हराया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान

0: पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। आज बांग्लादेश वर्सेस यूएई, जिसकी जीत होगी सेमीफाइनल में भारतीय टीम तैयार है, इंतजार कर रही है। याद दिला दें, मॉरिशस में आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का ग्रैंड फाइनल इसी संडे को खेला जाएगा। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते फिर से बता दें, आज से चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के मैच शुरू होंगे, इन पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। कीप ऑन लिसनिंग RM2, हमारा साथ देते रहिए। हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।
1: बाय बाय आपको भी अरविंद जी, थैंक यू फॉर द अपडेट्स।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti. 8:42
2: हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मॉर्निंग बीट के साथ में। और मॉर्निंग बीट हमेशा आपको ये कहता है कि भाई मॉर्निंग मॉर्निंग हुई है तो खाली पेट कहीं मत जाइएगा, ज़रूर घर से कुछ खा के निकलिए, भले एक कप चाय निकलिए, बिस्किट ले लीजिए, सीरियल्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। कुछ लोग हैं जो अभी भी घर में भूखे पेट काम कर रहे होंगे और झाड़ू ये वो सब कर रहे होंगे, तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक दीजिए। कुछ नहीं होता, पूरा दिन पड़ा है, पूरे दिन काम ही करना है, पर अगर आपने पेट पूजा कर ली ना सुबह सुबह, तो आपको देखो एक तो सुबह लंबा नहीं लगता और उसमें आपको हेडेक नहीं होता, एक अलग सी कहते हैं ना जो एक अनइजीनेस होती है जो ब्रेन में और दिल में और बॉडी में और पेट में, वो नहीं लगता। तो थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपने कुछ घर पर भी नहीं खाया है और ऑफिस के लिए निकल पड़े हैं, तो वहाँ पर कहीं पर भी जाते जाते कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, गर्म गर्म चाय कॉफ़ी, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो हम तो यही कहते हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं और हमें पता है आप हमारा ख्याल रखते हैं आपके मैसेजेस से। तो भाई हम तो यही कहेंगे, अगर आपका भी दिल कर रहा है, किसी का बर्थडे नहीं भूले हैं, किसी का एनिवर्सरी नहीं भूले हैं, अरे अगर किसी आपकी खुद की है, कई बार इंसान को लास्ट मोमेंट पे याद नहीं रहता है, तो अगर आपकी एनिवर्सरी या किसी स्पेशल पर्सन की बर्थडे है तो उसे कॉल करके बताइए और हमें भी बताइए 5491294 पर। हम आए आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ पूनम।
0: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2
1: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:53 हो गए हैं और मुझे बताइए भाई 9 बजने वाले हैं, कौन कौन अभी ऑफिस पहुंच चुका है और कौन कौन अभी तक रास्ते में जा रहा है। जो लेट हो गए हैं टेंशन मत लीजिए, बस सेफली पहुंचिए, बाकी बॉस को एक प्यारी सी स्माइल देना, बॉस संभाल लेंगे और आप भी हमें पता है संभाल लेंगे। और बॉस को हम यही बोलते हैं कि जो भी आपको पहले दिखे ना कि जो स्माइल दे रहा और लेट पहुंच जाए तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि रेडियो मस्जिद सुन के पूनम को सुन के आया और आपको स्माइल दे रहा है, एटलीस्ट मॉर्निंग उसकी भी अच्छी हो जाए। पर वैसे लेट मत पहुंचा करो क्योंकि अच्छी बात नहीं है, ठीक है, हम बॉस के साथ हैं। चलो टेक केयर, इंजॉय कीजिए, 9 बजे वाले काम भी लगना है और बहुत सारे काम भी करने हैं। मस्ती के साथ में, गानों के साथ में थोड़ी देर बाद आप सुन पाएंगे न्यूज़।

0: मंगलवार 8 सितंबर घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर सुमेरा आ चुकी है। सुमेरा आपका स्वागत है।
1: नमस्कार आदाब। मुर्शिद में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी और इसके अलावा मस्केरेंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है और इसकी वजह से मुर्शिद में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। समुंदर की मौजों से साहिली इलाकों में बाढ़ के उतरने का भी खतरा है। ऋतु विज्ञान केंद्र सभी तरह की सावधानियां बरतने की मांग कर रहा है। मुर्शिद की तरफ इतिहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत की जा रही हैं। काफ़ी वक्त से आबू धाबी की सरकार ने मुर्शिद में विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फायदे होंगे। पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी के अलावा देश की विजिबिलिटी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। काफ़ी वक्त से पेंशन सुधार का मुद्दा देश में सुर्खियों में बना हुआ है। याद रहे कि जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लेगा। सरकार ये सुधार क्यों अपना रही है, एक व्यक्ति को किस उम्र से बेसिक पेंशन प्राप्त होगा, ऐसे ही कुछ सवाल आजकल मुर्शिदों के दिमाग में उठ रहे हैं। और मंत्री अविनाश राम तोहर ने स्पष्ट किया कि कैब दफ्तरों में मुर्शिदों को समझाने के लिए हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। इसके अलावा ऐप के जरिए भी मुर्शिद इसके बारे में पता लगा सकते हैं। मंत्री राम तोहर ने जोर दिया कि ये सुधार बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पुरानी पेंशन प्रणाली टिकाऊ

0: नहीं थी। मॉरिशस में जुलाई 2026 तक मेथाडोन लेने वालों की तादाद में 8,118 यानी उनकी तादाद 8,118 रही है। मुल्क भर में 70 जगहों पर इन्हें प्रदान किया जा रहा है। ड्रगनोशी के इलाज के तौर पर मेथाडोन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। इस प्रोग्राम की कारगरता के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां उभरती जा रही हैं, साथ में पारिवारिक भूमिका पर बहुत जोर दिया जा रहा है। आज फौजल आवाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मॉरिशस पधारे जाक डेज़िरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सेंट क्वा जाएंगे। पेशे से डॉक्टर, 1841 में फौजल आवाल मॉरिशस पहुंचे। उन्होंने हमेशा तंगदस्तों के लिए काम किया है और पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें 1979 में आशीर्वाद दिया था। आज रात 8 बजे खास महासभा सेंट क्वा में लगाई जाएगी। विदेश में दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है और पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे थे, जिससे हादसे की प्रारंभिक वजह समझी जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई है और 12 लोगों को मलबों के नीचे से निकाला गया है। इमारत के मालिकों को गिरफ्तार भी किया गया, जाँच की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इमारत में हॉस्टल भी था। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार, राधा।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: MPC-च्यावतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: नौ बजकर 11 मिनट हो चुके हैं दोस्तों. अभी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि एक उम्र के पड़ाव पे हैं. वो भी एक खूबसूरत पड़ाव है क्योंकि देखिए उम्र हम हैं इस दुनिया में तो उम्र भी बढ़ती है. थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई किसी ने शॉपिंग पे जाना है या वेजिटेबल्स लेने जाना है तो मैं तो आप सबको कहूँगी अगर आप क्योंकि अभी तो निकले नहीं होंगे और जो निकल गए हैं तो उनको नहीं हम कह सकते. पर जहाँ पर भी आवाज़ आ रही है मैं आपको इतना बोलती हूँ हमेशा

0: जब भी आप बाहर जाया करें प्लीज़ कंफर्टेबल शूज़ डाल के जाया कीजिए, आपको चाहे बारिश हो ना हो आप शूज़ डालीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है एक तो आपका ग्रिप बनी रहती है, आपकी बॉडी एकदम फिट रहती है, आप एकदम स्ट्रेट चलते हैं, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल हो, अंकल हो आंटी हो कोई भी हो, आप हमेशा एक शूज़ का पेयर जो कि बहुत अच्छे ब्रांड का हो, क्योंकि जब भी प्रमोशन लगती है आप प्रमोशन पे जाओ ना वहाँ पे एक अच्छा सा शूज़ का पेयर लेकर आइए अपने लिए और वो हमेशा अपने पास रखिए, और जब भी कहीं जाना है तो वो उसे कंफर्टेबल पहनिए, ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी स्लीपर्स पहन लिया या कोई भी हील्स पहन लिया या कोई ऐसी चीज़ जो आपके इस एज में आपके लिए सेहतमंद नहीं है। तो हम आपको यही कहते हैं, सब बच्चे आपका ध्यान रखते हैं परिवार वाले, पर कई बार आपको समझाते हैं कि मत करो तो फिर कई बार हमको एहसास होता है कि नहीं बोलना अच्छा नहीं है, उनकी भी एक उम्र है, उनकी भी अपना एक चॉइस और स्टाइल है, बट फिर भी हम आपको ये कहेंगे आप शूज़ डालिए, वेजिटेबल्स लेने जाइए, शॉपिंग कीजिए, साथ साथ वॉक हो जाती है, साथ साथ थोड़ा सा नारियल पानी पी लीजिए, कुछ फ्रूट खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए, जो आपको ठीक लगता है कर लीजिए, बट ऐसे नहीं कि भूखे भूखे जाएँ और बहुत ढेर सारा ओवरलोड करके आप बैग लेकर आएँ और आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ी देर जाइए, थोड़ी आराम से आइए, कंफर्टेबल चाहिए कंफर्टेबल वापस आइए, यही है आर एम टू रेडियो मस्ती का मैसेज आप सबके लिए जो हमारे एक उम्र में दोस्त हैं। तो हम तो यही कहेंगे जाइए इंजॉय कीजिए खाइए पीजिए और वापस आइए, गानों के साथ बने रहिए।
1: वेलकम टू आर एम टू
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:24 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। और मस्ती मॉर्निंग में मस्ती ना हो और वो मिस हो कैसे हो सकता है। हम गाने लगाते ही ऐसे हैं कि जिसमें आपका मूड बने, क्योंकि भाई थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो गई और ठंडे में थोड़ा सा काम करने का दिल नहीं करता, पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता। ऐसा होता है कि बस आलस ही आलस आता है, दिल करता है सोते रहें। पर हम आपको बोलेंगे थोड़ा सा कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, कुछ ऐसा खाइए, शीरा बना लीजिए। शीरा मुझे पता नहीं कईयों को पता होगा नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच देसी घी लेना है। देसी घी के अंदर आपको थोड़ा सा मतलब एक चम्मच बेसन लेना है, उसको अच्छे से भुनना है, मतलब 3-4 मिनट उसको रोस्ट करना है। उसके अंदर भुनते रहिए देसी घी में अच्छे से। जब वो रोस्ट हो जाए उसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और उसके अंदर एक आधे ग्लास से ज़्यादा थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसको अच्छे से उबलने दीजिए। उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच शुगर डाल दीजिए आपके टेस्ट के अनुसार। जब डालेंगे ना और उसको उबलने देंगे, फिर गरम उसको इलायची भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो उसको गरम गरम सूप सूप करके पिएंगे ना, एक तो बॉडी में, ये उनके लिए जो घर में है, जो काम कर रहे हैं वो काम करो, उनके लिए कॉफ़ी है अभी तो। वो आप जब सूप सूप करके पिएंगे ना, एक तो बॉडी गरम होगी, एक तो एक रिलैक्स मिलेगा आपको। और ये बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं आप, यंगस्टर्स भी ले सकते हैं, जो भी घर में स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। रात को पीजिए, मॉर्निंग में पीजिए, जब आपका दिल करे। टाइम ही ऐसा है, इस टाइम में कुछ गर्म होता है तो अच्छा लगता है। चलिए वही गानों के साथ में आपको गर्माइश देते हैं, क्योंकि गाने तो हमारे पास बहुत सारी लिस्ट में होते हैं, पर कोई आपकी पसंद का है तो आप हमें बता सकते हैं 5499-1294 पर। और थोड़ी देर बाद होगा आपका हॉरोस्कोप।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: नौ बजकर 34 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ, जहाँ पे हम कर रहे हैं सुबह सुबह मस्ती, पर विदाउट आपके मैसेजेस के मस्ती कैसे पूरी हो सकती है। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं येलेश और एक प्यारी सी ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट की प्लेट के साथ में सभी को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, और आपको भी हम कहेंगे इंजॉय कीजिए अपना ब्रेकफास्ट, थैंक यू सो मच। और अनीता जी फ्लैक्स से साथ दे रही हैं, आज उनके बेटे जी का यानी कि करण का बर्थडे है और उनको बहुत ही प्यारी सी विशेष दे रही हैं पूरी जानकी प्रसाद फैमिली, और कह रही हैं जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। क्या बात है, आप भी हमेशा हमारी तरफ से खुश रहें। अगर किसी ने कहा आपको तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना विश करें। राजेंद्र रघुपति जी साथ दे रहे हैं लंदन से और इन्जॉय कर रहे हैं। वीना गंगाधर जी इन्जॉय कर रही हैं और अपने हबी देव को बस इतना कहना चाहती हैं, क्या करूँ मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ। तो भाई देख लीजिए सर आपको कितना प्यार करती हैं, एवरी डे उनका मैसेज आता है इसी वजह से ना, क्योंकि वो से प्यार करती हैं, इस प्यार को हमेशा संभाल के रखिए। वेदना जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं इस मॉर्निंग प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच वेदना। नेहा जी साथ दे रही हैं और आज उनके पापा का बर्थडे है, नेहा आशी राहुल रोहन विकार इशिता लक्ष्य अंश एंड यशिका फनीश्री होल मोहिस फैमिली उनको विश करी है। साथ में और भी बहुत सारे बर्थडे विशेज आए हैं, हम नेक्स्ट आवर में आपके बर्थडे लेंगे और मैसेजेस पढ़ेंगे, बट हम आपको इतना ही कहते हैं जिनका भी आज बर्थडे है उनके लिए सेलिब्रेट तो करना बनता है हमेशा, सेलिब्रेशन जब करेंगे तो हमें भी याद कीजिएगा, बट हमारी तरफ से आप सबके लिए जिनका भी आज बर्थडे है, जिन्होंने मैसेज किया या नहीं किया, पर हमने जो आपके लिए प्यारा सा एक प्यारा सा चीज़ बजानी है वो तो बिना बजाए रह नहीं सकते हम।

0: रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 9:45 हो चुके हैं. आज बात होगी राशि में आपकी पढ़ाई, सीखने की और केयर की. तो चलिए, जो भी पेरेंट्स हैं जो इस समय ये सुनेंगे, अपने बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा उनकी राशि का आज का दिन. तो सबसे पहले शुरू करते हैं
2: एरीज मेष राशि.
1: आज पढ़ाई में नया टॉपिक जल्दी समझ आएगा. काम में जो भी कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, जल्दी जल्दी नहीं, ध्यान लगाकर आगे बढ़िए. लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 5.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज जो भी पढ़ेंगे उसे लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए. स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं. बीच में छोटा सा ब्रेक लेकर माइंड को फ्रेश रखिए. लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज सवाल पूछने में बिल्कुल हिचकिचाइए मत. टीचर या किसी अनुभवी व्यक्ति की बात काम में आएगी. सीखने की क्यूरियोसिटी बनाए रखिए. लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज घर का अच्छा माहौल पढ़ाई में मदद करेगा. पेरेंट्स बच्चों की कोशिश की तारीफ जरूर कीजिए. थोड़ा प्यार और एनकरेजमेंट बहुत काम करता है, तो इसीलिए हम आपको बोलेंगे उनको एनकरेज करते रहिए. लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए. प्रेजेंटेशन या क्लास में अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे. दूसरों से तुलना नहीं, अपनी प्रोग्रेस पर पूरा फोकस और ध्यान दीजिए. लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज टाइम टेबल बनाना, बनाकर काम करना या पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक साथ बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे. एक टॉपिक पर फोकस कीजिए. पानी पीते रहिए, थोड़ा हल्का फुल्का खाते रहिए, आँखों की एक्सरसाइज करते रहिए, उंगलियों की भी एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा थोड़े दिनों के अंदर, फ्यूचर में, क्योंकि एग्जाम्स डेज हैं. तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ ज़रूर कीजिए जिससे उनकी उंगलियों की एक्सरसाइज होते रहिए. थोड़ा सा आराम खुद को भी दीजिए, पेरेंट्स को भी आराम देना है जिससे वो टाइम से उठा पाएं और टाइम से उनके साथ रहें. लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 4.

0: तुला राशि।
1: आज ग्रुप स्टडी में कोई मुश्किल बात आसान हो सकती है, जो आपको आता है किसी और को भी समझाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज कंसंट्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। पेंडिंग चैप्टर या पूरा काम पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। खुद पर पूरा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना है आपको। लकी कलर बनेगा आपका पर्पल, लकी नंबर है 8।
0: सजिटेरियस धनुराशि।
1: आज नई चीज़ जानने में खूब इंटरेस्ट रहेगा। किताब हो या कोई नया स्किल सीखने में आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। समय आपका अच्छा बीतेगा। सीखने का बोझ नहीं, बस आपको उस काम को इंजॉय करना है। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज आपकी रेगुलर प्रैक्टिस फ़ायदा देगी। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। पेरेंट्स भी अपने बच्चों की मेहनत को अप्रिशिएट करें और उनके लिए थोड़ा सा अगर कोई टाइम टेबल बैठ के सॉल्व कर सकते हैं उनके कोई क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स, और टाइम टेबल बना सकते हैं जिससे उनको थोड़ा सा ईजी हो जाए अकॉर्डिंग टू आपके खुद के एक्सपीरियंस से, तो बहुत अच्छा रहेगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज कोई क्रिएटिव आइडिया पढ़ाई या काम को आसान कर सकता है। अपने नोट्स अपने तरीके से तैयार कीजिए। दोस्त की मदद मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स की मदद मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। कोई सोशल मीडिया से आपको कोई कोई यूट्यूब से या कोई आपकी स्टडी में कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है, या कोई चीज़ आपको सिलेबस मिल सकता है, कोई पढ़ाई का कोई चैप्टर जिससे आपकी पढ़ाई ईजी हो सके, उसे ज़रूर कीजिएगा। लकी कलर बनेगा आपका ब्लू, लकी नंबर है 5।
0: मीन राशि।
1: आज शांत जगह पर पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी। जो याद किया है उसे बार बार दोहराना फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई के साथ नींद और आराम भी जरूर रखिए। खाने का ध्यान रखिए। लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 3। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहिए। मैं थी आपके साथ पूनम। आपकी सुबह शुभ हो। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: Welcome to RM2
2: Musti Mornings Radio Musti.

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। आज फौजा लावाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मुर्शस पधारे जाक डेजिरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सैंत ख्वा जाएंगे। पेशे से डॉक्टर, 1841 में फौजा लावाल मुर्शस पहुंचे थे। उन्होंने हमेशा तंग दस्तों के लिए काम किया था। फौजा लावाल की बरसी के मौके पर हजारों की तादाद में अलग लोग देश भर से लोग वहां जाएंगे। नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। तीर्थ यात्रियों की मदद करने के लिए जगह जगह पर पुलिस होंगे और स्वयंसेवी भी रास्ते में भोजन परोसेंगे। फौजा लावाल की याद में आज रात 8 बजे सैंत ख्वा में खासमा सभा का आयोजन किया जाएगा। मुर्शस में जुलाई 2026 तक मेथाडोन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर मेथाडोन दिया जाता है। ड्रग नोशी के इलाज के तौर पर मेथाडोन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। इस प्रोग्राम की कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां उभरती जा रही हैं। पारिवारिक भूमिका पर बहुत जोर दिया जा रहा है। मुर्शस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्कर रेंज के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुर्शस में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। विदेश में दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है। पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे थे। हादसे की प्रारंभिक वजह यही समझी जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई और 12 लोगों को मलबों के नीचे से निकाला गया। इमारत के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।

0: बाप्पा मोरिया।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और मैं इस समय आपका साथ दे रही हूँ पूनम। पर देखिए गणेश जी आ गए हैं और कहते हैं ना कि जब वो आ जाते हैं तो वो हमेशा साथ देते हैं और साथ जैसे आप सब हमारा रेडियो पर साथ देते हैं हम आपका आपके मैसेजेस के थ्रू साथ देते हैं। हम लोग कितनी सारी गेम्स खेलते हैं, आप लोग गेम्स जीतते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए। ऐसे ही ये टाइम जो चल रहा है गणेश जी को खुश करने का लगा हुआ है हम सबका कि हमारी वो हमारी इच्छाएं हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो हम इतना ही बोलेंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी मनोकामनाएं मत रखना क्योंकि छोटी छोटी भी पूरी कर दें बहुत है, क्यों नहीं, ऐसे ही होता है ना। तो यही चीज़ें ज़िंदगी में अगर हमारे को समझ आ जाएं कि बड़ी मनोकामना नहीं होती है, ज़्यादा बड़ी बड़ी विशेस नहीं रखनी चाहिए, होए नहीं तो दिल उदास होता है। तो दिल उदास करने का नहीं, बस आप खुश रहें, इन्जॉय करें, अपनी फैमिली के साथ रहें, जॉब की प्रॉब्लम्स हों ऐसे ही सॉल्व होती रहें तो और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। चलिए भाई हम तो यही कहेंगे, गानों के साथ जुड़े रहिए, इन्जॉय कीजिए अपनी मॉर्निंग को और साथ में प्यारा सा ये गाना आप सबके लिए।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Mustang।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: यस, कुछ कुछ होता है भाई, हमें भी कुछ कुछ होता है, क्योंकि जब आपके मैसेजेस पढ़ते हैं और एहसास होता है आप सब कितना प्यार करते हैं हम सबको, और हम भी उतना ही उड़ेल उड़ेल कर देते रहते हैं अपने गानों में आपके लिए बहुत सारा प्यार। तो जो भी इस समय हमें सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी को। इन्जॉय कीजिए गानों को और अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाइए। चलिए भाई, दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं इस समय। बहुत सारे जने वेट में हैं कि हमारे मैसेजेस कौन कब पढ़ेगा। तो भाई हम हैं ना यहाँ पे, कहाँ क्यों नहीं पढ़ेंगे। आरती गुरु चिरंजी साथ दे रही हैं और क्या कहते हैं, आज उनका बर्थडे है प्रीतम जी का, और साथ में ब्रदर मिथुन और अनुष्का, टीना, पापा आनंद, वर्षा जी, रणधीर एंड नी की तरफ से बहुत सारी विशेस। इस समय सीता गीता भोला राम जी,

सातों बनार से साथ दे रहे हैं और विश कर रही हैं सभी को। अब्दुल सारा बानो और श्याम देवी चरण जी साथ दे रहे हैं और गरम गरम चाय के साथ कह रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग और कह रहे हैं अच्छे से लंच कीजिएगा। बिल्कुल हम करेंगे, आप भी कीजिएगा। फोर्थ बर्थडे टू एंजल अमीशा राम तोहल फ्रॉम फुफू रेशमा। क्या बात है, फुफू का प्यार अलग ही होता है, बहनों का प्यार अपने भाइयों के लिए कुछ अलग सा ही होता है। यही है भाई, प्यार देते रहिए, बांटते रहिए, तभी तो वापस रिटर्न में एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और इन्जॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को और अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं, बस उनको इतना ही कहना चाहते हैं आई एम मिसिंग यू और जल्दी वापस आता हूँ इंडिया। क्या बात है, बिल्कुल जाइए जी। सीमा जी साथ में साथ दे रही हैं, प्रिया रानी सुनीता जी और प्रवीणा एंड असद जी साथ दे रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप सब इन्जॉय कीजिए, पर जिन जिन का बर्थडे है, जिन्होंने बड़े प्यार से सभी के लिए मैसेज किया है, उन सभी को हम कहेंगे आपकी ज़िंदगी लंबी हो, हमेशा खुश रहें, आपके परिवार जितना आपको प्यार करता है ऐसे ही बर्थडे विशेज़ मिलते रहें। ये आप सब के लिए हमारी तरफ से।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:35 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। इस समय बहुत सारे हमारे लोग जो बिजनेस में हैं वो बिजी होंगे, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे होंगे, मेल्स पे मेल्स आ रहे होंगे, सबका जवाब देना है और वो टेंशन में होंगे। हो सकता है अपने स्टाफ को कह रहे हों कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, उसको पहले देखना था, इसको बाद में देखना था। हम आपको बोलेंगे बिल्कुल आप जो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल फोकस होके कीजिए और आप जो कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, पर कोई भी चीज़ की टेंशन जो है ना दिमाग में मत रखिए। हाँ यस, काम करना है, पेट के लिए करना है ना, तो पेट वाला काम वहीं तक ही रहने दो, दिल तक भी मत लाओ। मतलब जो काम जहाँ तक फील होता है वहीं तक कीजिए, क्योंकि जब टेंशन लेंगे स्टाफ भी नाराज़ हो जाता है, उदास हो जाता है। थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, उनको बोलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो जिससे थोड़ा सा जरा सा भी मोटिवेशन मिल जाता है ना बॉसेस की तरफ से, तो मैं तो कहती हूँ मतलब जो स्टाफ होता है ना वो सर आँखों पर सारे काम करने लग जाता है। तो हम भी आपको बोलेंगे टेंशन मत लो, आराम आराम से कीजिए, और साथ में वो जो हमारे दोस्त हैं घर में हैं उनको हम कहेंगे प्लीज़ थोड़ा सा फ़ोन से दूर रहेगा, रेडियो ऑन कीजिए, अपने काम कीजिए, थोड़ी सी बुक्स पढ़िए, थोड़ा सा कुछ भी ऐसा कुछ करिए, गार्डनिंग कर लीजिए, थोड़ा सा धूप में टहल लीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा जो जो कर सकते हैं, पर ये नहीं कि बस बैठ जाएं, फ़ोन पकड़ा हुआ है और स्क्रॉलिंग शुरू हो गई है, ये अच्छा नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आइज़ के लिए भी अच्छा नहीं है, और मैं कहती हूँ थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो जाता है। और हम हैं ना आपको संभालने के लिए, RM2 रेडियो मस्ती हमेशा 24 आवर्स है आपके साथ, आपके हर सुख और दुख में। तो इन्जॉय कीजिए गानों को और साथ हमारे रहिए।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Mustys.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.
3: 10:42 हो चुके हैं दोस्तों. एक हलकोरी फैशन की तरफ से आपको एक टिप देना है तो हम तो बस इंतज़ार में होते हैं कि कब ऐसा मौका मिले और हम आपको टिप दें. तो चलिए, जिनको जो कपड़े धोते हैं, मतलब घर में तो सभी धोते हैं पर कई बार इनोसेंट हमारे किड्स होते हैं या कोई ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता. ममास को पता होगा, हो सकता है आदमियों को ना पता हो. तो ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी टिप है आप सभी के लिए. तो आपको क्या करना है, जब आप कपड़े धोते हैं तो जिस कपड़े के अंदर या जैकेट में या किसी ट्राउज़र में या जीन में किसी में ज़िप होती है तो आपको क्या करना है, ज़िप जैसे आपने डायरेक्टली ज़िप ओपन करके आपने जीन को या जैकेट को किसी को वॉश नहीं करना है. आपको क्या करना है कि उसकी ज़िप बंद करनी है, उस पर अगर बटन लगा हुआ है तो बटन भी बंद करना है. उसके बाद अगर उसमें बटन नहीं है तो आप एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं जिससे कि वो ज़िप बंद रहे, क्योंकि जब ज़िप खुली होती है और उसमें आप वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसके मेटल टीथ होते हैं, एक तो वो कपड़ों में अटक जाते हैं, उससे जो डेलिकेट फैब्रिक साथ में और जो कपड़े धो रहे हैं तो उसके वो जो फैब्रिक्स हैं वो निकल जाते हैं, फट जाते हैं.

0: आते हैं, टूट जाते हैं, और जब आप उसको कपड़ों को रिमूव करते हैं तो जो पैंट की शेप होती है वो बिगड़ जाती है और बटन्स भी मतलब टूटने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि थोड़ी सी ये छोटी सी टिप है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप वॉश करें तो जिप और बटन सबको बंद कीजिए और ये छोटी सी आदत को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कपड़ों की जो क्वालिटी है, उसकी शाइन है, जो उसके धागे नहीं टूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, ये उसी की वजह से होंगे क्योंकि आप ये छोटी सी टिप को इस्तेमाल करेंगे। एंजॉय कीजिए अपने गानों को।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: 10:53 हो चुके हैं दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। आज की बातें यहीं छोड़ते हैं, लेकिन गानों की बस्ती और अपना जो अच्छा मूड है इसको साथ रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, आप सुन रहे थे मस्ती मॉर्निंग आर एम टू रेडियो मस्ती पर। फिर मिलेंगे नई सुबह के साथ, नई बातों के साथ, थोड़ी सी मस्ती के साथ। मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है नीलमणि का, तो वो भी आपके लिए बहुत सारी गाने और बहुत सारी मस्ती के साथ आने वाली हैं, तो इंजॉय कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2।
2: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ, साउथ,
4: 103.5,
3: ईस्ट, वेस्ट,
4: 96.4,
3: सेंटर,
4: 99.4।
1: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: सुबह के 11 बजे हैं। जी सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा, नमस्कार।
5: नमस्कार। आदाब। रीयूनियन में 155 किलो गांजे की जब्ती के सिलसिले में रविंद्र शिमाजी और गुलशन गोविंद को शक्की नेटवर्क के अहम किरदारों की हैसियत से पहचाने गए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ताओं ने आजसू के साथ मिलकर जांच की। कल पश्चिम में और छापे मारे गए। लागोलेट में रविंद्र शिमाजी के यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी दो कश्तियों को जब्त किया गया। सांसद वेरोनिक लुगोविन के बेटे योविसेन गोविंद से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई, उसे वापस घर जाने की इजाज़त दी गई। अगर आप समुंदर जा रहे हैं या साहिली इलाकों में हैं तो ज़रा सावधानी बरतें, क्योंकि 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई हैं। इलाके में ज़ोरदार एंटी साइक्लोन की मौजूदगी से ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। बारिश होती रहेगी जो कभी कभार ज़ोरदार होगी। फौजा लावल की बरसी के मौके पर परंपरानुसार आज तीर्थ यात्रा की जाएगी। मुल्क के दिगर इलाकों से लोग पैदल जाकर सैयद क्वामी उनके मकबरे पर फूल चढ़ाकर विशेष प्रार्थनाओं में भाग लेंगे। आज रात 8 बजे खास मास सभा का आयोजन किया जाएगा। विदेश में इजिप्ट में टेलीविजन पेशकार सारा खलीफा को मौत की सजा दी गई है। एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल होने के जुर्म में काहिरा की अदालत ने ये सज़ा सुनाई। पेशकार खलीफा 39 साल की थी और मिशन इम्पॉसिबल नामी प्रोग्राम में जुर्म के खिलाफ आगाही पैदा करने में बहुत मशहूर थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। जायज़ दीजिए। नमस्कार और आदाब।
4: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, 11:01 60 मिनट हो गए हैं नमनी आ गई है साथ निभाने के लिए आपके ही मस्ती मॉर्निंग में. एंड यस, आपके लिए गानों के जरिए एंड ओसो टिप्स लाते रहेंगे आपके इस ट्यूसडे को अमेजिंग बनाने के लिए. आप बस साथ देते रहिए. एंड अगर आपके पास है कोई डेडिकेशंस मैसेजेस, डू नॉट हेजिटेट, 5499-1294 पर डू सेंड अस. इट्स योर RM2 रेडियो मस्ती. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Yes, Musty Morning का सिलसिला जारी है. आपको बता देते हैं कि आज शाम ब्लेस्ट पहलावाल के सैंखवा स्थित श्राइन पर जाने वाली सभी श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी सूचना है. पोर्ट लुइस में कैथेड्रल सेंट लुइस और त्याहूज में सेंट जोसेफ चर्च दो गैदरिंग पॉइंट्स है. यहाँ शाम 5:30 से स्पिरिचुअल प्रोग्राम शुरू होगा. पदयात्रा 6:30 कैथेड्रल सेंट लुई पोर्ट लुइस से और 6:45 पर सेंट जोसेफ चर्च त्याहूज से रवाना होगी. इन आज बारिश तेज हवा और ठंड की संभावना है, इसलिए गर्म कपड़े और लाइट या रिफ्लेक्टिव कपड़े जरूर पहने. मोटरिस्ट से भी अपील है कि पिलग्रिम्स के साथ खास सावधानी बरतें. श्राइन रात के 12:30 बंद होगा और सुबह 5:30 दोबारा खुलेगा. सभी पिलग्रिम्स को सेफ और मंगलमय पिलग्रिमेज की

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दोस्तों ट्यूजडे का दिन है और एक अमेजिंग लिटिल ट्रिक है अभी आपके लिए. एंड वो है कि अगर कोई भी काम अगर 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे बाद के लिए मत छोड़िएगा. कब किचन में रखना है अभी रखो यार. एक क्विक रिप्लाई देना है अभी कर दो यार. छोटी छोटी पेंडिंग जो काम ही बाद में बड़ा माउंटेन बन जाता है. तो जो भी सिंपल टास्क है ट्राई कीजिए उसे पूरा करने को. आप ही रियलाइज करोगे कि भाई ये तो इतना सा काम है. मैंने यही पर है टिप्स के साथ ना. सो नेक्स्ट आवर में आपके लिए गेम भी है. तो यही पर आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ यू स्टे कनेक्टेड. एंड नेक्स्ट गाना आपके नाम करते हैं.
0: वेलकम टू आर एम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: क्या बात है भाई, यहाँ पर यहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है ना कभी कभी। देखो बीच में मैं जंप मार लिया। हाय नीलमणि। देखो नीलमणि से मैंने बोला चलो आ जाओ इस तरफ आ जाओ, थोड़ी सी बातें शातें करते हैं, थोड़ी गप्पे शप्पे मारते हैं। और जब गप्पे शप्पे मारने के बीच में हमारे प्यारे प्यारे से दोस्त आ जाते हैं, वो मोमेंट को हम जो इतना सेलिब्रेट करते हैं ना MBC की तरफ से, आपको मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी मिलती है। हमारे यहाँ पर सारे हमारे दोस्त आ चुके हैं और कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, आज कैसी उनके साथ बातचीत होगी, थोड़ी सी आप भी सुन सकते हैं। तो इन्जॉय करते हैं आप सभी के साथ। हेलो
3: हेलो,
2: कैसे हैं आप सब?
3: सब खुशहाल मांगा है।
2: गुड मॉर्निंग आप सभी को।
3: धन्यवाद। हाँ मस्ती।
2: क्या बात है। तो आप यहाँ पर आए हैं, आप सभी का वेलकम है MBC में। पर हम आपसे कहेंगे कि थैंक यू, आप सबके आने से हमें कितनी खुशी मिलती है, आपको एहसास नहीं होगा। तो आज आप आए, आप बताइए कहाँ से आए हैं, कैसा है वो, कैसी जगह है?
3: बहुत सुंदर
4: जगह है, शांत है।
2: शांत जगह है, वाओ। उधर की क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद है?
4: स्विमिंग पूल।
2: स्विमिंग पूल, ओके। तो वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पंछी वंछी सुबह सुबह
3: मस्ती गगन में, आज मैं आजाद करी दुनिया के गगन में।
2: क्या बात है। हिलो हिलो हिलो हिलो, आगे क्या, अभी तो गाना पूरा करो
3: विषय भाई थोड़ा सा
2: क्या हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल अभी थोड़ी

0: के बाद आपके पुराने गाने हम चलाएंगे और हम तो यही कहते रहते हैं आप सबको कि आप आया करो यहाँ पे आके, हमारा दिल खुश होता है, आपसे आपका दिल खुश होता है, आपके परिवार को आप बता सकते हैं कि देखिए हम वहाँ पर गए थे और हमें बड़ा अच्छा लगा। तो आप अभी कितने बजे तक यहाँ पर रहने वाले हैं?
1: अभी जो वो गानी से हैं वो बोलेंगे वो मॉम।
0: ओके
1: हाँ, तब कब जाएंगे?
0: तो आपने अभी तक क्या क्या देख लिया यहाँ पर?
1: आप जहाँ MBC समाचार इन्फॉर्मेशन वीडियो वंस
2: बी।
0: अरे वाह, तो अब आप, आपको पता है ये वाला कौन सा है? ये है स्टूडियो एच, जो हम साथ साथ हैं वाला ना, ये है एच। तो यहाँ पर बहुत सारी प्यारी बातें होती हैं, रेडियो मस्ती होती है, यहाँ पर सिर्फ मस्ती वाले गाने चलते हैं, जिससे कि आपके जो मॉर्निंग होती है ना, जो थोड़ी थकी हुई होती है, उसको हम थोड़ा सा वाइब्रेट कर देते हैं और गुड मॉर्निंग कर देते हैं मस्ती के साथ में। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब यहाँ पर आए, इंजॉय कीजिए। ये गाना जो है ना सभी का बहुत फेवरेट है आजकल, ये मस्ती वाले। तो हम तो यही कहेंगे कि मस्ती के साथ साथ इंजॉय कीजिए, पूरी MBC की टीम आपके साथ है हमेशा, जो भी हमारे यहाँ पर विजिट करते रहते हैं हमेशा आते रहा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है और गाने हम आपकी पसंद के चलाते हैं। तो ये गाना जो है थोड़ी सी मस्ती वाला, यहाँ पर हम डांस करने वाले हैं, तो चलिए ये गाना आप सभी के नाम करते हैं।

0: subscribe to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Mystique.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Mystique.
0: Radio Mystique.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Mystique.
4: दिन की 12 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. एक बार फिर आपसे सुमेरा नमस्कार.
5: नमस्कार आदाब. रीनियन में 155 किलो गांजे की जब्ती के सिलसिले में रविंद्र शीमा जी और गुलशन गोविंद को शक्की नेटवर्क के अहम किरदारों की हैसियत से पहचाना गया है. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ताओं ने आजसू के साथ मिलकर जांच की कल पश्चिम में और छापे मारे गए. लागोलेट में रविंद्र शीमा जी के यहां ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी दो कश्तियों को जब्त किया गया. सांसद वेरोनिक ले गोविंद के बेटे योविसन गोविंद से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई. उसे वापस घर जाने की इजाजत दी गई. अगर आप समुद्र जा रहे हैं या साहिली इलाकों में हैं तो ज़रा सावधानी बरतें क्योंकि 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई हैं. इलाके में ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन की मौजूदगी से ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है. तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं. बारिश होती रहेगी जो कभी कभार ज़ोरदार होगी. फौजा लावाल की बरसी के मौके पर परंपरानुसार आज तीर्थ यात्रा की जाएगी. मुल्क के दीगर इलाकों से लोग पैदल जाकर सैंत क्वा में उनके मकबरे पर फूल चढ़ाकर विशेष प्रार्थनाएं करेंगे और उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे. आज रात 8 बजे खास मास सभा का आयोजन भी किया जाएगा. नेशनल टास्क फोर्स के सतह पर सभी तैयारियाँ की जा चुकी हैं. इजिप्ट में टेलीविजन पेशकार साला खरीफा को मौत की सज़ा दी गई है. एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल होने के जुर्म में काहिरा की अदालत ने यह सज़ा दी. पेशकार खलीफा 39 साल की थी और मिशन इम्पॉसिबल नामी प्रोग्राम में जुर्म के खिलाफ आगाही पैदा करने में बहुत मशहूर थी. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. फोबाक रोड फोंजिसाक में 60 साल की 60 years old श्रीमती निवेदा बीफोयान, श्रीमती निवेदा बीफोयान पैदाइशी नाम सिराज जो मैडम सुरेखा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी आज दो बजे इनके पति संजय बीफोयान के घर फोबाक रोड फोंजिसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामी न्यूज त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. मिशन क्रॉस रोड ग्रां बाफू ललमाती में 82 साल के 82 years old श्री रामावाद बंधु जो राजलाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज दो बजे इनकी पत्नी देविका बंधु के घर मिशन क्रॉस रोड गौबाफू लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. कोलोनेल मैगो स्ट्रीट बबासे में 68 साल के 68 years old श्री देवानंद हरकू जो आनंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज तीन बजे इनके घर कोलोनेल मैगो स्ट्रीट बबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलू व्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.
0: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Mystique.

0: रेट्रो रिदम।
1: अरे वाह, रेट्रो रिदम में हमने सक्सेसफुली कदम रख लिया है। इट्स नमन एक बार फिर जो इस बार वापस आ गई है रेट्रो वाइब्स के साथ। इन आपको बता देती हूँ कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टेलीफोन ट्यूसडे। सोचिए अगर बॉलीवुड के आइकॉनिक कैरेक्टर्स के पास आज का स्मार्टफोन होता तो कितने ड्रामास बच जाते। हेलो राज बोल रहा हूँ, या फिर मोगैम्बो को फोन क्यों नहीं किया। फ्रॉम लैंडलाइन से लेकर व्हाट्सएप कॉल्स तक टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन एक चीज सेम है। वैसे एक फोन कॉल कभी कभी पूरी लव स्टोरी शुरू करा सकती है। तो वापस उन्हीं खूबसूरत मेमोरीज में ले चलते हैं आपको रेट्रो रिदम में ऑन योर आरएमजे रेडियो मस्ती।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएमजे रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: वैसे आपका मुस्कुराना तो हमारी जीत है ना, आपकी वही मुस्कुराहट रेस्टोर करने के लिए गेम लेकर आए हैं. एंड आई नो कभी कभी लाइफ में सब वर्क फिर घर चल रहा है, तो रूटीन को तोड़ने के लिए मेरे पास कुछ है, एंड वो है ज़ावाटा का सर्कस शो, जो कि फुल है ऑफ मैजिक थ्रिल्स लव्स एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस से भरा रहता है. तो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बागातल में कहाँ पर सिचुएटेड है. लोकेशन आपको बतानी है ज़ावाटा शो का, जो कि बागातल में कहाँ है. 5499-1294 पर लेट अस नो योर आंसर्स.
0: Retro Rhythm
2: RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: इत्तेफाक से कुछ नहीं होता दोस्त, हर चीज एक रीजन की वजह से होता है ना। अगर आपके पास अभी वो रीजन नहीं है, नो वरीज, आप बस फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए। ऊपर से आज है एक्टर्स डे, तो बॉलीवुड के उन स्टार्स को सल्यूट जो हमें कभी कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं और कभी कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक्टर बनना सिर्फ कैमरा के सामने डायलॉग बोलना नहीं होता, इमोशंस को जीना, कैरेक्टर में घुसना और ऑडियंस को कहानी का हिस्सा बना देना होता है। सो यस टू एवरी एक्टर स्ट्रगलिंग हो या सुपरस्टार स्टेज

0: और स्क्रीन दोनों पर आपका मैजिक प्राइसलेस होता है एंड मैजिक से आपको याद करा देते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था कि जवाता का शो बागाचल में कहां पर है। 5499-1294 पर आपको बताना है और आप बन सकते हो विनर ऑफ द टू टिकट्स टू अटेंड द सर्कस शो। तो रूटीन तोड़ने के लिए कौन रेडी है, यो आंसर्स भेजिए 5499-1294 पर।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: ऐसे झूम के मैं फिर से आ गई वापस, इस बार विनर का नाम रिवील करने के लिए। एंड सवाल पूछा गया था कि सिया कज़ावता का शो बागातल में कहाँ पर है, एंड सही जवाब है बागातल के पार्किंग में। एंड विनर हमारे बन चुके हैं। एंड यस, आप है भावना राम प्रसाद जी जो कि लावांश के रहने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस टू यू। टिकट कलेक्ट करने के लिए आप आ सकते हो MBC विद इन वर्किंग आवर्स। एंड वो सर्वे के लिए जारी रखते हैं आपके रेट्रो रिदम के सफर को। नेक्स्ट गाना दर्पण को देखा मुकेश जी की आवाज में, खास आपके नाम।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2।

0: रेट्रो रिदम। रेट्रोरिज्म का सिलसिला जारी है। आज शाम ब्लेस्ड प्यालावाल के सैंखवा स्थित श्राइन पर जाने वाली सभी श्रद्धालुओं को एक जरूरी सूचना देनी है। पोर्ट लुइस में कैथेड्रल सैं लुई और टेर रूज में सैं जोसेफ चर्च दो गैदरिंग पॉइंट्स है। यहाँ शाम 5:30 बजे से स्पिरिचुअल प्रोग्राम शुरू होगा। पदयात्रा 6:30 बजे कैथेड्रल सैं लुई पोर्ट लुइस से और 6:45 सैं जोसेफ चर्च टेर रूज से रवाना होगी। आज बारिश, तेज हवा और ठंड की संभावना है, इसलिए गर्म कपड़े और लाइट या रिफ्लेक्टिव कपड़े जरूर पहने। मोटरिस्ट से भी अपील है कि पिलग्रिम्स के साथ खास सावधानी बरतें। श्राइन रात के 12:30 बजे बंद होगा और सुबह 5:30 बजे दोबारा खोलेगा। सभी पिलग्रिम्स को सेफ और मंगलमय पिलग्रिमेज की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मॉरिशस में डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या प्रतिदिन लगभग 5 लाख तक पहुंच गई है। ये उद्योग जो वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मॉरिशस इस क्षेत्र में एक तकनीकी हब के रूप में उभर सकता है। भुगतान समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी हाईटेक पेमेंट सिस्टम ने इस विषय पर 8 सितंबर को फ्लिकॉफ्लाक में एक कार्यशाला आयोजित की। 155 किलो गांजा बरामद किए जाने के मामले पर बात करते हैं, जो बहापानो रिनियन टापू में जब्त किया गया था। रविंद्र चिमाजी और गुलशन की पहचान इस कथित नेटवर्क के प्रमुख लोगों के रूप में की गई है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ताओं का यही मानना है, जिन्होंने आत्सू के साथ समानांतर रूप से जांच शुरू की है। कल पश्चिमी इलाके में कई जगहों पर तलाशी भी ली गई। ड्रग्स तस्करी से कथित रूप से जुड़े दो नावों को लागुलेट में स्कीपर रविंद्र चिमाजी के घर से जब्त किया गया। वहीं सांसद वेरोनिक ल्यू गोविंद के बेटे योविसन गोविंद से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने खास तौर पर उन पैसों के स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया, जिनका इस्तेमाल उनकी निजी कार खरीदने के लिए किया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई। और विदेश में सोमवार को एफएल टावर को बंद कर दिया गया, क्योंकि कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों और प्रबंधन के अनुसार ये हड़ताल एक हिंदू धार्मिक समूह के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को वहां से हटाए जाने के विरोध में की गई। बुचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था से जुड़े करीब 100 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को फ्रांस की राजधानी में स्थित इस प्रसिद्ध स्थल का दौरा किया था। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। फोबाक रोड फुंजिसाक में 60 साल की 60 years old श्रीमती निवेदा बिफोयन पैदाशी नाम सिराज और जिन्हें लोग मैडम सुरेखा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनकी पत्नी इनके पति संजय बिफोयान के मकान फोबाक रोड फुंजिसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्थियोले कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मिशन क्रॉस रोड घंबाफों लालमाटी में 82 साल के 82 years old श्री रामावद बंधु जिन्हें लोग राजलाल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी देविका बंधु के मकान मिशन क्रॉस रोड घाव बाफो लालमाटी से उठाकर गांधी रोड लालमाटी कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और कोलोनल मैगा स्ट्रीट बुबासे में और 60 साल के 68 years old श्री देवानंद अकू जिन्हें लोग आनंद नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे के मकान कोलोनल मैगा स्ट्रीट बुबासे से उठाकर कॉली व्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति।

अरे पर्दा हटाकर फिर से वापस आ गई है नलमनी, एक आओ बाकी है रचो रिदम के गानों से फिर से आपको रिलीव कराएंगे उन हसीन पलों को। दो बजे तक यही पर है ना, आपके मैसेजेस को हम मन नहीं भूले हैं, जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई गाना या मैसेज याद करना है झट से एडिट कर दीजिए 5499-1294 पर ही।

0: Retro Rhythm.
1: यस, रेट्रो रिदम का सिलसिला जारी है। आज हम पार्डन डे भी मना रहे हैं और बॉलीवुड में तो माफी के बिना स्टोरी आगे बढ़ती ही नहीं है। हीरो गलती करता है, हीरोइन नाराज होती है, विलेन माफी मांगता है और एंड में मुझे माफ कर दो के साथ हैप्पी एंडिंग। लेकिन रियल लाइफ में माफी मांगना कोई वीकनेस नहीं है, बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो अगर किसी अपने से दिल में कोई गिला है, आज एक सिंपल आई एम सॉरी या आई फॉरगिव यू कहने का दिन है। आफ्टर ऑल, हर रिश्ते में बॉलीवुड स्टाइल हैप्पी एंडिंग तो मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं हैप्पी एंडिंग बॉलीवुड मूवीज में, और जब नहीं होता

0: तो मूवी देखने का मन ही नहीं करता, कौन है सहमत इससे मैसेज के जरिए लेट अस नो। एंड अभी के लिए कुछ रूठना मनाना, प्यार की बातें हो जाए गानों के जरिए, ऑफ कोर्स जो कि हो रहा है आपके रेट्रो रिदम में आरएमजे रेडियो मस्ती पर ही।
1: रेट्रो रिदम
2: आरएमजे रेडियो मस्ती।

पटरोला मत करो, किली किली किच किच मत करो, हाथों में मेरे हाथ दो, तुम हमसे प्यार झटपट करो।

0: Retro Rhythm.
1: जी हाँ, रेट्रो रिदम में अभी मैसेजेस चेक करते हैं. लेट्स सी कौन कौन साथ दे रहे हैं आरएम जो वीडियो मस्ती का. अभी के लिए वी हैव दुफ्रिया से कविता जी, जो मोहन रेखांबिका प्रेमिला सबीना जी के लिए गाना मांग रहे हैं. प्रॉब्लम उससे वी हैव शबनीज कल्याणी तनुजा मुनिषा दुबोरी फैमिली जो साथ दे रहे हैं. एंड शातु बिनागस से ज्योति जी मांग रहे हैं गाना स्पेशली अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आशनी रेखा सुरेखा माधव फैमिली के लिए. एंड आज है प्रीतम दुखी जी का जन्मदिन. लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ टू यू. विशेज फ्रॉम योर ब्रदर मिथुन, भाभी अनुष्का, तीना, पापा आनंद, पत्नी वर्षा एंड रणदीर की तरफ से. हैप्पी बर्थडे टू यू प्रीतम जी एंड टू ऑल अदर्स जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू पूरी आरएम टू टीम की तरफ से.
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम टू रेडियो मस्ती.

0: तो दोस्तों आज हमने इतने सारे स्पेशल डेज सेलिब्रेट किए हैं, उनमें से एक आज है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। याद रखिए, नॉलेज जितनी शेयर करें उतनी ही बढ़ती है। और आज शाम को जो भी श्रद्धालु ब्लेस्ड पे अलावा की पद यात्रा के लिए निकल रहे हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। वेदर को देखते हुए वार्म और रिफ्लेक्टिव क्लोथ्स पहनिए और सेफ रहिए। मोटरिस्ट आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखिए और पिलग्रिम्स को सेफ पैसेज दीजिए। मैं मिलूंगी फिर, तब तक स्टे सेफ, स्टे वार्म, कीप लर्निंग और काइंडनेस को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। एंड आपके रेट्रो रिदम में आखिरी गाना हो जाए आपके नाम, स्टे सेफ, कीप लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मौसे समय मस्कुलर दिस ट्रॉफी से पीड़ित लोगों की देखभाल के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कल सोमवार 7 सितंबर को विश्व डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जागरूकता दिवस के अवसर पर सर शिव सागर राम गुलाम अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीजों के लिए एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया।

0: हालांकि संस्था की अब मांग है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए एक अधिक उपयुक्त उपकरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मॉरिशस में डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या प्रतिदिन लगभग 5 लाख तक पहुंच गई है। ये उद्योग जो वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मॉरिशस इस क्षेत्र में एक तकनीकी हब के रूप में उभर सकता है। भुगतान समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी हाईटेक पेमेंट सिस्टम ने इस विषय पर 8 सितंबर को फ्लिकॉफ्लाक में कार्यशाला का आयोजन किया। 155 किलो गांजा बरामद किए जाने के मामले पर बात करते हैं जो भापानो रिनियन टापू में जब्त किया गया था। रविंद्र चिमाजी और गुलशन की पहचान इस कथित नेटवर्क के प्रमुख लोगों के रूप में की गई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांचकर्ताओं का यही मानना है। कल पश्चिमी इलाके में कई जगहों पर तलाशी भी ली गई। ड्रग्स तस्करी से कथित रूप से जुड़े दो नावों को लागुलेट में स्कीपर रविंद्र चिमाजी के घर से जब्त किया गया। विदेश में अमेरिकी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर कनाडा द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क मंगलवार से प्रभावी हो गए हैं। हालांकि फिलहाल किसी व्यापार समझौते की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इन जवाबी शुल्कों का असर करीब 28 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर पड़ेगा। इनमें स्टील से लेकर फर्नीचर और सूती टी शर्ट तक शामिल हैं। इन उत्पादों पर शुल्क 50% तक लगाया जाएगा। ताज़ी मछली और लॉबस्टर भी इस सूची में शामिल थे, लेकिन कनाडा के समुद्री खाद्य उद्योग के विरोध के बाद इन्हें सूची से हटा दिया गया है। और अमेरिका और कनाडा दोनों के अधिकारियों ने कहा कि वे एक समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अगस्त के अंत में बातचीत टूटने के बाद उसे दोबारा शुरू करने की दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। कोलिनल मेगा स्ट्रीट बोबासे में 68 साल के 68 years old श्री देवानंद अकू, जिन्हें लोग आनंद नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थियात सुपहर के 3 बजे इनके मकान कोलिनल मेगा स्ट्रीट बोबासे से उठाकर कॉलेव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM रिवालो रोड क्रेवक्यू में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बुलडाओ जिन्हें लोग कलावती नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल शाम साढ़े तीन बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान अहिवालों रोड खैवक्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैवक्या की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies, Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: चलिए दोस्तों, इस वक्त आपका हम स्वागत कर रहे हैं 2:09 एंड यस इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, जहां पर मंडे टू फ्राइडे 2 से लेकर 4 बजे तक बी टाउन की खबरें आप तक हम पहुंचाने आते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आई डू होप दैट मंडे के बाद आज का ट्यूसडे भी आपका एकदम मस्त बीत रहा है। वैसे मौसम नॉट दैट मस्त और मौसम खराब होने की आशंका भी है, सो ऐसे में आप अपना ख्याल जरूर रखें। वार्म क्लोथ्स एंड ऑफ कोर्स जैसे हम हमेशा कहते हैं दैट खुद का ख्याल सबसे पहले रखें। वार्म क्लोथ्स हो या फिर एक स्कार्फ, गर्म पानी, ये सब साथ में रखें, बिकॉज आजकल सिचुएशन ही ऐसी है कि हर कोई बीमार पड़ रहा है। सो अपना ख्याल रखें और हम हैं यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो चलिए, अभी के लिए मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम तो आपके म्यूजिकल हमसफर बने रहेंगे ऑन RM2 रेडियो मस्ती। लेटेस्ट ट्रैक्स एंड बी डाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, सो साथ दीजिए टिल 4 PM। मैं हूं परी आपके साथ। योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर।
0: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर

0: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक कम्युनिकेट आप तक पहुँचा दिया। आज शाम ब्लेस्ड पहलावाल केसेंकुआ स्थित श्राइन पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी सूचना। पोर्ट लुइस में कैथीड्रल सेंट लुई और टेहूज में सेंट जोसेफ चर्च दो गैदरिंग पॉइंट्स हैं। दोनों जगहों पर शाम 5:30 बजे से स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होंगे। पदयात्रा शाम 6:30 बजे कैथीड्रल सेंट लुई पोर्ट लुइस और शाम 6:45 पर सेंट जोसेफ चर्च टेहूज से शुरू होगी। आज शाम बारिश और तेज हवा और ठंड की संभावना है। श्रद्धालुओं से गुजारिश है कि गर्म कपड़े और लाइट या रिफ्लेक्टिव कपड़े पहनकर निकले। मोटरिस्ट से भी अपील की जाती है कि पैदल जा रहे पिलग्रिम्स के साथ खास सावधानी बरतें। पहलावाल का श्राइन रात 12:30 बजे बंद होगा और कल सुबह 5:30 बजे दोबारा खुलेगा। सभी पिलग्रिम्स को सेफ और मंगलमय पिलग्रिमेज की शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए आप कनेक्टेड हैं आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। और अगर आप भी अपने मैसेजेस डेडिकेशंस पहुंचाना चाहते हैं, इट्स 5499-1294।
1: आरएम टू रेडियो मस्ती।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: और चलिए दोस्तों, इट्स 2:25, अभी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के फैंस उनकी फिल्म इठा का इंतजार कर रहे हैं, मगर एक्ट्रेस अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर इन दिनों अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर अपनी हॉलीडेज की कुछ फोटोज शेयर की। श्रद्धा कपूर इन दिनों राहुल मोदी के साथ हॉलीडेज एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई फोटोज शेयर किए और इसके साथ ही उन्होंने फोटोज के साथ कैप्शन लिखा, छोटी सी छुट्टी तो बनती है ना। और खास बात यह है कि इन फोटोज में उनके साथ उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी भी नजर आ रहे हैं। श्रद्धा अपने ट्रिप की फोटोज में काफी खुश नजर आ रही हैं और कई जगह उन्होंने खाने का लुत्फ उठाते हुए देखा जा रहा है, कई जगह उन्हें खाने का मजा उठाते हुए देखा जा रहा है। और इसके साथ ही एक फोटो में राहुल मोदी एक किताब में मग्न नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर उनकी कुछ क्यूट तस्वीरें शेयर की और साथ ही श्रद्धा और राहुल की डेटिंग की खबरें 2024 में शुरू हुई थी। पहली बार दोनों को एक साथ मुंबई में डिनर डेट पर देखा गया था, जिसके बाद उनके रूमर्ड कपल होने की बात सामने आई थी और इसके बाद श्रद्धा और राहुल ने कई इवेंट्स पर साथ शिरकत की। हालांकि दोनों की तरफ से रिश्ते पर अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है या फिर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन दोनों साथ साथ नजर तो आते हैं और कहते हैं ना कि भाई प्यार किया तो डरना क्या, तो बस ऐसा ही कुछ है श्रद्धा कपूर के साथ। अभी के लिए तो एंजॉय कर रही है।

0: है वो अपना टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंड वेल बी टाउन की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं. सो आई डू होप दैट यू आल्सो एंजॉयिंग योर आफ्टरनून टाइम रेडियो मस्ती के साथ. सो दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ. अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस रहेगा इंतजार 5499124 पर.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: And well, after आखिरी इश्क we have this गाना the Bandhu song आप सभी के लिए. Yes, Bandhu 2.0 हमारे सभी listeners जो साथ दे रहे हैं. Cocktail 2 से लिया हुआ ये गाना हमारे सभी दोस्तों के नाम. आप ही तो बंधु, आप ही तो सखा, आप ही तो हमारी सब कुछ. हमारे listeners हैं तभी तो हमारा radio आज इस ऊंचाई पर है. So thank you for the love and thank you for always supporting Radio Masti. अभी के लिए जितने भी listeners हमारा साथ दे रहे हैं, चलिए afternoon time है और बी टाउन की खबरों के साथ यहाँ पर शामिल हो रहे हैं कुछ latest tracks. अपना ख्याल रखिए, साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों. And messages, dedications on 5499-1294.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Crikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: तो जी हाँ दोस्तों, फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज़। और आप हमें हमेशा अपने मैसेजेस डेडिकेशंस के जरिए अपने दिल का हाल बता सकते हैं। वैसे तो हम जानते हैं इट्स वर्किंग टाइम, और 2 से लेकर 4 बजे तक एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ड्रेन आउट हो जाती है। मॉर्निंग से आप काम कर रहे होते हैं एंड आफ्टर लंच वी ऑल नो दैट मन करता है कि एक थोड़ा सा स्वीट सा नैप मिल जाए या थोड़ा सा टाइम मिल जाए जहाँ पर हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, बिकॉज आफ्टर लंच होता है कि लोग थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं। तभी इसी टाइम पर हम हमारा ये शो लेकर आते हैं जहां पर गर्मा गर्म चाय कॉफी की चुस्कियों के साथ जो भी आपकी एनर्जी डाउन हुई है उसे हम एक बार फिर बूस्ट अप कर देते हैं। और आपका साथ आपका प्यार हमारे लिए ऑलवेज स्पेशल, ये तो हम हमेशा कहते हैं। सो ऑल द वे फ्रॉम लालमाटी आए हैं दावसेन अपनी गुड विशेस के साथ। सो हैव अ वंडरफुल ट्यूजडे दावसेन। अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम। और विजया जी, अभी तो मैं बात कर रही थी, ओपनिंग में ही हमने बात की कि आजकल बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं बिकॉज मौसम ही कुछ ऐसा है। सो डू टेक केयर और अपना ख्याल रखें आप, एंड गेट वेल सून विशेज आपके लिए। हैव सम गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी या फिर जिंजर वाली जो चाय होती है वो असर करती है ज़रूर। सो सिप करते हुए आप अपने चाय या फिर इन्फ्यूजन को एंजॉय करें, एंड वील प्ले सम फील गुड सॉन्ग्स ताकि आप भी थोड़ा सा अच्छा फील करें। सो वेल, अभी के लिए तो हम आप तक पहुँचा रहे हैं प्यार एंड शुभकामनाएं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए। एंड हमारे जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, यू नो दैट आपका इंतजार होता है ऑन 5499-1294। अभी के लिए तैयब जी हमारा साथ दे रहे हैं आप, तो प्यार भरा सलाम आपके नाम भी। अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम, एंड मिस्टर विशाल हमारा साथ दे रहे हैं। अगला गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं फॉर योर लवली वाइफ मालू एंड फॉर स्वीट फ्रेंड्स सुरेखा है वन एंड आरती, सभी को आपने याद किया है ऑन दिस ब्यूटिफुल ट्यूजडे आफ्टरनून। सो वेल, अगला गाना आप सभी के नाम। ज्योति जी आई हैं शातो बनारस से अपने प्यार के साथ फॉर आशनी रेखा सुरेखा और सभी मदब परिवार जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए हैव अ गुडी गुड टाइम, और आपके लिए यहाँ पर गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. पूजा से आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी सभी को. मेरा नमस्कार. मॉरिशस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लोगों की देखभाल के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम. कल 7 सितंबर को विश्व जुशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जागरूकता दिवस के अवसर पर SSIN अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया. ये पहल कई वर्षों से चल रहे प्रयासों और प्रतिबद्धता का परिणाम है, जिसका उद्देश्य मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में सुधार लाना है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत किया. संस्था की अब मांग है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए और अधिक उपयुक्त उपकरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए. मॉरिशस में डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच गई है. ये उद्योग जो वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

0: क्विमेट सिस्टम ने इस विषय पर 8 सितंबर को फ्लिकॉफ्लाक में एक कार्यशाला का आयोजन किया। विदेश में अमरीकी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर कनाडा द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क मंगलवार से प्रभावी हो गए हैं। फिलहाल किसी व्यापार समझौते की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उधर कल सोमवार को एफएल टावर को बंद कर दिया गया क्योंकि कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों और प्रबंधन के अनुसार ये हड़ताल एक हिंदू धार्मिक समूह के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को वहां से हटाए जाने के विरोध में की गई है। तो ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉय रोड लाफ्लोरा में 93 साल के 93 years old श्री रूप नारायण मौघा, श्री रूप नारायण मंगरा, जिन्हें लोग ललन नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉय रोड लाफ्लोरा से उठाकर घोंबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। और रिवालो रोड क्रेवक्यूर में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बल्दुआ, ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए। रिवालो रोड क्रेवक्यूर में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बल्दाओ, जिन्हें लोग कलावती नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल शाम 3:30 बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान रिवालो रोड खैवकुया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैवकुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 3:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. More music in the mix. Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.

0: Mikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों 3:08 और आपका हम वार्म वेलकम कर रहे हैं. वैसे आप हमारा साथ देते हैं हमेशा ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती. एंड वेल दैट्स द सेकंड आवर ऑफ बॉम्बे टॉकीज जहां पर बी टाउन की लेटेस्ट खबरें और साथ ही साथ लेटेस्ट ट्रैक्स हम आपको सुनाते हैं. फॉर नाउ इट्स टाइम टू प्ले अ गेम दोस्तों आपके साथ. और आपको बता दें दैट अगर आप बनते हैं लकी विनर तो यू स्टैंड अ चांस टू विन. जी हाँ, आप जीत सकते हैं 2 entry tickets द ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्चेस ब्यूटी विद द नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026. ये होने वाला है सैटरडे 12th of September एज फ्रॉम 7:30 PM एट ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर. और अगर इस शो का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं, इन टिकट्स को आप पाना चाहते हैं, सो वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक बॉलीवुड की फिल्म जो हुई वेरी पॉपुलर और हम अभी अभी की बात कर रहे हैं, सो एक डायलॉग था कि घायल हो इसीलिए घातक हूँ. ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? वेरी फेमस डायलॉग, वेरी फेमस फिल्म. सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस फिल्म ने और डायलॉग कुछ ऐसा है कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ. और ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? आपके सही जवाब 5499-1294 पर, 5499-1294 पर, आपके पूरे नाम और पते के साथ. सो वेटिंग फॉर राइट आंसर्स. ऑल द वेरी बेस्ट परी का साथ. एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन रेडियो मस्ती.
1: RM2 Radio Musty. Well, what?

0: Mustis.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: और चलिए यहाँ पर पूछा था आपसे सवाल और वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था. एक बहुत ही फेमस फिल्म का डायलॉग है, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, और आपको हमें इस फिल्म का नाम बताना था. एंड द राइट आंसर इज धुरंधर. दैट्स द राइट आंसर. और चलिए यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. एंड लकी ड्रॉ के बाद पूजा बागा आप है नुअल फ्रांस से बनती है हमारी लकी विनर. कंग्रेचुलेशंस. तो चलिए पूजा, आपने हमें दिया है बिल्कुल सही जवाब और आपने जीती है 2 एंट्री टिकट्स टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्टिस ब्यूटी विद नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2026. मार्क योर कैलेंडर सैटरडे 12 सितंबर शाम 7:30 PM एट ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर. एंड वेल यहाँ पर इस स्पेक्टेकुलर नाइट का हिस्सा आप भी बन सकती है. एंड यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ग्रैंड फिनाले जो होने वाला है एट्रियानो कन्वेंशन सेंटर ऑन 12 सितंबर शाम के 7:30 PM. सो वेल आपको आना होगा MBC. आप यहाँ पर आ सकते हैं सुबह 9 से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक. वीक डेज मंडे टू फ्राइडे आप यहाँ पर आएं और इस इनाम को लेकर जाएं. एंड डो ब्रिंग योर आईडी अलॉन्ग. अगर आप नहीं आ सकती है अपने आईडी के साथ आप किसी को भी यहाँ पर भेज सकती है एंड दे कैन कलेक्ट योर इनाम. सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. Well friends, Radio Masti hai, RM to Radio Masti hai. So jeetne ke mauke aur bhi milenge. Stay well connected.

जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे साथ गानों को सुनते रहते हैं एंड दैट्स योर रेडियो मस्ती. 3:22 फॉर नाउ वी हैव अरिजीत सिंह की आवाज में ये ब्यूटीफुल सा गाना. मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मूड को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं. दिस वन गोज आउट आप सभी के नाम. साथ देने के लिए शुक्रिया. दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर 3:33 हो रहे हैं। जुलाई में एक्टर राजेश शर्मा को कथित तौर पर एक इंसेक्ट के काटने के चलते कोलकाता के अस्पताल में भर्ती करा गया था। जब उन्हें इस इंसेक्ट ने काटा था, तब वो हैदराबाद में प्रभास की फिल्म फौजी की शूटिंग कर रहे थे और इस मामले को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। लेकिन अब एक्टर ने इस पूरे मामले पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, राजेश शर्मा, जिन्हें हम बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म में कैरेक्टर रोल निभाते हुए देखते हैं और अक्षय कुमार की ऑलमोस्ट हर फिल्म में वो नजर आते हैं, सो राजेश शर्मा, यस, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में राजेश ने तब अपनी सेहत को लेकर अपडेट दिया जब उन्हें बताया गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और वो इंसेक्ट के काटने की वजह से भर्ती हुए थे। उन्होंने इन खबरों को गलत बताया और जिनमें दावा किया जा रहा था कि एक कीड़े के काटने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजेश ने बताया कि असल में उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी दाहिनी टांग में काफ़ी समय से स्किन से जुड़ी कुछ समस्या थी। उनकी हालत तब और ज़्यादा बिगड़ गई जब उन्हें डायबिटीज़ का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन उसके बाद उनकी जो हालत है काफ़ी गंभीर हो गई। राजेश ने बताया कि अब उनका इलाज पूरा हो चुका है और वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि करीब एक हफ्ते बाद वो दोबारा काम पर लौट पाएंगे। सो वेल, आपको बता दिए दैट राजेश अपनी आने वाली फिल्म हैवान की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म में सैफ अली खान, अक्षय कुमार, सयाम खैर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं ये जो फिल्म है 11 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। सो वेल, दैट्स राजेश शर्मा, जो अभी के लिए तो ठीक हो रहे हैं, ही इज रिकवरिंग एंड बहुत ही जल्द शूटिंग रिज्यूम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आप साथ दे रहे हैं तो 3:35 हो गए हैं। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन रेडियो मस्ती। We'll be right back.

0: Mustis.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: एंड वेल अभी के लिए हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर जहां पर लेकर आएंगे आपके लिए रफ्तार वाइब्स और फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर योर मैसेजेस डेडिकेशंस वेल गानों को एंजॉय कर रही हैं और अभी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रोशनी थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर वेल गाना होगा आपके नाम और साथ देते रहिए बस आपको एंटरटेन करते रहेंगे विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ललिता जीतन साथ दे रही हैं आप भी एंजॉयिंग द माइंड ब्लोइंग सिलेक्शन थैंक यू जी और सरोज वीना कुमारी गीता ज्ञानती संजय विजय और सभी जीतन परिवार के नाम डेडिकेट कर रही हैं अगला गाना मिस्टर भी हमारा साथ दे रहे हैं आप भी सो वार्म वेलकम आपका ऑन RM2 रेडियो मस्ती एंड वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए और आप भी साथ दे रहे हैं सो नॉट टू फॉरगेट मैसेजेस डेडिकेशंस 54991294 पर चलिए इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर उसके बाद लेकर आएंगे रफ्तार वाइब्स जहां पर खास सेगमेंट्स एंड लोड्स ऑफ गेम्स कर रहे हैं आपका इंतजार कहीं मत जाइए स्टे कनेक्टेड यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, exactly 4 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा। आपको नमस्कार।
5: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकीलों के पेशे में गहरा बदलाव लाने जा रही है। ऐसे में इस बदलाव के बीच भविष्य के कानून विधों को खुद को किस तरह तैयार करना चाहिए। मॉरिशस विश्वविद्यालय में कानून के छात्रों को भारतीय कानूनी जगत के एक प्रमुख हस्ती के साथ विचार विमर्श करने का अवसर मिला है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने छात्रों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें तेजी से बदलते कानूनी पेशे को लेकर अपनी सोच और दृष्टिकोण से अवगत कराया है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विश्व हिंदी सचिवालय ने फिनिक्स के अपने परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का विषय था रंगमंच, भारतीय और आधुनिक परिप्रेक्ष्य। इस दौरान हिंदी भाषा, रंगमंच और तेजी से बदलते डिजिटल परिवेश के बीच संबंधों पर बात की गई। स्थानीय कलाकारों ने रंगमंच की दुनिया में हो रहे बदलावों, इसके सामने उभर रही नई संभावनाओं और नई पीढ़ी तक हिंदी भाषा को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के महत्व पर अपने विचार साझा किए। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के

अधिकारी को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। उन पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने का संदेह है। आज सुबह रेजुई ट्रायंगल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदारी ने कहा है कि भ्रष्टाचार रोधी संस्था किसी भी तरह की गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि एफसीसी के कुछ जांचकर्ताओं को डराने, धमकाने और धमकियों का सामना

0: कर्मचारी और प्रबंधन के अनुसार ये हड़ताल एक हिंदू धार्मिक समूह के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को वहां से हटाए जाने के विरोध में की गई। तो ये थी अब तक की खबरें कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोड लाफ्लोरा में 93 साल के 93 years old श्री रूप नारायण मंगरा, जिन्हें लोग ललन नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2.

और चलिए दोस्तों, ट्यूसडे आफ्टरनून और हम तो आ गए हैं आपसे मिलने। वैसे तो मुलाकात होती ही रहती है, लेकिन आज 2 बजे से हम तो आपका साथ निभा रहे हैं। आफ्टर बॉम्बे टॉकीज, इट्स टाइम फॉर योर रफ्तार वाइब्स। वैसे आज रफ्तार जो है वो थोड़ी सी धीमी ही रखिए, बिकॉज जैसे हम जानते हैं मौसम इज नॉट दैट ग्रेट। सो ऐसे में आप सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, अभी भी काम में अटके हुए

हैं फाइलों के बीच कहीं पर आप भी मौका ढूंढ रहे हैं कि कब काम खत्म हो और कब आप घर की ओर बढ़े. सो नॉट टू फॉरगेट हम हैं आपके साथ ऑन आरएफजे रेडियो मस्ती. मैं हूं परी और वेल इट्स टाइम कि हम कुछ खास जो सेगमेंट्स हैं, खास जो गेम्स हैं वो आप तक पहुंचाएं. चार से लेकर पांच बजे तक का ये समय हम बनाने वाले हैं वेरी स्पेशल आपके लिए और शुरुआत में ही लेकर आए हैं एक गेम जहां पर आप जीत सकते हैं टू टिकट्स टू सर्कस ज़वाटा. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेज. और ये होने वाला है पूरे परिवार के लिए, फॉर द होल फैमिली. सो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे आपको, अगर आप देते हैं सही जवाब आप बन सकते हैं हमारे लकी लकी विनर. So, यहाँ पर सवाल है that at what time does the first weekend performance begin? Is it 1:30 PM, 2:30 PM या फिर 3:30 PM? Well, काफी समय से हम ये सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं. सर्कस ज़वाटा की बात हो रही है और सवाल है that weekend का जो first performance होता है वो कितने बजे शुरू होता है? At what time does it begin? 1:30 PM, 2:30 PM या फिर 3:30 PM? Send me your right answers 54991294 पर, 54991294 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ. All the best. RM2 Radio Musti.

So that was तेरे लिए. चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपसे पूछा था सिंपल सा सवाल और बात हो रही थी सर्किस जवाटा की. At what time does the first weekend performance begin? Is it 1:30 PM, 2:30 PM या फिर 3:30 PM? Right answer 2:30 PM. दोपहर 2:30 बजे से weekend performance शुरू होते हैं. So well, यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. लकी ड्रॉ के बाद अरविंद रामहित आप है ओकुले से बन गए हैं हमारे लकी विनर. सो कहेंगे कंग्रेचुलेशंस. So well, अरविंद जी दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब. Congratulations, you just won two tickets to Circus Zavata. Get ready for an unforgettable experience filled with the magic, thrills, laughter and spectacular circus performances. होगा ये पूरे परिवार के लिए. Catch Circus Zavata at Bagatelle with the shows every Thursday and Friday at 6:30 PM, Saturday and Sunday 2:30 PM and 5:30 PM. ज़्यादा bookings information के लिए you can call on 5250 9413 5250 9413.

0: 5250-9413.
1: मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

और चलिए दोस्तों, जैसे हमने कहा कि आपके लिए हम लेकर आए हैं काफी सारे गेम्स, काफी सारे स्पेशल सेगमेंट्स 4 से लेकर 5 बजे तक। दैट्स योर रश आवर, यानी कि जहां पर आपका काम खत्म होता है, आप भाग दौड़ में होते हैं कि कब हम घर पहुंचे, उसी टाइम लेकर आते हैं योर रफ्तार वाइब्स, जहां पर आपकी रफ्तार को हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं हमारे गीतों के साथ। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि डू नॉट रश, आराम से ड्राइव करें, डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे। और रास्ते में आपके लिए हम चला रहे हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, जिन्हें सुनते हुए यू कैन एंजॉय योर राइड बैक होम। साथ ही लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स, जहां पर आप जीत पा रहे हैं शानदार इनाम। इफ यू आर ड्राइविंग, प्लीज आप गाड़ी साइड में रोके और उसके बाद हमें सही जवाब दे, या फिर आपके बाजू में अगर कोई बैठा है तो आप उन्हें बोल सकते हैं अपने सही जवाब हम तक पहुंचाने के लिए। सो फॉर नाउ, एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे, और सवाल इट्स वेरी सिंपल। पहले आपको बता दें आप क्या जीत पाएंगे। यू कैन विन 2 entry tickets टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्टिस ब्यूटी विद नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026। और अगर आप इस स्पेक्टेकुलर नाइट को एंजॉय करना चाहते हैं, सिंपल सा सवाल आपके लिए, हु प्लेड रॉकी रंधावा इन द मूवी रॉकी रानी की प्रेम कहानी। देखिए कितना सिंपल सा सवाल पूछा है हमने, हु प्लेड रॉकी रंधावा इन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सेंड मी योर राइट आंसर्स 54991294 पर, 54991294 पर, आपके पूरे नाम और पते के साथ। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, अगर पहली जीत हो चुकी है, प्लीज दूसरों को मौका दे। अगर अभी तक आपने इनाम नहीं जीता है, सो ट्राई योर लक। सवाल है वेरी सिंपल, रॉकी रंधावा ये कैरेक्टर, ये किरदार किसने निभाया था इन द फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 54991294, 54991294, आपके पूरे नाम और पते के साथ। ऑल द बेस्ट।

So question time. Yes, पूछा था simple सा सवाल. Who played Rocky Randhawa in Rocky और रानी की प्रेम कहानी? The right answer is Ranveer Singh. Yes, that's the right answer. और यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. Lucky draw के बाद सारे का चकोरी अब है क्यों पिप से बनती है lucky winner. Congratulations. So well, Sarika, आपने हमें दिया है बिल्कुल सही जवाब. Congratulations, जीती है आपने 2 entry tickets to the grand finale of Fortis Beauty with a Noble Purpose Miss India Worldwide Mauritius 2026. Mark your calendar, होने वाला है Saturday 12th of September 2026 at 7:30 PM at Triano Convention Center. और चलिए इस स्पेक्टेकुलर नाइट को आप एंजॉय कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले आना होगा एमबीसी मंडे टू फ्राइडे. आप यहां पर आ सकती हैं अपने आईडी के साथ और अपने इस नाम को लेकर जाएं एंड एंजॉय द स्पेक्टेकुलर नाइट. अगर आप नहीं आ सकती हैं, किसी और को भेज दीजिए अपने आईडी के साथ. कंग्रेचुलेशंस एंड वेल, जितने भी लिसनर्स साथ दे रहे हैं, जीतने के मौके तो और भी मिलने वाले हैं. थोड़ी ही देर में स्पोर्ट्स की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे. दैट्स योर रफ्तार वाइब्स. मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. So good songs आपके लिए. इस वक्त आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आराम से ड्राइव करें, काम पर फंसे हुए हैं, नॉट टू वरी, हम हैं ना आपके म्यूजिकल हम सफर. तो चलिए दोस्तों, टू गेट यू इन द मूड, वी हैव दिस वन, जुबिन एंड पामेला जैन.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: So exactly 4:40 देश विदेश के खबरों के साथ यहां पर स्पोर्ट्स जगत की लेटेस्ट अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते हैं. So स्टूडियो में आ गए हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद.

0: स्पोर्ट्स वर्ल्ड की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हेलो एंड गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. सो आज चैंपियंस लीग शुरू, चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के मैच, और इसमें का आज ये मैच शुरू होने से पहले वी हैव द बालों दो नोमिनीज. बालों दो नोमिनीज में लेट्स चेक आउट बोनू गोलकीपर. ओके ओके ओके बोनू. फिर कुतुआ भी हैं, गार्सिया, कुबेला, मार्टिनेज, मेंदी, राया, सफानोव, साइमन, वाजीना, ये लड़कों में हैं. फिर बाकी मैं अभी आपको बताएंगे.

ओके सो फिक्स्चर्स बता दें आज क्लब क्लब ब्रूज एस्टन विला एके एथेंस फिर एलएसके पोर्टो मैनचेस्टर सिटी डॉर्टमुंड विलारियल लिल बेटिस

और आज ही रियल मैड्रिड का मुकाबला इंटर मिलान से होने वाला है। अभी अभी खबर है कि दो मैच चैंपियंस लीग के मैच दिखाए जाएंगे आपको। एक तो जो मैच होगा कंफर्म करते हैं, दिस वन विल बी चेल्सी वाला मैच। जी हाँ, चेल्सी वाला मैच लाइव होगा। फिर कल बार्सिलोना फेयेनोर्ड, स्टुटगार्ट वाइकिंग, लिवरपूल एथलेटिको मैड्रिड, नापोली आर्सेनल, पेरिस सेंट जर्मेन वाला भी लाइव होगा, स्लोवान स्पोर्टिंग गलातासराय, और थर्सडे को फेनेरबाचे एएस रोमा, पीएसवी आइंडहोवन, शाख्तार दोनेत्स्क, बायर्न म्यूनिख, बोडो ग्लिम्ट, कोमो, लाइप्ज़िग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबा, स्लाविया प्राग, लांस, ये भी मैच लाइव। सो आज, कल और परसों सभी मैच दिखाए जाएंगे, इन पर आपको भी जानकारियां देंगे।

0: सिट वेटिंग फॉर द ड्रॉ टू गेट ओवर, जो ड्रॉ अभी निकाले जा रहे हैं और इसमें खासतौर पर यमाल को देखना है, यमाल क्योंकि उससे बेस्ट यंग टैलेंट में नॉमिनेट किया गया है और उधर वो नॉमिनेट होगा या नहीं, दिस इज टू बी सीन। बायर्न म्यूनिक से हैरी केन फेवरेट है, लेकिन बताया जा रहा है कि क्योंकि वर्ल्ड कप में स्पेन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, इसीलिए हो सकता है कि स्पेन का कोई खिलाड़ी शायद रोड्री ये अवार्ड ले जाए, लेकिन अभी थोड़ी देर में पूरे नॉमिनीज के नाम आपको देंगे। फिर टेनिस की बात कर लें, सबालेंका का मुकाबला नोस्कोवा से होगा आज, कोकोगोफ की जीत हुई योविच के खिलाफ। चाफोई मिकेलसन वेरेव दादेरी ये आज के मैच हैं, और कल सुबह जो मैच खेले गए थे यानी आज सुबह और कल भी जो मैच खेले जाएंगे, पेगुला नवारो शेल्टन अल्काराज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा फॉर द क्वार्टर फाइनल। फिर जेंग रिबाकिना जेंग, जिसने अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो सकती हैं, लेकिन रिबाकिना अगर ये क्वार्टर फाइनल मैच जीतती हैं तो वो वर्ल्ड नंबर वन बन जाएगी। एंड्रीवा गोव के बीच भी मैच होगा, ये क्वार्टर फाइनल मैच हैं। सो कीप अपडेटेड, अभी आपको और डिटेल्स देंगे रिगार्डिंग द नॉमिनीज फॉर द चैंपियंस लीग।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द अपडेट्स।
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein de produits, morbe à partir de 25 roupies, granit à partir de 10 000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Bouli Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.

0: And well, it's 4:45. Time to play एक और गेम आपके साथ. Yes, get ready, Mauritius. The grand finale of Island Cricket Extravaganza Season 4 is here. Organized by Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo. Co-sponsored by MYOP and food partner for finals, Jen's Little India. So, चलिए यहाँ पर सिंपल सा सवाल पूछेंगे आपसे और यहाँ पर आप जीत सकते हैं 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर, 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर courtesy of Indian स्वाद रेस्टोरेंट, जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ इंडिया. तो चलिए, कब से हम बता रहे हैं आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा के बारे में और आपको हमें बताना है कि ये जो फिनाले है वो कहां पर होने वाला है इन मॉरिशस, कौन सी जगह पर होने वाला है ये ग्रैंड फिनाले. आपके सही जवाब 5499-1294 पर, 5499-1294 पर यू कैन सेंड मी योर राइट आंसर्स. सिंपल सा सवाल है, यस, ग्रैंड फिनाले ऑफ आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा सीजन 4 ये कहां पर होने वाला है, आपको हमें उस जगह का नाम बताना है. आपके सही जवाब ऑन 5499-1294, आपके पूरे नाम और पूरे पते के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2. RM2, Radio Mastin.

चलिए यहाँ पर हमने आपसे पूछा था सवाल दैट ये जो आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रा वेगांजा का फिनाले है वो कहाँ पर होने वाला है, एंड द राइट आंसर इज एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पर होने वाला है ये ग्रैंड फिनाले। और चलिए यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब, एंड लकी ड्रॉ के बाद कौन बनती है हमारी लकी विनर, हु इज द लकी विनर? आप है यासना सुरनामा और आप है बेले से, आप बनती है लकी विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो वेल याशना, आपने हमें दिया है बिल्कुल सही जवाब। सो वेल गेट रेडी, मॉरिशस ग्रैंड फिनाले ऑफ आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा सीजन 4 इज हियर, और देख के आपको डिटेल्स थोड़ी ही देर में। अभी के लिए हमारी विनर आपको बता दिया, आपने खेला RM2 के साथ और आपने जीता है ₹500 का गिफ्ट वाउचर, ₹500 का गिफ्ट वाउचर कर्टेसी ऑफ इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट, जहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्रैंड फिनाले ऑफ आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो, को-स्पॉन्सर्ड बाय MYOP एंड फूड पार्टनर फॉर फाइनल्स जेंस लिटिल इंडिया। दिस थ्रिलिंग सीजन किक्ड ऑफ ऑन 1st of August विद 6 पावर पैक टीम्स, एंड नाउ इट ऑल कम्स टू वन बिग ग्रैंड फिनाले बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीतास एंड कैंपस अब्रॉड लायंस। होने वाला है संडे 13th of September एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू। मैच जो है वो शुरू होने वाला है सुबह 10 बजे से। सो जॉइन इज लाइव एट द ग्राउंड फॉर अ डे फुल ऑफ हाई एनर्जी क्रिकेट फन एंड एक्साइटमेंट। चीयर करें अपनी फेवरेट टीम के लिए, एंजॉय कर सकते हैं ग्रेट फूड म्यूजिक एंड स्टैंड चांस टू विन एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स व्हाइल रेडियो मस्ती गोज लाइव फ्रॉम द ग्राउंड। डू नॉट मिस द बिगेस्ट क्रिकेटिंग शो डाउन ऑफ द ईयर आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा सीजन 4 द ग्रैंड फिनाले। यस वंस अगेन आपको याद दिला दे, होने वाला है दिस संडे ऑन 13th of September और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मस्ती के साथ लाइव फ्रॉम SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू। सो चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, गुड म्यूजिक कंटिन्यूज, एंड ये है आपका रफ्तार वाइब्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए दोस्तों इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर इंग्लिश फ्लैश न्यूज, उसके बाद लौट कर आएंगे कुछ और प्यारे गाने, कुछ और स्पेशल सेगमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ।

0: RM2 Radio Masti.
1: So well friends, शाम के 5:11 वार्म वेलकम. यस, ये है आपका रफ्तार वाइब्स और मैं हूँ परी आपके साथ 4 to 5. तो हमने खेली आपके साथ बहुत सारी गेम्स. हमारा स्पोर्ट्स सेगमेंट आपके लिए इस आवा में भी होने वाला है कुछ खास. सो यू स्टे वेल ट्यून्ड. और अगर आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ, गानों को एंजॉय कर रहे हैं, सो ड्रॉप इन आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन 5499 1294 पर. इस आवा में होने वाले हैं शाउट आउट्स. आपके नाम परी का साथ है शाम के 7 बजे तक. दैट्स योर रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: ट्रैफिक अपडेट।
3: वेल, यहाँ पर ट्रैफिक अपडेट्स अभी के लिए तो पीक आवर्स है मॉरिशस के लिए। ट्रैफिक अपडेट्स की अगर हम बात करें, सो अभी इस वक्त अगर आप रोड्स पर हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड आपका जो रश आवर है इट्स ऑफिशियली ऑन। सो अभी के लिए हम देख पा रहे हैं दैट आज काफ़ी ट्रैफिक इन पोर्ट लुइस, और ये हम जानते हैं दैट आज पेलावाल

0: की जो पदयात्रा है वो शुरू हो गई है. सो जो मोटरिस्ट है आपको रिक्वेस्ट करेंगे दैट पदयात्रियों के साथ आप आराम, यानी कि आराम से ड्राइव करें एंड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस. साथ यहाँ पर जैसे हमने बताया कि पोर्टलो इस पर ट्रैफिक नजर आ रहा है. साथ ही अगर साउथ की बात करें, अगर आप साउथ से निकलकर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहे हैं, सो सिटी सेंटर पोर्टलो इस आपको ट्रैफिक मिल सकता है एंड है वहाँ पर अभी ट्रैफिक नजर आ रहा है. रिजवी एवेन की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रैफिक, बोबासे रोज हिल भी ट्रैफिक, फिनिक्स सी जॉन पर भी गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं. कटरबोन बेल्ट रोज यहाँ पर थोड़ा सा हल्का ट्रैफिक नजर आ रहा है एंड धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही है. वहीं क्यूक पिप का भी सेम हाल है. सो वेल मेन रोड्स और सिटी बाउंड रोड्स पर ट्रैफिक की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ती हुई. सो कीप योर सेफ डिस्टेंस एंड अवॉइड अननेसेसरी लेन चेंजेस. थोड़े से एक्स्ट्रा मिनट साथ लेकर चले, जैसे हम हमेशा कहते हैं, डू नॉट रश, क्योंकि डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचना जरूरी है. अगर आपके पास कोई अपडेट्स हैं, यू कैन ऑलवेज सेंड अस योर अपडेट्स ऑन 5499-1294.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.
0: सो रोज पर भले ही ट्रैफिक हो, लेकिन वी ऑलवेज हैव अ गुड म्यूजिक आपको अकंपनी करने के लिए. ये तो होता है कि दिन भर की थकान के बाद आप भी थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं. ट्रैफिक को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपना पेशेंस आप बनाए रखिए, म्यूजिक को एंजॉय करिए, डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे. दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, परी का साथ, शाम के 7 बजे तक ऑन रेडियो मस्ती.

0: सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए इट्स टाइम फॉर सम फैशन टिप्स। बात करें अगर बटन्स, तो इसे भी आप अपना स्टाइल बना सकते हैं। शर्ट को नॉर्मली बटन करने के बजाय बॉटम के 2-3 बटन्स ओपन करके फ्रंट टक कर सकते हैं, या एक साइड को ट्विस्ट करके टक कर सकते हैं। सेम शर्ट कम्प्लीटली नए स्टाइल में नजर आता है। स्लीव्स चेंज करने से एंटायर मूड चेंज हो जाता है। फुल स्लीव्स को सिंपली आप फोल्ड करने के बजाय डिफरेंट कफ हाइट से ट्राई कर सकते हैं। शर्ट की स्लीव्स को लूजली स्क्रंच कर सकते हैं और ये एक रिलैक्स्ड लुक देता है, या नीटली से आप फोल्ड कर सकते हैं एक शार्प अपीयरेंस के लिए। छोटे चेंजेस नोटिसेबल डिफरेंस लेकर आते हैं। प्रिंट ऑन प्रिंट लेकिन स्मार्टली, चलिए फ्लोरल के साथ। अगर फ्लोरल ही आप ट्राई करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। स्ट्राइप्स, टाइनी प्रिंट्स या ज्योमेट्रिक भी काफ़ी अच्छा लग सकता है, तो आप प्रिंट पर एक डिफरेंट प्रिंट स्टाइल कर सकते हैं। और चलिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि फिट काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके कपड़ों का फिट ठीक नहीं है, सो यू वोंट बी कंफर्टेबल, और जब आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो बिल्कुल नज़र आता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन फिट ऑफ योर क्लोथ्स। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक टाइट टी शर्ट पहन रहे हैं, तो बॉटम अगर आप लूज रखें तो ये काफ़ी स्टाइलिश लगता है। अगर आपके ट्राउजर्स फिटेड है, तो लूज टॉप आपके लुक को एनहांस करता है। छोटे छोटे स्टाइलिंग टिप्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
0: और चलिए दोस्तों, स्टाइल टिप्स के बाद बैक टू म्यूजिक। शाम के 5:31 फरीका साथ अंदाज़ और रफ्तार वाइब्स, सुखबीर की आवाज़ टू गेट यू इन द मूड। वी हैव दिस पंजाबी बीट्स। टू ऑल द लिसनर्स, ड्राइव कर रहे हैं, आराम से ड्राइव करें, डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे, एंजॉय द म्यूजिक।

एंड गुड म्यूजिक कंटिन्यूज दैट्स मधुबाला आपके लिए अली जाफर श्वेता पंडित की आवाज़ें मेरे ब्रदर की दुल्हन हमारे सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं चलिए दोस्तों आपके लिए तो म्यूजिक हम पहुंचाते रहते हैं अभी के लिए आप अगर ट्रैफिक में फंसे हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं या फिर अभी भी काम पर अटके हुए हैं गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती और आपके मूड का हम ख्याल रखेंगे साथ ही आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस थोड़ी ही देर में ऑन 5499 1294 परी का साथ है शाम के 7 बजे तक

0: तो आपको बता दें आज शाम ब्लेस्ड पहलावाल के सेंकवा स्थित श्राइन पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी सूचना। पोर्ट लुइस में कैथीड्रल सेंट लुई और टेहूज में सेंट जोसेफ चर्च दो गैदरिंग पॉइंट्स है। दोनों जगहों पर आज शाम 5:30 से स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स शुरू हो रहे हैं। पदयात्रा शाम 6:30 बजे कैथीड्रल सेंट लुई और पोर्ट लुइस से शुरू होगी और शाम 6:45 यानी कि 6:45 पर सेंट जोसेफ चर्च टेहरूज से शुरू होगी। आज शाम बारिश, तेज हवा और ठंड की संभावना है। श्रद्धालुओं से गुजारिश है कि गर्म कपड़े और लाइट या रिफ्लेक्टिव कपड़े पहनकर निकले। मोटरिस्ट से भी अपील की जाती है कि पैदल जा रहे पिलग्रिम्स के साथ खास सावधानी बरते। पहलावाल का श्राइन रात 12:30 बजे बंद होगा और कल सुबह 5:30 बजे दोबारा खुलेगा। सभी पिलग्रिम्स को सेफ और मंगलमय पिलग्रिमेज की शुभकामनाएं।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station. RM2
2: Radio Masti.
0: Get ready, Mauritius. The grand finale of Island Cricket Extravaganza Season 4 is here. Organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo and co-sponsored by MYOP. This thrilling season kicked off on 1st August with 6 power-packed teams. Continental, AMG, APP, Campus Abroad, One Health and Thomas Cook. And now it's time for the big finale. Continental Cheetahs versus Campus Abroad Lions होने वाला है on Sunday 13th of September SSR National Cricket Ground Mapu. Match starts at 10 AM. So join us live at the ground for the day full of high energy cricket, fun and excitement. Cheer for your favorite team, enjoy great food, music and stand chance to win exciting gift vouchers. All while Radio Masti goes live as from 11 to 2:30 PM. So do not miss the biggest cricketing showdown of the year with RM2 Radio Masti Island Cricket Extravaganza Season 4, the grand finale.
1: RM2
2: Radio Masti.

0: हुआ झुमका।
1: वेल फ्रेंड्स, इट्स 5:54 और थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर समाचार बुलेटिन। उससे पहले आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस। वेल, यहां पर जो अगला गाना है इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर कविता जी, हमारा साथ दे रही हैं आप। थैंक यू सो मच, वॉर्म वेलकम आपका ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती। गाना होगा आपके नाम, साथ ही मैसेज है फॉर अर्शद, यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी, विद और विदाउट कन्वर्सेशन यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट बिकॉज यू आर माई लाइफ पार्टनर, लव यू सो मच। ये है फ्रॉम वाइफ रिवेका, उनके लिए भेज रही है बहुत सारा प्यार। श्याम देवीचरण यहाँ पर कुकिंग करते हुए गानों को एंजॉय कर रहे हैं फुल वॉल्यूम पर, ये हुई ना बात। चलिए सभी के लिए, सभी देवीचरण परिवार पे वैसे हमारे साथ कनेक्टेड है। गाना होगा आपके नाम एंड सेंडिंग लोड्स ऑफ गुड विशेस टू ईच एंड एवरीवन हु इज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। सीता बोलूराम अशातो बनारस से हमारी म्यूजिकल हम सफर बनी है आप। सो अगला गाना होगा आपके नाम, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। पर अश्विन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप और इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। आई डू होप ये मैसेज भेजते हुए आपने अपनी गाड़ी को पार्क किया है एंड ड्राइव सेफ और आप अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे। साथ देने वाले सभी लिसनर्स, थैंक यू सो मच। थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर समाचार बुलेटिन, उसके बाद लौट कर आएंगे दैट्स योर अवतार वाइब्स। मैं हूं परी आपके साथ शाम के 7 बजे तक, और चल पड़ा ये खूबसूरत गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम फ्रॉम द फिल्म खाकी। ये गाना आप सभी के लिए, और इसी गाने के साथ लेकर चलेंगे आपको समाचारों की ओर।

सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। प्यालावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज श्रद्धा और प्रार्थना के साथ जारी है। हजारों श्रद्धालु सैंखवा स्थित उनके मकबरे तक पहुंच रहे हैं। इस वर्ष एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज के निर्माण का संदेश दिया जा रहा है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने गोपनीय दस्तावेज बाहर पहुंचाने के संदेह में अपने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। एफसीसी के महानिदेशक संजय दाउदागी ने कहा कि संस्था में गोपनीयता का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिशों का भी खुलासा किया। हिंदी भाषा को आधुनिक रंगमंच और डिजिटल माध्यमों से जोड़ने पर फिनिक्स में विशेष चर्चा हुई। विश्व हिंदी सचिवालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर रंगमंच भारतीय और आधुनिक दृष्टिकोण पर विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। चर्चा में रंगमंच की नई संभावना और युवा पीढ़ी तक हिंदी को प्रभावशाली ढंग से पहुँचाने पर बल रहा। SSRN अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगियों के लिए एक विशेष वार्ड का उद्घाटन। ये सुविधा रोगियों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार देखभाल और इलाज उपलब्ध कराएगी। विदेश में इंडोनेशिया में ज्वालामुखी के 25 घंटे तक लगातार फटने से कई क्षेत्रों में राख फैल गई। 5 बड़े हवाई अड्डों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा।

सेवा करुणा और मानवता का संदेश देने वाले बियानुरू पे अलावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण गरीबों बीमारों और जरूरतमंदों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पे अलावाल को मॉरिशस के महान धर्म सेवक के रूप में भी जाना जाता है। पे अलावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज शुरू हुई जबकि उनकी पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी।

ये केवल पैदल तय किए जाने वाला रास्ता नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। कोई अपनों के साथ तो कोई अकेले, और हर श्रद्धालु अपने विश्वास और अपनी कहानी के साथ सैकड़ों पहुंच रहा है। प्रार्थना, कला और मानवीय एकता के बीच ये तीर्थ यात्रा याद दिलाती है कि आस्था की सच्ची पहचान प्रेम

आशीर्वाद के लिए सैखवा स्थित मकबरे तक पैदल पहुंचते हैं। इस वर्ष तीर्थ यात्रा का संदेश है एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज का निर्माण। गोपनीय दस्तावेज बाहर पहुंचाने के संदेह में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का एक अधिकारी निलंबित। आज सुबह पत्रकारों से बातचीत में एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदागी ने कहा कि संस्था के भीतर गोपनीयता का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कुछ जांच अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है।

0: कानून की किताबें अदालत की दलीलें और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकालत की दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में आज के कानून छात्र भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करें, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में इसी सवाल पर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने बताया कि नई तकनीक के दौर में वकीलों की भूमिका और कानूनी पेशे का स्वरूप किस तरह बदलने वाला है। अनबेल वुल्बेया की रिपोर्ट पर सुनते हैं गीता सुनारायण को।
1: न्याय संस्थागत सुधार और मॉरिशस तथा भारत के बीच संबंधों पर चर्चा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के साथ हुई शिष्टाचार मुलाकात के केंद्र में रही। अपनी पत्नी और मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त के साथ पहुंचे डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री के साथ न्याय व्यवस्था में हो रहे बदलाव, न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में तकनीक के इस्तेमाल और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की। इनमें मॉरिशस में चल रहा संवैधानिक सुधार भी शामिल है। मॉरिशस में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन है जो संविधान के संचालन का अध्ययन करेगा। उसी तरह भारत ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन कायम किया जिससे संविधान में बदलाव के आधार रखे गए। सुधार के साथ संवैधानिक बदलाव किए जा सकते हैं और साथ में जजों और अदालती कार्रवाइयों के साथ भी, जैसे निजी जीवन का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।
2: So these changes have come in as a result of judicial interpretation.
1: Dr. Dharanjay Chandrachur ne Rashtrapati Dharam Gokul aur Attorney General Vakil Gavin Glover se bhi mulaqat ki. In mulaqaton mein bhi inhi muddon par charcha ki gayi. यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की फैकल्टी ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट के लिए एक खास मेहमान की मौजूदगी रही। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से बातचीत करने का मौका मिला। इस दौरान तेजी से बदलते कानूनी पेशे की वास्तविकताओं पर चर्चा हुई। भारत के पूर्व न्यायाधीश ने छात्रों के साथ सीधे संवाद को प्राथमिकता दी और अपने करियर की शुरुआत से जुड़े कुछ अनुभव भी साझा किए। लेकिन पेशे की बारीकियों से आगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने छात्रों को ये समझने की सलाह दी कि कानून कभी भी समाज से अलग होकर काम नहीं करता। इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में हो रहे बदलाव भी कानून को प्रभावित करते हैं और ये तय करते हैं कि कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभानी चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इस सोच का महत्व और भी बढ़ गया है, लेकिन पूर्व चीफ जस्टिस के अनुसार AI को इंसान की जगह नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रचूड़ कहते हैं,
2: द वन थिंग व्हिच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डजंट गिव अस इज द पावर ऑफ जजमेंट।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्याय करने की क्षमता नहीं होती। AI जरूर वकीलों के काम करने के तरीकों को बदल सकता है, लेकिन वो अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका की जगह नहीं ले सकता। वो अच्छे और बुरे के बीच फर्क नहीं कर सकता और हमारे समाज के हित के लिए उचित फैसला नहीं ले सकता।
2: Which is to distinguish between what is right and wrong and to arrive at just conclusions for the welfare of our societies.
3: It is not every day that students have the opportunity to interact

0: छात्रों के लिए ये मुलाकात कानून की किताबों और कानूनी प्रावधानों से आगे बढ़कर ये समझने का मौका रही कि भविष्य में उन्हें किन वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्लोए जुवाल कहती हैं,
1: Il nous a vraiment donné de bons conseils et sa perspective aussi par rapport au nouveau monde et avec l'implication de l'intelligence artificielle dans même le domaine légal et ses benefits, tout ce que ça peut nous apporter, mais aussi ses...
0: उन्होंने हमें अच्छी सलाह दी, AI के फायदों और नुकसान के प्रभावों के बारे में भी समझाया, जो कानूनी पेशे पर पड़ सकता है।
2: L'artificial intelligence ayant plusieurs informations, misinformation aussi.
0: युवराज लक्ष्मण कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत जानकारियां भी देता है। हमें नई पीढ़ी को इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। करीब 30 मिनट की ये मुलाकात छात्रों के लिए सिर्फ कानून का एक पाठ नहीं रही, बल्कि उस बदलाव पर विचार करने का अवसर भी बनी, जिसका सामना आने वाले समय में इस पेशे को करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सोचने का मौका कि वे भविष्य में किस तरह के कानूनी पेशेवर बनना चाहते हैं।
3: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित लोगों की देखभाल की दिशा में एक नई पहल। कई वर्षों की कोशिश और आपसी सहयोग के बाद SSON अस्पताल में एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जागरूकता दिवस पर शुरू की गई इस सुविधा का उद्देश्य रोगियों को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर इलाज देना और उनके जीवन को आसान बनाना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी संगठन ने इसका स्वागत करते हुए सरकारी अस्पतालों में और अधिक विशेष उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। करुणा लालू।
4: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जूझ रहे मरीजों की देखभाल के लिए एक नया चरण, मरीजों के लिए समर्पित नया वार्ड, कई वर्षों से चल रहे प्रयासों और विभिन्न पक्षों के सहयोग का नतीजा है। इसका मकसद मरीजों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुरूप अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। सुदेश कुमार पाठू कहते हैं,
5: une fois qu'ils sont enfants qui diagnostiqués avec la dystrophie musculaire, ils ont canalisé ces enfants-là vers nous l'association et à partir de ça nous prenons le suivi.
4: उत्तर क्षेत्र से परे स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने दक्षिणी क्षेत्र में भी इसी तरह की सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य दक्षिण के मरीजों को खास चिकित्सा सेवाएं उनके घर के करीब उपलब्ध कराना है। मंत्री अनिल बिचू ने कहा,
6: pour garder quelques jours ou quelques semaines dans l'hôpital, il vient un problème pour mes parents. Alors nous pensons dans le sud, soit à Rosebel ou à Suyac. Nous visons faire un autre département, un petit ward là-bas.
4: स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि दो नई एंजियोग्राफी मशीनें फ्लैक और जीतू अस्पतालों के लिए जल्द ही खरीदी जाएंगी। अस्पतालों में मौजूदा कई मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें लगातार मरम्मत की आवश्यकता है।
6: On voit l'hôpital civil, un de l'hôpital plus important des pays de la capitale en Diop et en Panne là-bas. Nous devons faire tous nos démarches cette semaine-là, nous capables de réparer. Et quand nous réparer, nous espérons que vous travaillez un peu. Entre-temps, nous avons déjà fini comment se procédure pour prendre des angiomachines, un aflac et qu'un adjitou.
4: वहीं सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त करने के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। ये असेसमेंट पैनल के कामकाज पर भी गौर करेगी।
7: La réforme de disability benefits, l'IPU, vise pour qu'il non seulement get l'élément médical de quelqu'un qui a une quelconque disability, mais il aussi vise pour get l'élément fonctionnel. Au sens, le medical guideline pour intégrer et moderniser et réactualiser un critère médical. Et que là, nous pouvons aussi évaluer ben, des gens qui basissent le 60%, mais en bas 60%, 159 à 40, imagine an inclusive living allowance.
4: सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के स्तर पर भी कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार संविधान में दिव्यांगता को भेदभाव से सुरक्षा के आधारों में शामिल करने के अपने वादे पर कायम है।
3: हिंदी भाषा रंगमंच और बदलती डिजिटल दुनिया के बीच के गहरे संबंधों पर आज फिनिक्स में एक विशेष मंथन हुआ। विश्व हिंदी सचिवालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर रंगमंच भारतीय और आधुनिक दृष्टिकोण विषय पर

0: परिकार्य शाला आयोजित की। स्थानीय कलाकारों ने रंगमंच में आ रही बदलावों और नई संभावनाओं पर विचार साझा किए, साथ ही नई पीढ़ी तक हिंदी को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने की जरूरत पर बल दिया। अदिति अवतार।
1: एक कहानी सुनने आए हैं।
2: नाटक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख और प्रभावशाली माध्यम है, जिसने समय समय पर समाज, संस्कृति, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं को मंच पर जीवंत रूप प्रदान किया है। पारंपरिक रंगमंच से आरंभ हुई नाट्य कला ने बदलते तकनीकी परिवेश के साथ निरंतर नए रूप लिए हैं। इस कार्यशाला में स्थानीय कलाकारों को नाटक के विकासशील सफर पर विचार करने का मौका मिला।
3: पहले धरती सांस लेती थी।
4: पुराने के ज़माने में हम सेटिंग करते थे, जो प्रव्स बनाते थे वो हाथ से बनाते थे, कुछ घर के बना देते थे फिर रखते थे। पर आज एवोल्यूशन के साथ हम लेड स्क्रीन डालते हैं, डिफरेंट एआई का सहायता लेकर हम डिफरेंट सेटिंग बना सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं लाइट्स के साथ, म्यूजिक के साथ। अभी सब कुछ बदल गया है।
5: जो सोशल मीडिया जो कंटेंट बाहर में बनाया जा रहा है, यहाँ पर हम ग्रहण करते हैं सिर्फ। अब इससे हमें निकल कर वी नीड टू बिकम एक्टिव, हमें खुद क्रिएटर्स बनना है। लेकिन क्रिएटर्स बनने से पहले हमें वो क्षमता होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम खुद कंटेंट क्रिएट करें और लोगों तक पहुंचा सकें। और इसके लिए ऐसे कार्यशाला, ऐसे वर्कशॉप बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक तो भाषा के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग के तौर पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी वाइज आधुनिक उपकरण किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से ये कंटेंट खासकर नौजवानों तक पहुंचा जाए।
6: दिव्यांग सज्जनों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि विश्व हिंदी सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहता है।
2: नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डीन शांतनु बोस ने कहा कि डिजिटल युग ने नाटक की पारंपरिक संरचना को चुनौती देने के साथ साथ उसे ज्यादा सुलभ और संवादात्मक बनाया है।
7: थिएटर एक ऐसी विधा है, एक लाइव परफॉर्मेंस है, जहाँ पे मूल शर्त ही है कि दर्शक और अभिनेता साथ में फिजिकली उपस्थित रहे। तो ऐसे हमारे फॉर्म का तो एआई से कोई शंका नहीं है, पर एआई के कारण बहुत सारी सुविधाएं आई हैं, जैसे हमें बहुत तुरंत कोई टेक्स्ट ढूंढना हो, कोई रिसर्च मटेरियल ढूंढना हो।
8: हिंदी का जो एक स्वरूप है, जो न केवल अतीत से जुड़ा है बल्कि वर्तमान से जुड़ा है, हम हिंदी के उस रूप को देख रहे हैं। बल्गारिया में क्योंकि भारतीय डायस्पोरा बहुत छोटा है, तो वहाँ पर बल्गारियन हिंदी पढ़ रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच में, या हम कहें तीनों देशों के बीच में, चाहे वो भारत हो, मॉरिशस हो और बल्गारिया हो, इन तीनों के बीच में अलग अलग हिंदी है।
2: उद्घाटन समारोह में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में नई टेक्नोलॉजियों को शामिल करने के महत्व पर बल दिया गया।
9: देखिए, हम लोग के सामने एक चुनौती है कि कैसे नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ा जाए, और इस जुड़ाव को बनाने के लिए हमें जिस तरह से हिंदी की पढ़ाई होती है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तो एक माध्यम है, और टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सब से जो युवा पीढ़ी का जुड़ाव है, उस माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार के साधन हम अपना रहे हैं, और हमारी कोशिश यह है कि उन साधनों के साथ हम युवा पीढ़ी को हिंदी के प्रति आकर्षित करें। साथ साथ हिंदी को सरल और रोचक भी बनाना पड़ेगा, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हिंदी का पाठ्यक्रम जो हो, हिंदी के पढ़ाने के तकनीक जो हों, वो सरल हों, वो इस तरह के हों कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनकी हिंदी के प्रति जो रुचि है वो बढ़े।
2: शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों को सरल व्याकरण और आसान भाषा के माध्यम से हिंदी पढ़ाए जाने पर उनकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी।
10: इस माध्यम से हिंदी को बच्चों की तरफ ले जाएं, उन लोगों का रुचि हिंदी में कैसे हम ज्यादा इंटरेस्ट ला सके। We have to review the way Hindi is taught. अगर सरल भाषा में हिंदी को हमारे बच्चों के पास लाएं, वो उसको अपनाएंगे।
2: इस समारोह के दौरान एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया।
0: और हर वर्ष 8 और 9 सितंबर को हजारों श्रद्धालु

0: प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए सैकड़ों स्थित मकबरे तक पैदल पहुंचते हैं। समाचार की शुरुआत में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। इस वर्ष तीर्थ यात्रा का संदेश है एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज का निर्माण, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष यातायात और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की गई है। हमारी सहयोगी याचना मिश्रा सैकड़ों में मौजूद है ताज़ा जानकारियों के साथ। नमस्कार याचना।
1: नमस्कार पूजा और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। जी हाँ, अभी हम सैकड़ों में खड़े हैं। मेरे ठीक सामने फौतल आबाद का मकबरा है और पीछे यहाँ पर गिरजाघर है। और यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ इस वक्त बहुत तेज हवाएं बह रही हैं, हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन भीड़ भी है लेकिन शांत माहौल भी यहाँ पर छाई हुई है। मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई शोर शराबा नहीं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं शांत माहौल से, शांत मन लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, इसी श्रद्धा इसी आस्था के साथ, क्योंकि जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वे दूर होंगी। और यहाँ पर आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, जी हाँ, सुरक्षा काफी जोरदार है। यहाँ पर पुलिस की भारी मौजूदगी है, यहाँ पर कुछ समाज सेवक भी है और स्वास्थ्य के लिए मेडिकल पोस्ट लगाए गए हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं वो इस मेडिकल पोस्ट में जा रहे हैं जो मकबरे और गिरजाघर के बीचों बीच लग गया है। पुलिस की भारी मौजूदगी है। हमने मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के जो जो दमकल कर्मी हैं वे भी वहाँ पर हैं। चार पांच एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं यहाँ पर सबकी सुरक्षा के लिए। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं शांत मन के साथ, शांत चित्त के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और फौजलाबाद के पास जाकर फिर वहाँ से निकल के वो लोग गिरजाघर के अंदर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि गिरजाघर में यहाँ पर प्रार्थना सभा जो लगने वाली है वो रात 8 बजे शुरू होगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो 6:30-7 बजे के बीच जो है तब जाकर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो लोग काम पर गए हुए थे, बच्चे जो लोग स्कूल कॉलेज गए हुए थे, वे अब घर पर जाकर फिर यहाँ तक की या तो पद यात्रा या फिर गाड़ियों में आ रहे हैं। अब गाड़ियों को लेकर हम बता रहे हैं, कोटवी से जैसे मोका से जब हम लोग कोटवी की ओर आ रहे थे तो यहाँ पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या थी, लेकिन जैसे ही हम जो आली पैरावाल जिसको बोलते हैं, जो सड़क है जो यहाँ पर आती है, वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम इतनी ज्यादा नहीं थी, गाड़ियाँ जो है आराम से चल पा रही हैं, पार्किंग की व्यवस्था भी है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं शांत मन से। और आपको बता दें कि कल 9 सितंबर को यहाँ पर लोगों की ज्यादा भीड़ आने का अनुमान है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं फौजलाबाद का देहांत जो है वो 9 सितंबर को यहाँ पर हुआ था सन 1864 में, और वे 7 साल के थे और वे गरीबों के मसीहा कहलाते हैं जिन्होंने यहाँ पर मॉरिशनों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और उनकी भलाई के लिए यहाँ पर काम किया है।
0: धन्यवाद याचना इन सब जानकारियों के लिए। जैसे कि पैलावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज शुरू हुई, ये केवल पैदल तय किए जाने वाले रास्ता तय किया जाने वाला रास्ता नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। और पैलावाल की पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी। विदेश में भारत की राजधानी नई दिल्ली में सत्यनिकेतन की 5 मंजिला पीजी इमारत ढहने के बाद छात्र आवासों की सुरक्षा जांच की जा रही है। हादसे में 7 लोगों की मौत। 1 सप्ताह के भीतर पीजी के रूप में इस्तेमाल की जा रही इमारतों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उच्च स्तरीय जाँच और इमारत नियमों के पालन पर फिर से गौर करने की घोषणा की है। और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर भारत तक 2 बड़े हादसों ने चिंता बढ़ा दी है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी की राख से उड़ानें प्रभावित हुई हैं और लाखों यात्री फंस गए हैं।

और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू हैं। इस तरह हमारे इलाके पर ठंड हवाएं बह रही हैं और मस्कारिन की दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंड और जोरदार हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर देश के पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर। कोहरा भी छाया रहेगा। कल दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और हल्की वर्षा होने का अनुमान है ऊंचाइयों पर। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4-6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से तथा मछुआरों से समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14-16, अधिकतम तापमान 17-22, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18-21, अधिकतम 23-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:11 पर होगा।

0: 6:26 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजल को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

रॉय रोड बुले रूज फ्लैक में 69 साल की 69 years old श्रीमती मुनेश्वरी देवी कुंजु बिहारी पैदाशी नाम रामयाल और जिन्हें लोग रजनी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सपहर के तीन बजे इनके पति देव कुंजु बिहारी के मकान रॉय रोड बुले रूज फ्लैक से उठाकर काउ दे मास्क की श्मशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कच्चे मिलिटेर में 72 साल की 72 years old श्रीमती विरामा चिदम्बरम पैदाशी नाम कुंजमाले और जिन्हें लोग मिनीदा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके बेटे कंदन चिदम्बरम के मकान बॉम्बे रोड प्रोविडेंस का चिमनीते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए में जिनका दिमास की श्मशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। रॉय रोड न्यू ग्रोव में 79 साल के 79 years old श्री उजागीर सिंह सकी सिंह जिन्हें लोग विष्णु नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले DWC में इंस्पेक्टर थे। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे इनकी बहन हरावंती सकी सिंह के मकान रॉयल रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। रॉयल रोड ला फ्लोरा में 93 साल के

0: 93 years old, Sri Rup Narayan Mangha. श्री रूप नारायण मंघा, जिन्हें लोग ललन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड लाफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घाव बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। गांधी रोड बनमिया में 76 साल के 76 years old श्री अमृतलाल बिकाऊ, जिन्हें लोग नारायण नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ है कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे रामनाथ सिंह बिकाऊ के मकान गांधी रोड बनमिया से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 12:30 PM। रिवालो रोड खैफकुआ में 81 years old श्रीमती धनवंती बुलडाओ, जिन्हें लोग कलावती नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल शाम साढ़े तीन बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान रिवालो रोड खैफकुआ से उठाकर खैफकुआ किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 3:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2 Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: तो चलिए दोस्तों, शाम के 6:36 परी का साथ और ये है आपका रफ्तार वाइव्स। अब रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई, जहाँ पर जो पीक का ट्रैफिक आवर्स थे अब थोड़े से स्लो डाउन होते हुए। सो ऐसे में अगर अभी इस वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं, आराम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएं। स्लोली बट श्योरली, जैसे हम कहते हैं, दैट डेस्टिनेशन पर पहुंचे आप। और गाने हम यहाँ पर आपके लिए चलाते रहेंगे मॉर्निंग टू नाइट, आपका म्यूजिकल कंपेनियन, आपके रेडियो पार्टनर RM2 रेडियो मस्ती। फॉर नाउ ऐसे ही कुछ प्यारे गाने मूड को थोड़ा सा रोमांटिक रखेंगे, बिकॉज शाम का टाइम हो रहा है। एंड आप भी अगर हमारा साथ दे रहे हैं, तो योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

और चलिए दोस्तों, शाम के 6:51 651 एंड यू आर कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। इट्स टाइम फॉर योर रफ्तार वाइब्स। और जैसे हमने कहा कि रफ्तार तो अब थोड़ी धीमी पड़ती जा रही है एंड दैट पीक ट्रैफिक आवर्स, उसके बाद अब रास्ते थोड़े से खाली आपको नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में जैसे हम कहते हैं कि यही वो टाइम होता है जहाँ पर हम थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा सुकून पाना चाहते हैं। और कभी कभार शाम का टाइम ही होता है व्हेन यू फील क्लोज टू ऑल दोज जो आपके दिल के हमेशा पास रहते हैं। सो यहाँ पर जो अगला गाना है ये भी कुछ ऐसे ही लोगों के नाम है। जैसे हम कहते हैं, कुछ लोग आंखों के सामने नहीं होते लेकिन दिल के हमेशा करीब रहते हैं। आंखें नम होती है उनके बारे में सोचकर, और कभी कभार दिल करता है कि काश उन्हें हम हक पर कर पाते, क्या काश हम उनसे कुछ कह पाते, काश हम उनसे जो भी दिल में छुपी हुई बातें हैं वो शेयर कर पाते। लेकिन कभी कभार इंसान होते नहीं हैं, लेकिन वो बातें, वो यादें जो है वो हमेशा साथ रहती हैं, बस वही याद आती है। सभी के लिए यहाँ पर विशाल भैया हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी, एंड रिमेम्बरिंग योर डियरेस्ट मामा। आज का दिन भी ऐसा है जहाँ पर आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं। वैसे तो हर एक दिन याद तो आती ही है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होती हैं जो आंखें थोड़ी सी नम भी कर जाती है। लेकिन लाइक हम कहते हैं कि अब तो वो एक तारा है, एक सितारा है जो बनकर, सितारा बनकर हमेशा आपको देख रहे हैं। सो फॉल बसेसा परिवार, ये हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपकी मामा के नाम। लाफ्लोरा से हमारा साथ दे रहे हैं, स्पेशली फॉर विशाल भैया, रीना भाभी, हमेशा हमारा साथ देते हैं आप। एंड दिस वन गोज आउट स्पेशली टू ऑल दोज जो अपने स्पेशल इंसान को मिस कर रहे हैं। वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें नहीं गुजरती है, वो मेमोरीज हमेशा रहती है। सो दिस वन्स डेडिकेटेड विशाल भैया, आपकी ओर से आपकी मामा के नाम और हमारी ओर से आपके नाम। चलिए आप भी हमेशा खुश रहें। जैसे हमने कहा कि शी इज़ योर एंजल नाउ, अब एक सितारा बनकर वो हमेशा आपको देख रही हैं और आपको हंसते मुस्कुराते देखना चाहती है। तो ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए स्पेशली, हरिहरन साहब की आवाज़। एंड दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स।

0: अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, ये सारा शब्द तो हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है आप लोगों के लिए। आप तो हमारे अपने से भी ज़्यादा अपने हैं और इस हमेशा अपनापन का एहसास दिलाने के लिए दिल से आपको हम शुक्रिया कहते रहते हैं। शाम के 7:07 हो चुके हैं, ऐसे ही हम और आप साथ साथ हैं। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल ट्यूसडे इवनिंग और रोज़ की तरह आपको ये एहसास दिलाने के लिए आ चुके हैं कि इवनिंग्स होते हैं थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए और काम का जो प्रेशर होता है, काम का स्ट्रेस होता है, आप काम पर ही छोड़ कर आइएगा। कभी कभी हम दहलीज को पार कर लेते हैं लेकिन घर आते आते और अंदर पहुंचते पहुंचते हम घर का लोड, काम का लोड और काम का स्ट्रेस भी लेकर चले जाते हैं, जिससे घर का माहौल भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि मे बी दिन भर आपके परिवार वालों को आपका इंतज़ार रहता है और ये इंतज़ार इतना मतलब इम्पेशेंटली से वो आपका इंतज़ार करते हैं कि बस आपके पैरों की आहट सुनकर इतने खुश हो जाते हैं शायद आप कभी सोच भी नहीं पाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रियलाइज़ कि जब अपने इंतज़ार करते हैं तो वो इंतज़ार प्यार का इंतज़ार होता है, क्योंकि भले ही आप उनसे दूर रहते हैं बट दे ऑलवेज कीप यू इन देयर प्रेयर्स, जैसे हम हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में आपको रखते हैं, आपको याद करते हैं। एंड इसीलिए हम कहते हैं, आपसे गुजारिश करते रहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ आप सेफ एंड साउंड अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो डोंट ट्रीट दिस मीटिंग एज ऑर्डिनरी, क्योंकि आप सेफली घर पहुंचते हैं, यही एक अंडररेटेड ब्लेसिंग होता है। सो चलिए जस्ट ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग्स और इस ब्लेसिंग्स में आपके अपने भी आते हैं और साथ में हम भी शामिल होते हैं, क्योंकि हम तो रोज़ रोज़ आपके बारे में सोचते रहते हैं कि हाउ टू कीप यू हैप्पी एंड हाउ टू मेंटेन दैट प्रेटी स्माइल अपन योर फेस। तभी दिमाग में ये ख्याल आता है कि चलो आज और कुछ गाने आपको सुनाते हैं ताकि आप थोड़ा और हंसे, थोड़ा और मुस्कुराए और थोड़ा और आपको मौका मिले टू रिवाइव सम ब्यूटीफुल एंड गोल्डन मेमोरीज। तो चलिए, यादों का पिटारा खुलने का टाइम आ गया है और हमारा और आपका साथ ऐसे ही रहेगा टिल 9 PM ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है। तो चलिए आपके मैसेजेस, योर मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर व्हिच इज 5499-1294।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

थोड़ा सा मेरा भी सुन लो, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो डेफिनेटली टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर आपको सुनना पसंद करेंगे। और स्पेशली घर वापस आकर भले ही वो थके हारे हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए ज़रूर पूछेंगे कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुमने खाना खाया। ये सारा कुछ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि प्यार में ये सारा कुछ इट्स अ कीवर्ड टुवर्ड्स increasing the love dose, जैसे हमेशा हम कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें it really makes a big difference। और कभी भी आप घर थके हारे वापस आए हैं ना, तो मुझे पता है it's really difficult, effort करना हर किसी को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन trust me it's not impossible। अगर आप भले ही थके हुए हैं, लेकिन थके हारे भी अगर आप ये सवाल उनसे पूछेंगे जो आपके दिल के बहुत ही करीब हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। इंटरेस्ट मी, जब आप मेहनत करेंगे खुद की साइड से, तो दूसरी तरफ से भी ये प्यार मल्टीप्लाई, ऐड और रेसिप्रोकेट होकर ज़रूर आप तक पहुंचेगा। वैसे कहते हैं ना कि जो आप ज़िंदगी में देते हैं, इससे दुगना आप हासिल करते हैं। तो अगर आप प्यार देना चाहते हैं, so not a bad idea to have some more love in your side and in your share। तो चलिए यहाँ पर कुछ और आपकी beautiful messages हम तक पहुँच रहे हैं। एक बार फिर से दिल से आपको शुक्रिया। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ, जहाँ पर दिव्या का साथ है न्यू इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। तो चलिए, किसी ने हमें मैसेज किया है और कहती है, नमस्ते रेडियो मस्ती टीम, ऐसे बरसाती मौसम में आपके गाने दिल को खुश कर रहा है, एंड यू वॉन्ट टू मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट, वजह तुम हो। वाह क्या बात है, अरमान मलिक की आवाज़ में ये हम चलाने की कोशिश करते हैं। वी डोंट प्रोमिस बट विल ट्राई। एंड यहाँ पर आप कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू पूनम, टीना, उग्नू फ्रॉम करिश्मा, वर्षा एंड ऑल स्टाफ ऑफ ब्रह्मस्थान जो आपके साथ काम करते हैं। सो दिल से आपको शुक्रिया टू ऑल दोस जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ। यस, बरसाती मौसम है और तेज़ हवाएं तो ज़रूर बह रही है। आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। एंड वैसे बरसाती मौसम में देर इज़ नो टाइम कि आप लोग दुखी रहे, क्योंकि दुखी रहने के बजाय आप रोमांटिक बनिए, एंड कीप फीलिंग लव एंड कीप एक्सपीरियंसिंग द मैजिक ऑफ लव ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: वैसे इस गाने को सुनने के बाद आई शुड से दैट दे डोंट मेक सच मास्टरपीसेस एनीमोर एंड जितने भी बचे कुछ गाने हैं जो दिल के बहुत ही करीब हैं आप उनको दिल के करीब ही रखिएगा एंड ट्रस्ट मी जब भी ये गाने आप सुनेंगे ना तो हमेशा आपकी आंखें नम हो ही जाएंगी गानों के एहसास गानों के जज्बात कुछ ऐसे ही है कि क्या कहें और क्या करें बस आंखें नम हो ही जाती है और दिल थोड़ा मचल सा जाता है 7:33 ऑलरेडी दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज चलिए इस खूबसूरत गीत के साथ शो को आगे बढ़ाते रहेंगे टू ऑल दोज जो सुरेश वाडकर के बहुत बड़े फैन हैं दिस वन गोज आउट स्पेशली टू ऑल ऑफ यू

और आपने भी ये कैसे सोच लिया कि हम आपसे मुंह मोड़ेंगे, ये तो सपने में भी हम नहीं कर पाएंगे। आप तो हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। एंड कहते हैं ना कि सबसे कीमती एक इंसान के लिए उसका वक्त होता है, टाइम इज मनी। और ऐसे कीमती वक्त निकाल कर किसी को याद करना, दैट्स वेरी एक्स्ट्रा स्पेशल। और आपका जो एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट है जो रोज़ रोज़ हमें आप भेजते रहते हैं, आपका प्यार, अपना सपोर्ट अपने मैसेजेस के जरिए देखकर मन मुस्कुराता है और बहुत ही खुश हो जाते हैं हम। थैंक यू सो मच। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं टू कीप दैट प्रेटी स्माइल अप ऑन योर फेस। तो आप भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ये देखकर बहुत ही ग्रेटफुल रहते हैं। एंड लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वन लिसनिंग टू अस एंड कनेक्टेड विद अस। यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ और मैसेजेस की ओर। हाई दिव्या जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड नेक्स्ट सॉन्ग हमेशा की तरह प्लीज़ एक गाना आपके पति राज के लिए और आपका बेटा है अंतेश, साथ में वी हैव अंकुश, आपकी बहू है मनीषा, साथ में वी हैव अशीमा, आपकी पोती है हिमेशा, साथ में आध्या, पोता है अंश, सभी रेडियो मस्ती टीम के लिए थैंक यू सो मच। प्यारी सी अनीता जी, आप है फ्लैग से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बस बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस आते हैं। एंड यहाँ पर किसी ने हमें एक बहुत ही प्यारा सा कोट भेजा है, कहती है, इन अ वर्ल्ड सो ऑब्सेस्ड विद बीइंग इम्पोर्टेंट, बी द काइंड ऑफ पर्सन हु मेक्स पीपल स्माइल, they make cashiers smile, make waiters laugh, and makes lonely people feel seen. Being kind, present, and wonderfully human is its own kind of extraordinary. Ye aapne

0: बहुत ही बड़ी बात कही है, आए हुए राहगीरों को बस प्यार से वेलकम करना और उनकी तरफ देखकर बस एक स्वीट स्माइल देना कॉस्ट नथिंग। कहते हैं ना कि स्माइल इज़ वेरी कॉन्टेजियस, क्या पता आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देख किसी को थोड़ी सी ताकत मिल जाए और वो कह नहीं पाते हैं, बट वी डोंट नो कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। इसीलिए हंसते मुस्कुराते लोगों को कभी जज नहीं करना चाहिए, कभी हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे पर के पीछे एक बहुत ही बड़ा सोल्जर होता है जो ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा बैटल से जूझ रहा होता है। इसलिए चाहे जो भी सिचुएशन हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आप हंसते रहेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पर टीना जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं। एंड द नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली आप लोगों के लिए, एंड इट्स रेनिंग एट योर प्लेस, रेडियो मस्ती ऑन फुल वॉल्यूम। गर्मा गर्म डिनर आपने परोस लिया है तो आपको बन अपीची शुभाहार। नेक्स्ट गुज ऑल टू योर फैमिली एंड हमारी फैमिली के लिए भी, दैट्स रियली स्वीट। शुभरात्रि आपको, एंड साथ में यहाँ पर रेखा जी एज यूजुअल शो को पसंद करती हुई कहती है, नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर माय लव राकेश बुदन, एंड रोमांटिक सा गाना आपको चाहिए आपके लिए। नमस्ते दिव्या जी, इफ़ यू कैन प्लीज़ प्ले द सॉन्ग जब कोई बात बिगड़ जाए फॉर संगीता एंड उनकी फैमिली के लिए, हम ट्राई करते हैं। एंड साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना गोज आउट प्यारी सी हमारे जितने भी सारे लिसनर्स हैं, और ऑल्सो गोज आउट फॉर सीता गीता भोलू राम और शातो बिना है साथ देने के लिए, दिल से शुक्रिया।
1: Evening Lounge, Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Musti.
0: चलिए आपने कहा और हमने मान लिया, क्योंकि आपके हर बात दस्तर आंखों पर, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। प्यार इसीलिए तो करते हैं ताकि हम सफर बनकर किसी का प्यार मिले, किसी का साथ मिले, और जिंदगी में अगर सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए ना, तो आप ऐसा मान लीजिए दैट दे आर द आंसर टू योर प्रेयर्स।

0: प्योर काउ घी
1: रेडियो मस्ती
0: नॉर्थ साउथ
1: 103.5
0: ईस्ट वेस्ट
1: 96.4 सेंटर 99.4
2: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घर मिलाते चलिए रात्रि के 8 बज चुके हैं.
1: Evening Lounge.
4: Evening Lounge.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: such a beautiful and a divine gana tu mange dil main de du ja lekin hamesha jab aapko pyar hota hai na to us pyar mein aapko thoda bahut khud ke liye bhi pyar bacha kar rakhna chahiye वैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दुनिया में आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं और तीन ऐसे लोगों का नाम बताइए जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप कुछ पलों के लिए बैठकर आप सोचने में लग जाएंगे कि आप किन किन लोगों से प्यार करते हैं और नाम बताने में आप लग जाएंगे बट ये आपको ज़रूर रियलाइज़ करना है कि उन सारी लिस्टों में आपने बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचा और आपने सबका नाम बता दिया जिनसे आप प्यार करते हैं लेकिन सबसे पहले अपना नाम लेना आप भूल गए क्योंकि आप हमेशा खुद को एंड में रखते हैं बट यू शुड ऑलवेज प्लेस योरसेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस क्योंकि अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे खुद को प्यार नहीं देंगे तो आप दूसरों को प्यार नहीं दे पाएंगे इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खुद के बारे में भी थोड़ा सोचें इट्स नॉट सेल्फिश इट्स सेल्फ केयर और सेल्फ केयर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे कहते हैं ना कि प्यार में आप कभी भी किसी को अपनी ज़िंदगी ना बनाएं क्योंकि प्यार में थोड़ा बहुत बैलेंस को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए लेकिन किसी को कभी भी अपनी ज़िंदगी ना बनाएं चलिए ज़िंदगी होती है इसको अच्छी तरीके से खुले बाहों के साथ जीने के लिए एंड आई जस्ट होप कि आप भी इस ट्यूसडे इवनिंग को वेलकम कर रही है विद दीज ब्यूटीफुल रोमांटिक गीत जहां पर आपको मौका मिल रहा है कुछ और खूबसूरत यादों को रिवाइव करने के लिए तो चलिए दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM एंड आप अपने मैसेजेस ज़रूर भेजते रहे अपनी तरफ से और हम राह ताक रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं आपके मैसेजेस के जो बहुत ही प्यार भरे होते हैं एंड वी or waiting for your messages on 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musti.

0: जिंदगी में प्यार के सिवा और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और प्यार से जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है कि बस प्यार के आ जाने से हम और भी प्यार की राह देखते लग जाते हैं।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.
0: अब अगर ये नाचीज दिल किसी पे आ गया तो दिल क्या कर सकता है? दिल का कोई जोर नहीं चलता है, इस पे कोई काबू नहीं चलता है। कब, कहां, कैसे और क्यों और किस पे मर मिट जाए, ये कभी कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। और ये अजीब बात है ना कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से दिल उस एक इंसान को कैसे चूज कर लेता है और उसको कैसे पता चल जाता है कि यही मेरा सोलमेट है। इट्स ऑल मिस्ट्रीज लेकिन इट्स ऑल मैजिक।

0: प्यार में हमेशा ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के काबिल हो ही जाता है, बस आप अपनी काबिलियत पर कभी शक मत कीजिएगा. एंड जस्ट नो दैट जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है ना, वो हमेशा आपको या तो एक सीख दे जाती है या फिर एक खूबसूरत सी कहानी बनकर आपकी ज़िंदगी में रह ही जाती है. चलिए, इट्स ऑलरेडी 8:30 एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड यहाँ पर आपके कुछ और मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच दिव्या जी फॉर प्लेइंग जब कोई बात बिगड़ जाए, यू आर वेलकम. एंड यहाँ पर आप कहती हैं, नमस्ते जी, आई एम श्वेता हुकुम फ्रॉम बनाकर एज यूजुअल. नेक्स्ट कना गोज आउट स्पेशली फॉर यू हबी रोशन फ्रॉम वाइफ बूबू, वांट टू टेल हिम लव यू सो मच. सयारा का गाना आपको सुनना है, चलिए अगर पॉसिबल हुआ तो हम चलाएंगे ज़रूर. फिलहाल के लिए जुर्म का ये खूबसूरत सा गाना गोज आउट टू ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद अस.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

ऋतु तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है और बस प्यार की फितरत तो ऐसे ही होनी चाहिए, प्यार कभी बदलता नहीं है, बस दिन ब दिन और भी बढ़ता जाता है।

0: 8:45 होने को है, चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ और खूबसूरत मैसेजेस की ओर। रियली वेरी नाइस सिलेक्शंस दिव्या जी, अरविंद जी आप हेलो ओशे से, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड बस नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू एंड योर फैमिली। हेलो दिव्या, मैं हूँ प्रेमा ऑफ पुथोदो, नाइस सिलेक्शन हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच प्रेमा जी, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। जब कोई वक्त निकाल कर हमें ये कहता है ना कि उनको बहुत ही अच्छा लगता है ये गाने और को पसंद आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि ये गाने ट्रस्ट मी गाने नहीं, हमारे लिए आपका प्यार है जहाँ पर हम चुन चुन कर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। सोच में पड़ भी जाते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वाला गाना अच्छा लगने लग वाला है, तो चलिए इसके हिसाब से ही, आपके चॉइसेस के हिसाब से ही हम बस गाने चूज़ करके लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, टू मेक यू फील गुड। एंड चलिए ये ट्यूज़डे इवनिंग आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रहे, एंड आई जस्ट होप कि दीज सॉन्ग्स आर एडिंग मैजिक टू योर लाइफ एंड टू योर इवनिंग। दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज 9 PM, कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. We have this beautiful गाना जहर मूवी से लिया गया उदित नारायण एंड श्रेया घोषाल की आवाजों में ऑलरेडी 8:52 एंड छोड़े जा रहे हैं आपको इन दिस विद दिस ब्यूटीफुल गाना एंड हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल फॉर यू मिड वीक मस्ती ऑफ कोर्स वेंसडे इवनिंग को एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात कुछ और खूबसूरत रोमांटिक कूल म्यूजिक के साथ तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत टेक केयर कीप स्माइलिंग शुभ रात्रि एंड बाय बाय

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। वैसे रात धीरे धीरे अपनी बाहों में हमें समेट रही है। कभी कभी ना दिन के भागदौर के बाद बस एक सुकून भरी रात, एक अच्छा सा गाना और किसी अपने की याद ही काफ़ी होती है। वैसे अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं गया तो प्लीज़ उसे अपने दिल पर लेकर मत सोइए। कल एक नई सुबह होगी, नए मौके होंगे और शायद वो खुशियाँ भी जो आज आपसे थोड़े से दूर हैं। सो रिलैक्स, स्माइल, लेट द म्यूजिक हील योर हार्ट, क्योंकि यू आर लिसनिंग to your late night grooves with me, RJ Ginisha.

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, प्यार जो है ना हमेशा बड़े बड़े वर्ड्स या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स से प्रूव नहीं होता है. कभी कभी एक सिंपल सा हैव यू ईटन और टेक केयर माई स्वीट हार्ट या बिना किसी रीजन का एक कॉल करना ही दिल को बता देता है ना कि कोई है जो हमारी फिक्र करता है. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. आज रात उन्हें एक छोटा सा मैसेज जरूर भेजिए. बस कह दीजिए थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, क्योंकि प्यार जताना भी जरूरी है और प्यार निभाना भी.

I really hope कि जितने प्यारे प्यारे गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए in your late night grooves आपको दिल से अच्छा लग रहा है। वैसे कभी कभी हम बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं ना, जो हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या सोचा है, किसने हमें समझा और किसने नहीं समझा, बट डार्लिंग हर किसी को एक्सप्लेन करते करते अपने आप को मत थका दीजिए। आज रात बस इतना कीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। डीप ब्रेथ लीजिए, अपने दिल को हल्का कर लीजिए और म्यूजिक के साथ फ्लो कीजिए, क्योंकि पीस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ हैप्पीनेस।

वैसे देखा जाए तो रात का एक अलग ही कनेक्शन होता है यादों के साथ, है ना। दिन में हम कितने बिजी होते हैं, कितने बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है दिल उन लोगों के पास चला जाता है जो शायद हमसे दूर हैं। किसी की स्माइल, किसी की आवाज, किसी के साथ गुजरा हुआ एक छोटा सा मोमेंट, सब याद आने लगता है। अगर आप आज रात भी किसी को मिस कर रहे हो तो याद रखिए, डिस्टेंस सिर्फ दो जगह के बीच होते हैं, दिलों के बीच में नहीं। अब बस इस खूबसूरत एहसास का नाम लीजिए और ये अगला गाना आप आराम से सुन लीजिए।

दिल से ये खूबसूरत गाने ये तराने जो हम पेश कर रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स आपको अच्छा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर फिलहाल अपनों से दूर अभी भी आप काम पे हो, यू आर वर्किंग, तो हम आपको विश करना चाहेंगे बों को गाश माय डियर। और खूबसूरत अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं वो खासकर हमारी तरफ से आपके लिए, तो चलिए आप एंजॉय कीजिए, गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाइए।

0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, लाइफ परफेक्ट नहीं होती है और शायद इसीलिए ब्यूटीफुल होती है। कभी हम हंसते हैं तो कभी हम रोते भी हैं, कभी जीते हैं और कभी हार कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। अगर आज आप किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, दिस फेज इज नॉट योर होल लाइफ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपने पहले भी बहुत कुछ फेस किया होगा अपनी जिंदगी में और आज भी आप यहाँ हैं, स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, है ना। सो यू डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। कभी भी लाइफ में द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ में स्टिल बी वेटिंग फॉर यू।

आज रात एक प्रॉमिस खुद से कर लीजिए आप कि आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे। हम सब दूसरों के लिए इतना करते हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खुशियों के लिए कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं, लेकिन कभी कभी खुद से भी पूछना चाहिए, मैं ठीक हूँ ना? यू डिजर्व लव, यू डिजर्व रिस्पेक्ट, पीस एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, नॉट बिकॉज समवन एल्स ने कहा है, क्योंकि आप जो हो उसके लिए यू डिजर्व एवरीथिंग। सो टुनाइट स्माइल एट योरसेल्फ एंड बी प्राउड कि आप जिंदगी में इतना कुछ कर गए हैं, फिर भी यू आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्गर।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें।

एक गाने की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या होती है? एक ही गाना किसी के लिए बस म्यूजिक होता है और किसी के लिए उनकी पूरी कहानी। एक गाना सुनते ही कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई जर्नी, कोई पहली मुलाकात या फिर वो पल जो कभी वापस नहीं आएगा। That's the magic of music. It keeps our memories alive. तो आज की इस रात को let's create some beautiful memories together in your late night grooves. क्योंकि years later maybe आप इस गाने को सुनेंगे और याद रखेंगे कि हाँ, I used to listen to this beautiful show and a beautiful गाने किनिशा के साथ on Radio Mastery.

हाँ जी, तो ऑल दोस्त जो बड़े प्यार से शिद्दत से भी हमारा साथ दे रहे हैं, एक छोटी सी बात, प्यार में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट होना जरूरी है। अपने जो बिजी स्केड्यूल में ये थोड़ा सा वक्त आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके इमोशंस को समझे। समटाइम्स द पर्सन यू लव डजंट नीड अ सॉल्यूशन, दे जस्ट नीड टू नो दैट यू आर देयर। सो होल्ड ऑन टू द पीपल हु मेक योर हार्ट फील लाइक।

ऐसे ही रोमांटिक गानों का ये सिलसिला चलता ही रहेगा दिल की बातें और ब्यूटीफुल वाइब्स के साथ मैं हूँ आपका साथ देने के लिए इट्स आउट जेकी निशा तो रात अभी बाकी है दोस्तों म्यूजिक भी अभी बाकी है और दिल की बातें करेंगे आप लोगों के साथ

सो माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, रात का ये वक्त इतना खूबसूरत होता है ना कि दिन भर की आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं और फिर बस हम हमारे थॉट्स और म्यूजिक जो है साथ दे जाते हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। तो अगर आज आपके दिल में कोई बात है जो किसी से कह नहीं पा रहे हो तो उसे म्यूजिक के हवाले कर दीजिए, शायद कोई गाना आपकी फीलिंग्स को लफ्जों में बयां कर दे। मैं हूँ आज की निशा जो लेट नाइट ग्रूव्स में आपका साथ दे रहे हैं, जहाँ हर रात एक नई कहानी और हर गाने में एक नया एहसास मिलता है।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
2: तो दोस्तों, खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह का इंतजार मत कीजिए। कभी एक गरम कप चाय या कॉफी, अपना फेवरेट गाना, किसी अपनों का साथ, किसी अपने का मैसेज या एक प्यारी सी स्माइल भी दिन बना सकती है ना। लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीख लीजिए, क्योंकि एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद यही छोटे पल सबसे ज्यादा याद आएंगे। तो टुनाइट फॉरगेट योर वरीज, थोड़ी देर के लिए टर्न अप द वॉल्यूम एंड लेट योर हार्ट फील हैप्पी ऑन RM2 रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

टाइम बीता चला जा रहा है और हमें पता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो है फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, यस, या कहीं से लौट रहे हैं या कहीं जा रहे हो आप, या हो सकता है कि आप ड्राइवर का काम करते हैं, यू आर ड्राइविंग राइट नाउ, कहीं से भी अगर आप ड्राइव करते करते हमारा साथ दे रहे हो, सो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चला दीजिए और बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं आप लोगों के लिए, इन योर लेट नाइट ग्रूव्स, आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, तो बस दिल को थाम लीजिए और इस

खूबसूरत बातें तो हम करते ही रहते हैं लेकिन खूबसूरत खूबसूरत गाने भी हम पेश कर रहे हैं जितने भी हमारे लिसनर्स अक्रॉस द ग्लोब हमारा साथ दे रहे हैं मॉरिशस के बाहर हो लेकिन हमारे दिल के जो करीब रहते हैं उनके लिए हम अगला नगमा पेश करना चाहेंगे। हाँ जी मुझे पता है अपनों से दूर रहकर जब आप ऐसे सुनते हैं ना गाने ऑन रेडियो तो बस अपनों की ही याद आ जाती है और उम्मीद करते हैं कि इन खूबसूरत गानों से आपकी हम यादों को ताज़ा कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में आपके होंठों पर मुस्कुराहट लेकर आए हैं। तो चलिए ये अगला गाना कि निशा की तरफ से हमारे सारे म्यूजिक लवर्स के नाम जो मॉरिशस के बाहर हैं और हमारा साथ दे रहे हैं।

दिल की बातें जो है ना दिल में दबा के रखने से कोई फायदा नहीं होता है कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ गाने ऐसे हम सुनते हैं इट रिलेट्स टू आवर स्टोरी और ऐसा लगता है कि ये गाना तो सिर्फ हमारे लिए ही बनाया गया है जी हां दोस्तों बॉलीवुड का ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो किसी ना किसी के लाइफ के सिचुएशन के साथ फिट नहीं होता है तो चलिए अगर यादों में कोई है दिल में कोई है और फिलहाल के लिए आप मुस्कुरा रहे हो उनको याद करते करते तो ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके उनके नाम जो आपके दिल में बसते हैं

दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारा साथ देने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. लेकिन फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए. जी हाँ, हम अभी जा तो रहे हैं लेकिन वादा करते हैं फिर से लौट के आएंगे कभी भी फिर से लेट नाइट ग्रूव्स में आपका साथ देने के लिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना और कीप ऑन स्प्रेडिंग लव.

और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।